नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंश दान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को

0: आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। Breaks of waterborne diseases posing serious public health risks. Where are we now?
1: Good morning. This is Akashvani. The news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Tirth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across 4 states, involving an investment of around 30,000 crore rupees. The Prime Minister stressed that delays in infrastructure projects lead to cost escalation and deprive citizens and industries of timely benefits. He directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi underlined the need for clear accountability, faster response mechanisms and stronger coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms.
2: This is module 9.
1: House-to-house enumeration of Special Intensive Revision or SIR of electoral rolls is set to start in Delhi from the 30th of this month. In this regard, the Chief Electoral Officer or CEO of Delhi chaired a meeting with the representatives of political parties regarding SIR in New Delhi yesterday. The CEO office said representatives of various political parties including Bharatiya Janata Party, Aam Aadmi Party and Indian National Congress attended the meeting. The CEO informed them about the main objective of SIR. No eligible citizen is left out while no ineligible person is included in the electoral roll. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on 25th June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. On this day in 1975, the emergency was declared amid growing political unrest and judicial developments that had undermined the legitimacy of the government led by the then Prime Minister Indira Gandhi. Following the proclamation, several constitutional safeguards were suspended. The Ministry of Culture is organizing the closing ceremony of year-long programs in New Delhi today, marking the completion of 50 years since the imposition of the emergency.

0: अब प्रस्तुत है पंडित किरण मिश्रा की भक्ति रचना, स्वर अनूप जलोटा का है।
1: एक दिन नटखट नंदलाला गोपाला माखन चोरी की लीला करते हुए, मटकी तोड़कर माखन खाते हुए पकड़े जाते हैं और माता यशोदा के सामने लाए जाते हैं। महाकवि सूरदास जी के शब्द में सुनिए।

यशोदा मैया आश्चर्य से उन्हें देखने लगती है और कहती है, कन्हैया क्या तू सच बोल रहा है? कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ग्वाल बाल के रूप में कई देवता भी थे। माँ तू तो बड़ी भोली है ना, तू उन्हें पहचान भी ना सकी।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम। ये आकाशवाणी रीवा है। सुबह के 6:35 हुए हैं। पेश है कृषि संकेत। इसमें आज सुनिए धान की खेती विषय पर जानकारी।

किसान भाई, पानी बरसात शुरू हो गया है। अपना पचे अपने खेते के तैयारी तक कह लिए हो, जे को न कह होई जल्दी कह ली। धान की बुवाई के समय आ गया है, सब को अपने धान के बीज तैयार कर ली बोवे की खातिर। धान बोवे के तरीका, सीधे बीज बोवे के विधि, एके तहत छिटकाव विधि, नारी या हर के उपयोग, सीड ड्रिल के उपयोग से बुवाई के विधि, लेही विधि, यह विधि में धान के बीज का अंकुरित कराए के खेत का मचाए के बाद सीधे बोवा जाता है। रोपा विधि, एमा बीज का रोपा के रूप में तैयार कर लिया जाता है और फिर एका बोवा जाता है। किसान भाई, खेती काहे के हो, उमा बीज की मात्रा बहुत महत्व रखा थी। ऐसे धान की खेती में बोवे से पहले बीज की मात्रा के अंदाजा लगा ले और फिर ओके हिसाब से बुवाई करे। जैसे धान बोवत में बीज के मात्रा जौन ही ओका ठीक ठाक रखे खातिर कुछ या मेर से मनई जुगुत अपनाए के बेहतर परिणाम ले सकी थन। जैसे छिटुआ विधि में 100 से 120 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोवे। कतार में बीज बोवत में 90 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर ले। लेही पद्धति में 70 से 80 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के दर से बोवे। रोपा विधि में 40 से 50 किलो बीज प्रति हेक्टेयर बोए से बेहतर उपराज मिल सका थी। ऐसा बियासी पद्धति में 125 से 150 किलो बीज प्रति हेक्टेयर मने के बोवे चाहिए। किसान भाई, धान के बीज उपचारित करके बोवे तो अच्छी उपराज मिले के संभावना रहा थी। धान के बीज का उपचारित करे खातिर थायराम या डायथेन M45 दवा 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित करे। और जो बैक्टीरिया वाली जो बीमारी है इनसे फसल का बचाव हो तो एक खातिर बीज का 0.02% स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के घोल में डुबो के उपचारित करे तो और निकाह परिणाम मिला है। किसान भाई, खाद और उर्वरक एहू के ध्यान मनई खेती में रखे। एक खातिर धान के फसल में 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के दर से गोबर के सड़ी खाद या कंपोस्ट के उपयोग करे तो अच्छी फसल मिला थी। साथ है खाद और उर्वरक के खर्चा का कम किया जा सकता है। किसान भाई, गोबर के सड़ी खाद और कंपोस्ट खेती खातिर बहुत ही लाभकारी है। ऐसे हरी खाद रोपा वाली फसल में ज्यादा बेहतर ढंग से प्रयोग की जा सकती थी और उसे लाभ बढ़ावा जा सकता है। किसान भाई, उर्वरक दे के जो समय है वह के ध्यान रखे। एक तहत नाइट्रोजन के आधी मात्रा और स्फुर और पोटास के पूरी मात्रा आधार खाद के रूप में बोवे के पहले दे दे। मने जब बीज मने बोवे के खेते में ओके पहले एका मिला दे खेते में। बची मात्रा के 1/4 भाग कंस फुटत मा दे, माने रोपाई के 20 दिन बाद। जो ने खेते में जस्ता की कमी रहा थी उनके बोनी के पहले 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के मात्रा 3 साल में एक बेर जरूर दे दे। किसान भाई, खेती काहो के हो उमा पानी के बेहतर प्रबंधन जरूरी है, खास तौर पर धान की खेती में। मने धान के खेत में उतने पानी दे जितनी फसल का जरूरत हो। किसान भाई, धान के कुछ उन्नत

0: किस्म ही जोन के जन्म ही रख के मने अच्छे उपराज ले सकी थन। जैसे जे आर 75 ये 80 से 85 दिन में पका थी और 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से खर उपराज होती। कलिंगा ये 80 से 85 दिन में पका थी और 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से खर उपराज होती। ऐसे कुछ जल्दी जो पके वाली प्रजाति है उइया में से है। दंतेश्वरी यह 100 से 105 दिन लेती पके में और 30 से 35 किलो हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर के दर से एकर उपराज होती। जे आर 201 यह 100 से 105 दिन लेती पके में और 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एकर उपराज के दर है। जे आर 345 100 से 105 दिन में पका थी और 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एकर उपराज होती। ऐसे कुछ मझोल समय जूना ले वाली फसल है। आई आर 64 यह 125 से 130 दिन में पका थी और 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एकर उपराज होती। महामाया यह 125 से 130 दिन लेती पके में 55 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एकर उपराज ही। सुवर्णा 145 से 150 दिन लेती पके में 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एकर उपराज ही। श्यामला 140 से 145 दिन यह पके में लेती और 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एकर उपराज होती। किसान भाई यह में से मनई धान के उन्नत किस्म के जनबही रख के धान की खेती करे के बेहतर तरीका का अपनाए के अच्छी उपराज ले सकी थन और बढ़िया खेती कर सकी थन।
1: कृषि संकेत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धान की खेती विषय पर जानकारी। आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस से पाठ।

अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंद मग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतःपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, स्वर सुदेश वाडकर का था। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब पेश है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का वर्णन। आज सवेरे सुबह 7:30 पर ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुबह 8:30 पर ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से रिले होगा। चौपाल शाम 7:21 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 7:20 पर और सुबह 9:00। सुगम संगीत सुबह 10:05 पर। श्रोताओं, आपको एक बार फिर से बता दें कि चौपाल कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:21 पर, फिल्म संगीत सुबह 7:20 पर और सुबह 9:00, सुगम संगीत सुबह 10:05 पर। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव

0: #वंदेमातरम 150 के साथ जरूर भेजिए, #वंदेमातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

अत्रावधेयं यत् अद्य बिहार पूर्व मध्य प्रदेश पूर्व उत्तर प्रदेशस्य च नाना स्थानेषु उष्ण तरंगस्यानुमानमपि विभागेन अनेन प्रकटीकृतम्। अपरत्र अद्य देहल्याम् आंशिकरूपेण मेघाच्छादनं न भविष्यति। सहैव अपराह्णे सायंकाले वा विद्युद्गर्जनेन वृष्टेः संभावनापि वर्तते। सम्प्रति क्रीडा वार्तासु आईसीसी महिला टी20 विश्वकप स्पर्धायाम् अद्य भारतस्य सम्मुखीकरणं बांग्लादेशेन सह भविष्यति। स्पर्धेयं मैनचेस्टर नगरस्य एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रीडांगणे आयोज्यते। या भारतीय समयानुसारं सायंकाले 7 वादने समारप्स्यते। हरमनप्रीत कौरस्य नेतृत्वे भारतीय महिला दलं विमेन इन ब्लू सम्प्रति स्वसमूहे द्वितीयं स्थानं भजते। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिक

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में मंत्रालयों और राज्य सरकारों को परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साइबर खतरों को लेकर जागरूकता पर दिया जोर। आज संविधान हत्या दिवस पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी देव मीणा ने पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। इस बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई और प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि साइबर खतरा एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो बिना दस्तक दिए हमारे घरों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल भोपाल में आयोजित राज्यव्यापी साइबर जागरूकता अभियान के तहत सेफ क्लिक 2.0 अभियान के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को साइबर सुरक्षा के तीन महत्वपूर्ण सूत्र जागरूकता, सावधानी और सहभागिता के बारे में बताया।
1: साइबर सुरक्षा जागरूकता में अगर अपन जाते हैं तो इसका हेल्पलाइन नंबर 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में सबको पता होना चाहिए। कोई भी गड़बड़ी, यह नंबर आपकी अपनी ढाल बनता है, सबसे पहले इस पे कॉल करें। फिर सावधानी की बात आए तो जब भी कोई मोबाइल पे अनजान लिंक आए या अनजान कॉल आए, डरा धमका तो रुको, सोचो, फिर कोई कदम उठो। जल्दी मत करो, लालच में मत आओ, विचार करके आगे बढ़ो।
0: ये अभियान 24 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक प्रदेश के 10 संभाग, 55 जिलों और 50,000 से अधिक गांवों में एक साथ चलाया जाएगा। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन

0: राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित की जाएगी। 2000 से अधिक प्रतिभागियों वाले इस समिट में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल होंगे। वहीं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप और मुख्य सचिव अनुराग जैन भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भूमि आवंटन, भूमि पूजन, लोकार्पण तथा एमएसएमई स्टार्टअप तथा स्वरोजगार अभ्यर्थियों को चेक प्रदान करेंगे तथा एमएसएमई प्रदर्शनी और ईज ऑफ डूइंग क्लिनिक का उद्घाटन भी करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। कल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर झाबुआ और डिंडोरी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। झाबुआ कलेक्टर डॉ योगेश तुकाराम भरसट ने एनकोड की बैठक में निर्देश दिए कि अब जिले के स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में येलो लाइन खींचकर तंबाकू बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दूसरी ओर डिंडोरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि जिले भर में रैलियां निकालकर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं 15 से 31 जुलाई तक विशेष जागरूकता पखवाड़े के तहत शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के हितग्राहियों को दुग्ध संग्रहण और विपणन की मजबूत व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल कल लोकभवन में आयोजित पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। भुवनेश्वर में 24 से 28 जून तक आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी देव मीणा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। पोल वॉल्ट स्पर्धा में देव मीणा ने 5.46 मीटर की ऊंचाई पार करते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देव मीणा ने आगामी एशियाई खेल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून के दस्तक देने के आसार हैं। राजधानी भोपाल समेत आसपास के जिलों में आज शाम तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून की दस्तक बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते होने के आसार हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभागों में अधिकांश जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। इंदौर जिले में 22 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई। बारिश शुरू होते ही जिले में खरीफ की बुआई का कार्य भी शुरू हो गया है। जिले में वर्ष 2026 के खरीफ सीजन में 252,624 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें बोई जाएंगी, जिसमें प्रमुख रूप से 233,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बोनी होगी, जो कुल क्षेत्र का लगभग 92% है। स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा के उद्देश्य से कल मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्कूलों में बालिकाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन सुविधाओं, प्रथक एवं कार्यशील शौचालयों, स्वच्छ

0: पेयजल की उपलब्धता, सैनिटरी नैपकिन वितरण व्यवस्था, प्रयुक्त नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं तथा जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने दादाजी मंदिर नवनिर्माण स्थल का औचक निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। आगरमालवा जिले में ग्राम पंचायत पालखेड़ी में विधिक जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को बाल विवाह और दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा लोक अदालत के फायदों के बारे में बताया गया। मंडला में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इंदौर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में नामी कंपनियों ने कुल 145 छात्र छात्राओं को नौकरी के लिए चयनित किया। शासकीय आईटीआई राजगढ़ में नए सत्र के प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इच्छुक छात्र 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बैतूल की ग्राम पंचायत घाट प्रपरिया में कठपुतली के खेल के जरिए ग्रामीणों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक किया गया और गुना में कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के तहत बीनागंज में एक विशेष करियर काउंसलिंग सत्र में एयरफोर्स अधिकारियों ने छात्रों को अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। श्रोताओं, दैनिक योग को स्वास्थ्य की कुंजी माना जाता है। नियमित योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान शारीरिक शक्ति बढ़ाते हैं, मानसिक तनाव मिटाते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। यह बीमारियों से बचाव और समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने का एक प्राकृतिक और सबसे प्रभावी साधन है। नियमित योगासन शरीर के लचीलेपन, संतुलन और सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। ये हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, रक्तचाप को नियंत्रित करने और जोड़ों के दर्द जैसे गठिया में राहत देने में अत्यधिक मददगार है। योग में शामिल प्राणायाम और ध्यान मन को शांत करते हैं। यह चिंता, तनाव और अवसाद को कम करके मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा में सुधार करते हैं। योग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे शरीर विभिन्न संक्रमणों और आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह और मोटापा से लड़ने में सक्षम होता है। योग हमें अपने शरीर के प्रति अधिक जागरूक बनाता है, जिससे हम अच्छी नींद और बेहतर खानपान जैसे स्वस्थ विकल्पों को अपनाते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं फिल्म संगीत की। आगाज फिल्म बावर्ची के गीत से। गीतकार हैं कैफी आजमी, संगीतकार मदन मोहन, आवाज मन्ना डे, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, लक्ष्मी शंकर, निर्मला देवी और किशोर कुमार की है।

पर रोक कर सब हा हा दैया, लाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देन चलैया, जग के मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

看。अंत में सुने फिल्म चिच्चोर का गीत। यसुदास के गाए इस गीत के बोल लिखे हैं और धुन बनाई है रविंद्र जैन ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। आज सवेरे का अनुप्रसारण अब आकाशवाणी दिल्ली से करते हैं।

0: पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नास।
1: Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on 25th June 1975. It is also a day to pay homage to each and

0: every person who suffered due to the excesses of the emergency, a report.
1: On this day in 1975, then President Fakhruddin Ali Ahmad proclaimed a national emergency under Article 352 of Constitution, citing threats arising from internal disturbances. The emergency was declared amid growing political unrest and judicial developments that had undermined the legitimacy of the government led by then Prime Minister Indira Gandhi. As a result, the executive assumed sweeping powers and greater central control was exercised over state authority. Following the proclamation, several constitutional safeguards were suspended. Under Article 358, the rights guaranteed by Article 19, including freedom of speech and expression, assembly, and movement, were curtailed. Citizens were denied the right to seek judicial remedies for violations of these rights. Pre-censorship was imposed on newspapers, and even the Press Council of India, the statutory body responsible for safeguarding press freedom, was abolished. Constitutional amendments during that period barred the courts from questioning the president's decision to declare emergency and excluded the election of the Prime Minister and Speaker of the Lok Sabha from judicial scrutiny. The Ministry of Culture is organizing the closing ceremony of year-long programs in New Delhi today, marking the completion of 50 years since the imposition of emergency. On this occasion, along with Samvidhan Hatya Divas, Long Live Democracy exhibition, a screening of the short film Samvidhan Hatya Divas will also be held. Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat will preside the program. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी से सीमा शुल्क कार्यालय व्यापारियों ने अपना सामान पहले से ही लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदामों में पहुंचा दिया है। प्रशासन को 103 से अधिक व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और जल्द ही 25 व्यापारियों के दूसरे दल को भी व्यापार पास जारी किए जाएंगे। सामान ढुलाई के लिए नाभी ढांग के पास खच्चरों और घोड़ों की व्यवस्था की गई है। भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 1991 में दोबारा शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया था। 6 सालों के बाद व्यापार बहाल होने से सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की आशा है।
0: India will host the 11th BRICS Energy Ministers meeting at Gurugram in Haryana from today under its BRICS Chairship 2026. The two-day meeting will focus on three key priorities: energy security and sustainability, energy access and equity, and technology and innovation. Energy ministers and senior officials from all 11 BRICS member countries will participate in the two-day meeting to strengthen cooperation in key areas. India's BRICS Chairship this year is guided by the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.
2: और सायर आप जानकारी लेते हैं कुछ खेल खबरों की हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह से।
3: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: And in international news, well, the international

0: The Atomic Energy Agency, or IAEA, has said that it will carry out inspections in Iran under the country's preliminary peace agreement with the US. Talking to reporters in Japan, Director General of IAEA Rafael Grossi said the inspections will indeed take place and they will be working on the modalities, that is dates, procedures, places, very soon. The head of the Global Nuclear Watchdog said the agreement signed last week explicitly mentioned that the dilution of Iran's highly enriched uranium would be carried out under IAEA supervision. However, Iran's deputy foreign minister said access to its damaged nuclear facilities and nuclear material would only be addressed within the framework of a final deal with the US.
1: और श्रोताओं, रुक करते हैं महानगरों की खबरों का। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से जुड़े समाचारों की। तो ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं के लिए AI आधारित समाधानों पर चर्चा करना है। इस कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार कार्यालय से प्राप्त सुझाव ग्रामीण विकास में AI के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार करने में सहायक होंगे। इसके अलावा दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र व्यक्तियों को बाहर रखना है। सभी दलों ने अभियान में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। और दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया है कि दिल्ली के किसानों की वैकल्पिक आवासीय प्लॉटों के आवेदन की मांग को मंजूरी दे दी गई है। श्री बिधूड़ी ने बताया कि जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है तथा जिनके वैकल्पिक आवासीय भूखंडों के आवेदन भूमि और भवन विभाग की सिफारिश के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजे जा चुके हैं, उन्हें 3 महीने के भीतर वैकल्पिक आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे।
0: And now let's take a look at what's happening in Chennai. On the occasion of Olympics Day, Sports Minister Adhav Arjuna revealed plans to establish 10 Olympic academies across the state. He said that the government is working on a new sports structure targeting children in the age group of 8 to 18 years and who are Olympic medal winners. He also said that all sports hostel rooms will be air-conditioned. The minister informed that a new stadium will be built on ECR, where corporate events can also take place. A dedicated policy for schools will be introduced soon to strengthen the sporting corporate events that can also take place.
1: और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की खबरों का। तो सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल राज्य के स्वदेशी महा AI मॉडल और महा DBT 2.0 एक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली और आपले सरकार सेवा केंद्रों के मानकीकरण का शुभारंभ किया। श्री फडणवीस ने कहा कि महासारथी पहल के तहत बनाया गया एकीकृत डेटा पूल कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में सुधार लाने, लाभार्थियों की संख्या में दोहराव को समाप्त करने और पात्र नागरिकों तक लाभ कुशलतापूर्वक पहुंचाने में सहायक होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन FDA ने राज्य भर के होटलों, रेस्तरां, ढाबों, कैंटीनों, बेकरियों, क्लाउड किचन और ऑनलाइन खाद्य व्यवसायों के लिए व्यापक खाद्य सुरक्षा अनुपालन आदेश जारी किए हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और मिलावट रहित भोजन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस आदेश में बड़े रेस्तरां चेन के लिए मेन्यू पर कैलोरी और एनर्जी एलर्जी संबंधी जानकारी का लेबल लगाना अनिवार्य किया गया है। अखबारों या अन्य गैर खाद्य योग्य सामग्रियों में भोजन परोसने या उसको लपेटने पर रोक लगाई गई है और खाना पकाने के तेल को दोबारा इस्तेमाल को भी प्रतिबंधित किया गया है। क्लाउड किचन और ऑनलाइन खाद्य व्यवसायों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस नंबर और पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया है।
0: Moving on to Bengaluru, the Karnataka government will amend rules to enable the issuance of e-Swathu records for Gram Thana properties that lack ownership documents, Rural Development and Panchayati Raj Minister Ishwar B. Khandre announced yesterday. Another news coming in from Bengaluru, normal services resumed on Namma Metro's Purple Line on Wednesday morning. आफ्टर अ मेजर

0: to technical disruption on Tuesday evening stranded thousands of commuters during peak hours. According to reports, a loud noise near Cubbon Park Metro Station around 6:32 p.m. led to the suspension of services on parts of the corridor, affecting stations including Cubbon Park, Vidhan Sauda, Central College, Majestic and Railway Station. And Uttar Pradesh secured investment proposals worth over 50,000 crore rupees during the Uttar Pradesh Global Growth Dialogue 2026 that was held in Bengaluru yesterday. More than 15 companies signed MOUs with the state government in the presence of UP Chief Minister Yogi Adityanath. The proposed investments span key sectors including industrial parks, global capability centers, electronics, manufacturing, logistics and infrastructure.
1: अब बात कोलकाता के समाचारों की, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस बलों में कार्यरत नागरिक स्वयंसेवकों की योग्यताओं को दोबारा सत्यापन करने का आदेश जारी किया है। नबन्ना सूत्रों के अनुसार गृह विभाग ने जिला पुलिस, पुलिस आयुक्त कार्यालयों और कोलकाता पुलिस को अगले 90 दिनों के भीतर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। इस सत्यापन में स्वयंसेवकों की शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक फिटनेस और उनकी भर्ती में किसी प्रकार की राजनीतिक सिफारिश की जांच की जाएगी। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों में स्वयंसेवकों के प्रदर्शन रिकॉर्ड की भी गहन जांच की जाएगी।
0: And moving on to Hyderabad, Telangana Governor Shiv Pratap Shukla and Minister for Scheduled Castes, Tribal Welfare, Disabled Senior Citizens and Transgender Welfare, Adiluri Lakshman Kumar, held a high-level meeting at Lok Bhavan on Wednesday to discuss drug eradication and social welfare initiatives. The minister briefed the governor on the progress of the central government's flagship initiative, Nasha Mukt Bharat Abhiyan, highlighting the state's rigorous anti-drug campaigns and youth awareness programs. In view of the upcoming International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking on 26th of June, Kumar detailed the planned statewide rallies and pledge campaigns. Due to prior commitments, the governor agreed to attend a rescheduled special anti-drug event in Warangal on 2nd of July.
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर मुकेश और सायरा के साथ। अब जानते हैं कि आज महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले इस कड़ी में बात करते हैं दिल्ली के मौसम की। इधर राजधानी में आसमान आंशिक रूप से बादल आज छाए रहेंगे और बिजली कड़कने की भी आज इधर संभावना है। न्यूनतम तापमान दिल्ली में 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उधर अगर मुंबई की बात करें तो शहर में दोपहर या शाम के समय गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं सायरा से।
0: वेल मुकेश, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद तीनों में अमूमन यू नो सिमिलर मौसम है, बिकॉज वी ऑल नो दैट मॉनसून्स हैव ऑलमोस्ट अराइव्ड देयर एंड चेन्नई विल हैव अ क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन एंड थंडरस्टॉर्म। टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन 28 एंड 37 डिग्री सेल्सियस, वाइल बेंगलुरु विल ऑल्सो हैव सम लाइट रेन टुडे अलॉन्ग विद क्लाउडी स्काई थ्रू आउट द डे। Minimum temperature was 21, while maximum will reach 30 degrees Celsius. Hyderabad will also have some rain or thunder showers, and temperature is expected to range from 26 to 34 degrees Celsius.
1: और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। श्रोताओं, आज 25 जून है। 1977 में आज ही की तारीख को आपातकाल की बरसी के रूप में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है।
0: And on this day, way back in the year 1678, Venetian Elena Cornaro Piscopia, she was awarded a doctorate of philosophy from the University of Padua. She was the first woman to receive a university doctoral degree or PhD. Also on this day in 1991, Martina Navratilova won her record 100 singles match at Wimbledon, defeating Elena Reinisch of South Africa in the first round. And on this day in 1967, the first global satellite television program, Our World, broadcast and featured 19 acts representing 19 nations, including the Beatles singing All You Need Is Love.
1: और वर्ष 2004 में रूस द्वारा भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का निर्णय भी आज ही की तारीख को लिया गया था।
0: And on this day in 2021, WHO head Tedros

0: Tedros Ghebreyesus confirmed that COVID-19 Delta variant was the most transmissible to date, that was now present in 85 countries and was spreading rapidly. वो भी क्या दौर था ना 2020 का मुकेश
1: जी बिल्कुल
0: कोविड का जब लॉकडाउन हुआ ना आई थिंक द वर्ल्ड हिस्ट्री हैज कंप्लीटली चेंज्ड हेल्थ केयर हैज कंप्लीट दैट हैज बिकम अ यू कैन से वॉटरशेड मोमेंट इन हिस्ट्री एंड नाउ व्हेन वी रिमेंबर सम ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटीज हु ईदर हैव देयर बर्थ और डेथ एनिवर्सरीज और बर्थडेज टुडे तो इस फेरिस्ट में सबसे पहले नाम आ रहा है एरिक आर्थर ब्लेयर का एंड ऑफ कोर्स वी know him by his pen name. Yes, today is the birth anniversary of George Orwell. His work is characterized by lucid prose, social criticism, and opposition to all totalitarianism, both authoritarian communism and fascism, and support of democratic socialism. He was an excellent novelist, poet, essayist, even journalist and critic, and of course he's known for his allegorical novella Animal Farm in 1945 and the dystopian novel 1984. Although his works also encompass literary criticism, poetry, fiction, and polemical journalism.
1: आज गोवा की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी मोहन राणाडे की पुण्यतिथि है उन्होंने पुर्तगाली शासन के खिलाफ गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया उन्होंने आजाद गोमांतक दल की स्थापना की इस दल ने पुर्तगालियों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह भी किया उन्हें सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 1986 में गोवा पुरस्कार और वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया
0: Today we are also remembering a very fine comic actor of yesteryears. Sabko yaad hoga Satish Shah. Yes, today is his birth anniversary, and he's best known for his iconic comic roles in films such as Jaane Bhi Do Yaaro, Main Hoon Na, Kal Ho Na Ho, Fana, Om Shanti Om. And many TV series like Ye Jo Hai Zindagi and of course we can't forget Sarabhai vs. Sarabhai for which he won the IT Award for Best Actor in a Comic Role and the Indian Telly Award for Best Actor in a Comic Role. And of course we all know that he was born in Mumbai and his father's family was from Gujarat and हिंदी सिनेमा में कम गुजराती कॉमिक एक्टर्स हुए हैं बट ऑफ कोर्स आई थिंक सतीश शाह हैज रीडिफाइंड
1: जी इन्होंने मराठी फिल्मों में भी सारा काम किया है
0: दैट्स राइट तो क्यों ना कुछ फिल्म्स से उनके डायलॉग्स हैं वो सुने जाए
2: मुझे जल्दी से दे दो खाना मैंने कल से नहीं खाया खाना भूख लगी भूख लगी भूख लगी
3: खाना खा लो तबीयत
2: ले लो बढ़िया मीठी कर रहा हूँ
4: पप्पी चाचा कहीं कोई अटकान है क्या
5: अरे हाँ रे
4: कहिए तो मैं आपकी कोई मदद करूँ
5: अरे म्यूजिक के बारे में तू क्या जाने बांगड़ू
2: अरे यार एक ड्यूएट सॉन्ग बनाना है लेकिन धुन नहीं मिल रही रे
4: रोमांटिक है क्या
2: अरे बांगड़ू अगर ड्यूएट है तो रोमांटिक तो होगा ही रे
4: मगर ऐसे गाने तो किशोर दा हमेशा कन्याओं के साथ बैठकर बनाते थे
5: अरे तो कन्या भी तो घर ही में है रे
1: श्रोताओं सतीश ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1978 में अरविंद देसाई की फिल्म अजीब दास्तां से की थी उन्होंने जाने भी दो यारों और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों में अहम भूमिका निभाई उन्होंने टेलीविजन में दिखाई जाने वाले धारावाहिक सारा भाई बनाम सारा भाई में भी अभिनय किया सतीश ने दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक ऑल द बेस्ट और नहले पे दहला में भी अपने अभिनय से दर्शकों का खूब मन रोमांचित किया
0: And today, next fairest में कौन है मुकेश
1: अगर हम बात करें तो इस कड़ी में हमारे पास माँ भारती के वीर सपूत का नाम भी आज शुमार है जिनका नाम है कैप्टन मनोज कुमार पांडे आज उनकी जयंती है पाकिस्तान के साथ करगिल का युद्ध बहुत से कारणों से विशेष कहा जाता है एक तो ये युद्ध बेहद कठिन और ऊंची चोटियों पर लड़ा गया जो बर्फ से ढकी और दुर्गम थी साथ ही ये युद्ध पाकिस्तान की लंबी तैयारी का नतीजा था जिसकी योजना पाकिस्तान के मन में बरसों से ही बनाई जा रही थी इसी युद्ध के कठिन मोर्चों में से एक मोर्चा खालूबार का था जिसको फतह करने के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे अपनी 1/11 गोरखा राइफल्स की अगुवाई करते हुए दुश्मन से भिड़ गए और अपनी पलटन के सिर जीत का सेहरा सजाकर ही उन्होंने दम लिया माँ भारती की इस साधना में कैप्टन मनोज पांडे को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी उन्हें सन 1999 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया नमन है माँ भारती के ऐसे वीर सपूत को सहरा
0: Absolutely, Mukesh. And today we are also, of course,

और आज हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन की भी जयंती है। अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध इस संगीतकार का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। अपने जवानी के दिनों में वे सैनिक थे। बाद में संगीत के प्रति अपने झुकाव के कारण वे ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े। तलत महमूद और लता मंगेशकर ने उन्होंने कई यादगार गजलें गवाईं, जिनमें आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे जैसे गीत भी शामिल हैं। मदन मोहन 1950, 1960 और 1970 के दशक में बॉलीवुड फिल्म संगीत के ख्याति प्राप्त निर्देशक थे। तो आइए सुनते हैं आज उनकी जयंती पर उनके कुछ ये चुनिंदा गीत।

0: श्रोताओं करिश्मा कपूर पर फिल्माएगा, सॉरी करिश्मा कपूर पर फिल्माएगा इस खूबसूरत नगमे के साथ मुकेश और सायरा को दीजिए अब कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने के।
1: But stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, Ahi the News Bulletin, followed by Morning News in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning, listeners. Have a great day ahead. Namaskar. Namaskar.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज शाम मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।

0: केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और दो श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
2: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे।

0: वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
1: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमेरिकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति, देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग

आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे और भोपाल से अनीता सक्सेना। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

जैसे घने जंगलों के बीच कोई शांत सी नदी चुपचाप बहती हुई जीवन को सींचती रहती है, जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं टिमटिमाता दीपक दिशाओं को भरोसा देता है, वैसे ही कुछ व्यक्तित्व अपने समय से आगे बढ़कर समाज की चेतना में उजास भरते हैं। ऐसी ही एक दीपशिखा का नाम है मंगेई गोमांगो, जिन्होंने स्वयं जलकर अपने जनजातीय समाज की ज्ञान परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित कर उसे उजालों का संसार सौंपा। उनकी जीवन यात्रा ये बताती है कि वो केवल एक भाषाविद नहीं थे, बल्कि वो एक महान मानवतावादी थे जिन्होंने सुदूर वनों में रहकर अपनी तपस्या और लगन से अपने समाज को एक नई लिपि दी, अक्षरों की रोशनी दी और उन्हें आत्मगौरव के साथ जीना सिखाया। मंगेई गोमांगो का जन्म 16 जून सन 1916 को ओडिशा के रायगढ़ा जिले के मरिचगुड़ा नामक एक सुदूर पहाड़ी गांव में हुआ था। घने जंगलों और जलप्रपातों से समृद्ध प्रकृति की गोद में बसे इस क्षेत्र में सोरा जनजाति की घनी आबादी थी। मंगेई गोमांगो का जन्म इसी सोरा समाज के एक अत्यंत संभ्रांत और कुलीन परिवार में हुआ था। सोरा समाज में गोमांगो का अर्थ होता है मुखिया या प्रधान। उनके पूर्वज और पिता गांव के मार्गदर्शक थे। परिवार में आध्यात्मिक चेतना और जड़ी बूटियों का पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बह रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच फले फूले सोरा जनजातीय समाज में एक गहरा सन्नाटा भी था। आधुनिक शिक्षा से वो सभी बहुत दूर थे। युवा मंगेई ने देखा कि उनके समाज

की अपनी एक समृद्ध और संगीतमय भाषा तो है, लेकिन लिपि के अभाव में उनका इतिहास, उनके लोकगीत और औषधीय ज्ञान मौखिक परंपरा में ही हैं, जो समय के साथ विलुप्त हो रहे हैं। इस भाषाई पिछड़ेपन और बाहरी दुनिया के शोषण ने उनके भीतर एक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया।

सन 1936 के शुरुआती महीनों में मात्र 20 वर्ष की आयु में मंगेई गोमांगो ने सोरा संस्कृति के संरक्षण के लिए एक कठिन मार्ग चुना। वो मरिचगुड़ा के पास स्थित एक पवित्र पहाड़ी में एकांतवास के लिए चले गए। मन में अपनी भाषा को एक स्वरूप देने का विचार था और इसी विचार के साथ वो कठिन साधना और ध्यान में लीन हो गए। बताया जाता है कि 18 जून सन 1936 की सुबह ध्यान की गहरी अवस्था में उन्हें अंतः प्रेरणा हुई। उन्होंने महसूस किया कि हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट कुछ विशिष्ट आकृतियों में बदल रही है। उन्होंने उन आकृतियों को ताड़ के पत्तों और पत्थरों पर उकेरा। इस तरह 24 अक्षर उनके पास थे। इसे सोरांग सोमपेंग लिपि का नाम दिया गया। यूं सोरा भाषा की ध्वनि को एक आकार मिला और ये लिपि उच्चारण की दृष्टि से बहुत सटीक और वैज्ञानिक थी। अक्षरों का ये अवतरण केवल एक लिपि का जन्म नहीं था, बल्कि ये सोरा अस्मिता का पुनर्जन्म था। उनके इस महान आविष्कार को समाज में फैलाने के लिए सबसे पहले उनके बेटे और दामाद उनके शिष्य बने। लेकिन असली चुनौती सामने थी, इस नई लिपि को जन जन तक पहुंचाना था। लेकिन मंगेई गोमांगो केवल एक विचारक नहीं थे, वो एक कर्मयोगी थे। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसने सोरा समाज की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने मरिचगुड़ा के साथ साथ आसपास के दर्जनों गांवों में अक्षर स्कूल खोले। चूंकि दिन में सोरा समुदाय के लोग खेतीबाड़ी और जंगलों में काम करने जाते थे, इसलिए ये स्कूल सूर्यास्त के बाद रात्रि पाठशालाओं के रूप में चलते थे। मंगेई गोमांगो हाथ में जलती हुई मशाल और ताड़ के पत्तों पर लिखी वर्णमाला लेकर गांव गांव जाते और बच्चों, महिलाओं, पुरुषों, वृद्धों को अपनी मातृभाषा में लिखना पढ़ना सिखाते थे। उनका ये रास्ता आसान नहीं था। उन्हें दो मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। एक तरफ ब्रिटिश प्रशासन और रूढ़िवादी तत्व इस भाषाई साक्षरता को संदेह की दृष्टि से देख रहा था, तो दूसरी तरफ खुद सोरा समाज के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग इसे एक जादुई और अस्वाभाविक घटना के रूप में रेखांकित कर रहे थे। लेकिन मंगेई गोमांगो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने तर्कों, अपनी विनम्रता और दृढ़ संकल्प से सबको झुका दिया। उनका उद्देश्य केवल एक नई लिपि का प्रचार प्रसार नहीं था, वो सोरा समाज के नैतिक और सामाजिक ढांचे को भी बदलना चाहते थे। उन्होंने देखा कि ताड़ी और मदिरा के सेवन ने सोरा समाज को खोखला कर दिया है। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक व्यसन मुक्ति अभियान चलाया। उन्होंने

विश्वास, चिकित्सा की जगह तंत्र मंत्र और पशुओं की बलि देने की कुप्रथाओं के खिलाफ तार्किक तथा आध्यात्मिक चेतना का युद्ध लड़ा। उनके इस असाधारण ज्ञान, नैतिक आचरण, समाज सुधार और निस्वार्थ सेवा के भाव को देखकर सोरा समाज और अन्य विद्वानों ने उन्हें अत्यंत आदर के साथ पंडिता की उपाधि से विभूषित किया। लेकिन उनकी ये साधना लगातार जारी रही।

पंडिता मंगेई गोमांगो का आयुर्वेद और पारंपरिक जड़ी बूटियों का ज्ञान भी अद्भुत था। उन्होंने रायगढ़ा, कोरापुट और नियमगिरी की पहाड़ियों के घने जंगलों में भ्रमण करके सैकड़ों दुर्लभ जड़ी बूटियों की पहचान की। उन्होंने इनके औषधीय गुणों और मिश्रण की विधियों को अपनी लिपि में लिखकर इस ज्ञान को संरक्षित भी किया। उन्होंने अपने निवास स्थान मरिचगुड़ा को एक चिकित्सा केंद्र में बदल दिया। उन दिनों ऐसे सुदूर क्षेत्रों में अस्पताल या डॉक्टर नहीं होते थे। उन्होंने मलेरिया, गंभीर त्वचा रोग, सर्पदंश और पेट की घातक बीमारियों का सफल इलाज किया। और विशेष बात ये कि उनका ये काम पूरी तरह निशुल्क और सेवा भाव से प्रेरित था। इसके साथ ही उन्होंने सोरा जनजाति के बौद्धिक पोषण पर भी ध्यान दिया तथा साहित्य रचना की। सबसे पहले तो उन्होंने सोरांग सोमपेंग लिपि की पहली प्रामाणिक वर्णमाला की पुस्तक और बुनियादी व्याकरण की रचना की, ताकि भाषा की शुद्धता हमेशा बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने सोरा भाषा में उच्च कोटि के भजनों और कविताओं की रचना की। इन रचनाओं में उन्होंने निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और मानवीय मूल्यों को पिरोया। उनके द्वारा रचित प्रार्थनाएं आज भी सोरा समाज के विद्यालयों और मंचों पर अत्यंत श्रद्धा के साथ गाई जाती हैं। सोरा समाज में उनके पूर्वजों का इतिहास, उनके शौर्य की गाथाएं और अनगिनत लोक कथाएं प्रचलित थीं। ये सारी धरोहर मौखिक परंपरा में तो मौजूद थी, लेकिन लिखित रूप से ये कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। मंगेई गोमांगो ने सोरांग सोमपेंग लिपि में इसे लिखकर संरक्षित किया। निरंतर शारीरिक श्रम, गांव-गांव की कठिन यात्राएं और ढलती हुई उम्र, इन सारी बातों ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाला। उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा और वो बिस्तर पर आ गए। लेकिन अब भी वो थके नहीं, रुके नहीं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी मानसिक रूप से सक्रिय थे। वो अपने बेटों, दामाद और अन्य युवाओं को अपने पास बुलाते और सोरांग सोमपेंग लिपि के प्रचार प्रसार के लिए रणनीतियों पर चर्चा करते। इसी तरह सक्रिय रहते हुए सन 1980 में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके द्वारा बोया गया बीज आज वटवृक्ष बन चुका है। सरकार और भाषाविदों ने सोरांग सोमपेंग लिपि की वैज्ञानिकता को स्वीकार किया और आज भी प्राथमिक शालाओं में सोरा बच्चों की शिक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इसे आज डिजिटल फॉन्ट में परिवर्तित करके डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया गया है और आज भी सोरा समाज के लोग 18 जून को लिपि दिवस के रूप में मनाते हैं। नमन ऐसी विलक्षण विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataNkaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद।

0: Jai Hind.
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की
3: मीटिंग वीप पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। अब पेश है फिल्म संगीत। आगाज करते हैं फिल्म दबंग 2 के गीत से। गीत रचना समीर अंजान की, तर्ज बनाई है साजिद वाजिद ने, आवाज राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की है।

अब पेश है संदीप नाथ का लिखा और अंकित तिवारी का संगीतबद्ध किया गीत। स्वर अंकित तिवारी का और फिल्म का नाम है आशिकी 2।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ। समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ। समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आकाशवाणी रीवा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत लुटेरा। इस फिल्म का गीत सुनिए मोनाली ठाकुर की आवाज में। कलमबद्ध किया है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतबद्ध किया है अमित त्रिवेदी ने।

0: अगला नगमा फिल्म पद्मावत का, श्रेया घोषाल और स्वरूप खान के गाय गीत को लिखा है AM तुराज ने और संगीत है संजय लीला भंसाली का।
1: साड़ी में कितनी सेक्सी लगती
2: है। I'm so sorry, मुझे लगा मेरी वाइफ है।

आकाशवाणी रीवा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम की अगली पेशकश मयूर का लिखा गीत सुरों से सजाया है प्रीतम ने। फिल्म है गैंगस्टर और आवाज जेम्स की है।

0: आकाशवाणी रीवा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म मोहब्बती का गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण के स्वर में।
1: रात में पी सकते
0: हैं। कलमबद्ध किया है आनंद बख्शी ने और सुरों से सजाया है जतिन ललित।
1: जाओ जाके खाने के लिए कुछ लेके आओ।

सुंदरी एक मिनट रुको, बैठो यहाँ। एक्चुअली मैं नहीं पीऊंगा, तुमसे वादा किया था, पर मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही है। अगर कुछ दिन ऐसा ही रहा तो मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। मैं जब

में जाता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। वो मैं ये सब भूलने के लिए ही पीने लग गया हूँ। प्लीज बुरा मत मानना। हर महीने लाख रुपए अकाउंट में आ जाते थे, लेकिन अब अकाउंट में एक रुपए भी नहीं आ रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा।

0: मेरी
1: सच बता रही हो? ठीक है अंदर जाओ, जाके नहा धो के तैयार हो जाओ, जाओ तुम भी जाओ।
0: ठीक है पापा।
1: से कपड़े
2: कुछ भी ओढ़ना चल।

0: लेकर जा रहा है?
1: मैं तुझे बता के शादी नहीं करूंगा, चल ना यहां से।
0: तू करेगा तो बता, मैं अभी शादी तोड़ दूंगी।
1: तू शादी कर, थोड़ा सा प्यार भी कर, तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे साथ चल आ जा।
0: अरे लेकर कहां जा रहा है पहले ये तो बता, मुझे यहाँ पर क्यों लाया हो?
1: इस घर में तू किसी को जानती है क्या?
0: देखो एक गांव है, यहाँ सभी एक दूसरे को जानते हैं।
1: अच्छा तो फिर अंदर चलते हैं।
0: अरे अंदर क्यों?
1: किसी से कुछ बात करना, अपना काम छोड़। क्यों बेटी यहाँ कैसे आना?
0: अंकल

0: ये तो उठ ही नहीं रहे हैं। सुनिए सुनिए,
1: आतिफ उठिए ना। असलम के स्वर में लीजिए, सुनिए आर्को का लिखा और संगीत पठ किया।
0: वहाँ आपको बुला रहे हैं।
1: फिल्म का नाम है बागी टू।
2: सुंदरी सुंदरी, तुम सच में आ गई सुंदरी। अरे बाप रे, ये सपना नहीं है। अरे सॉरी सुंदरी, ये तुम गलत मत समझना। मैंने सोचा मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ, गलत मत समझना प्लीज। सॉरी,
3: मेरी बेटी ने उसे मारा ये गलत नहीं है, पर उसने जो किया वो भी तो गलत ही है ना।
4: हाँ शंकर साहब, मैंने भी कई बात पूछी है, पर इसने एक ही बात पूछी कि वो आपकी बेटी से शादी इसलिए आए हैं। मैंने कि 1,00,000 तनख्वाह है, पर माता पिता नहीं अकेला है, इसे मैंने ही पाला पोसा है। मैं आपके पास यहाँ गांव के सरपंच की हैसियत से नहीं आया, इसका घर बस है, बस इसीलिए।
3: सरपंच जी आप जो कह रहे हैं, लेकिन ये मेरी इकलौती बेटी, हम इतनी जल्दी यहाँ कैसे कर सकते हैं?
5: बेचैनियां समेट के सारे जहान की,
4: सोने को घर में रखिए।

சுந்தரி சுந்தரி சுந்தரியை

0: आकाशवाणी रीवा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म
1: ये क्यों फोन कर रही है यार?
0: पेश है सोनू निगम, जयेश गांधी और जसविंदर नरूला की आवाज में
1: जो तुझे एक्सप्लेन
0: फिल्म अपने का
2: गीत। तो है ना,
0: समीर के लिए गीत की धुन बनाई है हिमेश रेशमिया।
1: किसी लड़के के साथ इस तरह की बातें करते हैं क्या?
2: ए फ्रेंड मतलब लड़का या लड़की एक ही होता है,
1: तो उससे कोई नहीं जी सकता।
2: ठीक है तो बता कितने शोज हो गए तेरे?
1: हुए ना, हो गए दो शोज हो गए। चल ठीक है, फोन रख रहा हूँ। मेरी शादी होने के बाद मेरे पहले झूठ की शुरुआत हो चुकी है।
3: ये बताओ ये कौन है?
4: ये हमारे प्रभु की वाइफ सुंदरी है।
3: ओहो, फेसबुक पे देखा था। बहुत सुंदर है। ए सुंदरी, यू आर सो ब्यूटीफुल।
4: बहुत कॉम्प्लीमेंट दे दिया शर्ट पहन।
3: घर में ऐसे नहीं रहूंगा तो कैसे रहूंगा? यार तुम औरतें,
4: मैं सुंदरी के घर रहूंगी, कीज देकर जाना।
3: हाँ ठीक है ठीक है।
4: सुंदरी

0: यो ब्रो, व्हाट्स अप?
1: क्या हो गया मेरे भाई? यहाँ कैसे आना हुआ?
0: ओह शिट, बाहर बहुत बच्चे हैं ना? कुछ नहीं ब्रो, घर के सारे गेम्स खेल लिए, बहुत बोर हो गया। तेरे पास कोई गेम है तो देना मुझे।
2: ऑफिस की टेंशन में कोई गेम खेलता है क्या? मैंने पैक करके सब ऊपर फेंक दिया है। खैर कोई बात नहीं, लेके आता हूँ।
0: ओके।
2: सुंदरी, ये रितेश है, हमारे नीचे वाले फ्लैट में रहता है। बहुत अच्छा गेमर है। मैं रिसर्च कर रहा है गेमर।

बजरंगी भाईजान, इस फिल्म का गीत सुनिए। गीत रचना कौसर मुनीर की, संगीत प्रीतम का, आवाज के की है।

0: ये तो उनका बड़प्पन है, उन्होंने जो भी बोला एक भी क्वालिटी नहीं है मेरे अंदर।
1: चल वो सब छोड़, व्हाट मिल गया ना, चैंपियन का मिल गया।
0: अरे यहाँ क्यों यार, वैसे भी आजकल मेरी कंडीशन अच्छी है, आराम से घर पे बैठ के पियेंगे, असली मजा तो वहीं आएगा। शाम को आ जाएंगे। हेलो सुंदरी, क्या कर रही हो?
2: कुछ नहीं।

अब सुनिए गरिमा वहाल और सिद्धार्थ सिंह का लिखा और विकी प्रसाद का संगीतबद्ध किया गीत। फिल्म का नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा और आवाज सोनू निगम और श्रेया घोषाल की है।

अंत में सुने अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म दंगल का गीत, अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत की तर्ज बनाई है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से रिले करते हैं।

चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्रा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सीधी जिला इन दिनों विकास, जनकल्याण और सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक चलाए गए विशेष जनकल्याण अभियान के अंतर्गत जिले के सीधी, मझौली, कुसमी और रामपुर नैकिन विकास खंडों में व्यापक स्तर पर जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य उन परिवारों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है जो अब तक विभिन्न कारणों से वंचित रहे। सीधी विकासखंड में आयोजित जनकल्याण शिविर में 11,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। वहीं मझौली में 3 दिवसीय शिविर में 14,755 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 14,000 से अधिक आवेदनों का निराकरण कर हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में कृषक चौपालों का आयोजन किया गया। रामपुर नैकिन और कुसमी में आयोजित चौपालों में किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, फसल विविधीकरण, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जल संरक्षण और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के बाद जिले के सभी विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है, जिसके साथ ही स्कूल चले हम अभियान का दूसरा चरण भी शुरू किया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे का 100% नामांकन सुनिश्चित करना और ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके लिए विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। पहले दिन विद्यालयों में विद्यार्थियों का स्वागत तिलक, पुष्प और पाठ्य सामग्री देकर किया गया। विशेष भोज, बाल सभाएं और प्रेरणादायी गतिविधियां आयोजित की गईं। वहीं जिले में शिक्षकों की क्षमता वृद्धि के लिए 6 दिवसीय शिक्षक प्रेरणा व गुणवत्ता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। सीधी जिले में समान नागरिक संहिता UCC पर व्यापक जन सुझाव अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़रिया में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विषय के पक्ष और विपक्ष में तार्किक एवं तथ्यपरक विचार प्रस्तुत किए। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन विशेष प्रयास कर रहा है। कुसमी विकास खंड की ग्राम पंचायत पौड़ी के घटिया टोला स्थित बैगा बस्ती में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ था। नए नलकूप खनन से लगभग 70 परिवारों के 250 से अधिक ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने लगा है। मानस भवन सीधी में आयोजित लोक कल्याण मेले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, डिजिटल भुगतान और वित्तीय साक्षरता पर विशेष जोर दिया गया। मेले में पथ विक्रेताओं को ऋण आवेदन प्रक्रिया, UPI भुगतान, QR कोड उपयोग तथा डिजिटल बैंकिंग के बारे में जानकारी दी गई। स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगाए गए उत्पाद स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इन स्टॉलों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मझौली क्षेत्र में 5 स्व सहायता समूहों को 25 लाख रूपये का बैंक ऋण प्रदान किया गया है। सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ. राजेश मिश्रा के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा कर निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। सांसद डॉ. राजेश मिश्र और जिला प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों सीधी रेलवे स्टेशन से कुचवाही तक निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक का संबंधित रेलवे अधिकारियों के साथ विस्तृत निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने रेलवे ट्रैक के आसपास जल निकासी की समुचित व्यवस्था, संवेदनशील एवं कमजोर स्थलों की पहचान कर तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीधी जिले में योग को जनभागीदारी का उत्सव बनाते हुए 51 स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा और विधायक रीति पाठक की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का प्रसारण किया गया, जिसमें उन्होंने स्वस्थ आयु के लिए योग की थीम पर बल दिया। धार्मिक, प्राकृतिक एवं शैक्षणिक स्थलों सहित पूरे जिले में हजारों नागरिकों, विद्यार्थियों, युवाओं और महिलाओं ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। बरचर आश्रम में स्वामी अड़गड़ानंद महाराज की उपस्थिति में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं योग साधकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस के अवसर पर बीते दिनों कैलाश तरुण वृद्धाश्रम पनवार में जिला प्रशासन द्वारा तातश्री सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर उनके प्रति आदर और कृतज्ञता व्यक्त की गई। सीधी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सीधी जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आरंभ भजन से। कलाकार हैं भीमसेन जोशी।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पेश है गजल, कलाम नजर बनारसी का और आवाज जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की।

0: क्या आप लगातार छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या से परेशान हैं? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनूप सिंह एमडी दुर्गा से बात कर रहा हूं। आज हम लोग एलर्जी राइनाइटिस के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग एलर्जी को एक छोटी समस्या समझते हैं, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकती है।

नाक बंद रहने से नींद प्रभावित होती है, थकान महसूस होती है, सिर दर्द हो सकता है और काम या पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को सही से सांस ना ले पाने के कारण चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। अगर ये समस्याएं बार बार हो रही हैं तो इन्हें नजरअंदाज ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें और समय पर सही इलाज कराएं।

0: क्या आपको छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या सिर्फ मॉनसून में होती है या पूरे साल रहती है? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर दिगंत गुप्ता, एमडी फिजिशियन। आज मैं बात करूंगा एलर्जी। एलर्जी कुछ खास मौसम में होती है, जैसे बारिश का मौसम या सर्दी का मौसम। इन्हें कहा जाता है सीजनल एलर्जी। या फिर कुछ एलर्जी ऐसी होती है जो धूल से, धुएं से, पालतू जानवरों से या प्रदूषण की वजह से हो सकती है। ये पूरे साल बनी रहती है। बारिश के मौसम में अपने घर को साफ और सूखा रखें, सीलन वाली जगहों से बचें और बेडशीट तथा तकिए को कवर को नियमित रूप से बदलते रहें। छोटी छोटी सावधानियां और सही इलाज आपको आरामदायक महसूस करने और आसानी से सांस लेने में मदद कर सकता है। थैंक यू।
0: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।

0: आज इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे और अप्लाई का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करने वाले हैं।
1: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति रूना लैला के स्वर में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं।

0: मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: श्रोताओं नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे ये फोन इन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका। सादर वंदन और अभिवादन के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के विषय पर आपसे बातचीत का सिलसिला। दोस्तों जिस तरह बदलते मौसम के साथ हमारा रहन सहन बदलता है, उससे पहले हम अपना खान पान बदलते हैं। गर्मी में क्या खाना है या पीना चाहिए, सर्दियों में क्या और आने वाला मौसम यानी बारिश में खान पान कैसा हो, इस बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी कम होती है कि कुछ खाद्य पदार्थ

0: ऐसे होते हैं जिनका सेवन समय समय पर करना लाभदायी होता है, और यदि उन्हीं खाद्य पदार्थों का सेवन गलत समय पर कर लेते हैं तो उसका गलत असर हमारे स्वास्थ्य पर होने लगता है। जैसे केला, ककड़ी, संतरा, दही, चॉकलेट, चावल इत्यादि। आज इसी विषय पर आपसे बातचीत करेंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ के सेवन का सही समय कौन सा होता है। सुनते हैं हमारे पहले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: कौन दीदी बोल रही हैं? कौन मैडम जी बोल रही हैं?
0: जी हम बोल रहे हैं प्रियंका, आपकी अपनी रेडियो संगीनी कार्यक्रम है आज बात आपकी गीत हमारे। अब आप अपना परिचय दे दीजिए।
1: कहते हैं कि चांदनी रात हो तो बरसात बुरी लगती है, और शरीर में दर्द कष्ट हो तो हर बात बुरी लगती है, और आकाशवाणी मध्य प्रदेश में भोपाल में अगर फोन लग जाए तो सब बात हरी लगती है और बड़ी अच्छी लगती है।
0: जी जी तो आज
1: हरी लगती है। जी प्रियंका मैडम जी, आपसे बहुत दिनों के बाद बात हो रही है।
0: जी जी।
1: और मैं ग्राम कल्पा जिला सतना से आपका मजनू दीवाना चांद मोहम्मद खान श्रोता बोल रहा हूँ। आप
0: जी बिल्कुल हम पहचान गए, लेकिन आपका परिचय हमारे जो अन्य श्रोता होते हैं उन्हें देना जरूरी होता है, इसलिए हम आपसे नाम पूछते हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: प्रियंका मैडम जी, आपसे बात एक बार और हुई थी, काफी दिन हो गए।
0: जी बिल्कुल, दो तीन बार हो चुकी है।
1: इत्तेफाक भगवान की कृपा हो गई, परवरदिगार की दुआ हो गई कि आप ही से बात हुई है मैडम जी।
0: अच्छा अब आज हम बात का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा विषय है कि खाद्य पदार्थों के सेवन का सही समय क्या है। जैसे हम कभी कई बार केला रात में खा लेते हैं तो नुकसान करता है, तो इस बारे में आपके पास जो भी जानकारी है हमें और हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: अब मेरा मतलब यही कहने का है मैडम जी कि जो खान पीन की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं और खाने पीने का सामान होता है उसे समय समय पर ही खाना चाहिए। सभी श्रोताओं से कहना है, जितने ऑल वर्ल्ड के श्रोता सुन रहे हैं, क्योंकि जैसे दिन में दोपहर में तो दाल चावल का ही सेवन करना चाहिए, और ज्यादा खटाई अटाई इस्तेमाल दोपहर में ही करो, रात में ना करना चाहिए, क्योंकि रात में सर्दी जुकाम का बहुत बड़ा लफड़ा रहता है, और चावल बहुत नुकसानदायक होता है, ये भी मैं बता दूं। और खटाई तो रात में नाइट में बहुत ही नुकसानदायक है मैडम जी, और दिन में कितना भी खाते रहो कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि धूप कड़ी होती है।
0: जी जी।
1: और समय सही रहता है, और रात में थोड़ी ठंड महसूस होने लगती है, तो ये ठंडी वाले जो आइटम होते हैं। और ये बता दूं कि ठंडे कुछ आइटम खाने के बाद पानी भी पीना नुकसानदायक होता है मैडम जी।
0: अच्छा
1: जी जी। और गुड़ जो है तो गुड़ का सेवन तो 12 महीने अगर करते रहो मैडम जी तो बहुत ही सेहत के लिए लाभकारी होता है। और इस समय तो आम का पन्ना और प्याज खूब खाइए तो गर्मी से निजात मिलेगी। और जामुन इस्तेमाल करिए, तो जामुन खाने से मैं बता दूं मैडम जी सबसे बड़ा लाभ, अगर जामुन बंद के आप एक महीने खा लें तो समझ लो ये शुगर की बीमारी तो हो ही नहीं सकती, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, और आंखों की जोत नहीं जा सकती। ये आंवला और जामुन में बहुत जबरदस्त गुण है।
0: जी ये बात तो आपने बहुत ही कारगर बताई है कि जामुन और आंवला जो है ये आपको शुगर फ्री रखता है,
1: ये बहुत फायदेमंद है मैडम। जैसे आंवला तो अभी नहीं मिलता, समय के मुताबिक मिलता है, लेकिन क्योंकि अगर जामुन अभी मिल रही है तो जामुन बंद करके अगर कोई भी भाई बहन जितने श्रोता बंधु सुनते हैं तो सुबह के टाइम चाहे खरीद के खाएं चाहे झोल, हमारे यहाँ तो जामुन का अंबार लगा हुआ है, तो मैं भोपाल भेज दूं मैडम जी ऐसे रोज सुबह टाइम, मतलब यानी कि कुछ नाश्ता पत्ती ना करके ऐसे जामुन से ही सेवन करिए, तो मेरा दावा है कि कोई बीमारी कोई मर्ज नहीं आ सकती है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कोई डॉक्टर नहीं फेल कर।
0: जी तो आपका जो कहने का हम अगर निष्कर्ष निकाले तो ये हो सकता है कि जो मौसमी फल होते हैं उनका सेवन जरूर करना चाहिए, और अधिक से अधिक सुबह के समय करना चाहिए।
1: हाँ सुबह के टाइम सही रहता है मैडम, ये फायदेमंद रहता है, और फिर तो दिन भर खाते रहो तो कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि खाना खाने के बाद
0: जी
1: कोई और चीज का सेवन करो तो वो नुकसानदायक ही होता है, ये मैं सत्य बता रहा हूँ।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चांद मोहम्मद जी, और इसी तरह आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए, कार्यक्रम सुनते रहिए, और इतनी लाभप्रद जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं को देते रहिए। शुक्रिया,
1: नमस्कार जी।

0: हेलो, हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते मैम, गुड
0: आपकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है।
1: जी मैम, अभी आ रही हूँ मैम
0: हाँ अभी आ रही है, बिल्कुल। बताइए अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी
1: जी।
0: बता दिए।
1: मैं पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर, जिला रायबरेली से। थैंक
0: राय बरेली से पिंकी जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। कैसी हैं आप?
1: यू मैम। हम बहुत मैम आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए। आप बताइए, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे श्रोताओं से जब इतनी अच्छी बात होती है तो हम और अच्छे हो जाते हैं। पिंकी जी
1: जी, और
0: आज
1: मैम हम लोग आपका इंतजार करते हैं, और जब आपसे मुलाकात हो जाती है ना तो मैम बहुत खुशी मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है।

0: है
1: जी, और खुशी मिलती है तो आपका दिन भी बहुत अच्छा हो जाता होगा, है ना?
0: जी मैम, क्योंकि मैम रेडियो सुनने का हमें बहुत शौक है, और
1: जी
0: जब
1: जी
0: रेडियो पर अपनी आवाज सुनाई देती है ना, तो मैम इसकी खुशी और भी ज्यादा
1: अलग
0: हो
1: ही
0: जाती है।
1: होती है, बिल्कुल। तो ये फोन इन कार्यक्रम का जो सबसे बड़ा लाभ है, जो सबसे बड़ा
0: जी
1: फायदा है, वो यही है कि श्रोता अपनी आवाज भी सुन सकते हैं।
0: जी और
1: जी
0: मैम सभी श्रोताओं की भी आवाज सुनने को मिलती है, और देश विदेश से मतलब श्रोता जुड़ते हैं
1: जी
0: और अपने क्षेत्र के बारे में विशेषताएं बताते हैं, तो मैम बहुत अच्छा लगता है, और
1: जी जी
0: सब
1: जी
0: चीजें जानने को मिलती हैं रेडियो के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
1: जी
0: जी
1: पिंकी जी, अब हम आपसे आज के विषय के बारे में बात करें।
0: बिल्कुल,
1: हाँ, आज हमारा विषय है कि खाद्य पदार्थों के सेवन का सही समय क्या है। इस विषय में आप क्या जानती है, बताइए।
0: जी मैम मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैम जैसे कि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो हमें मैम ज्यादा करके तो मैम दही है, छाछ है, मट्ठा है, ये सब चीजों का सेवन करना चाहिए, ना कि
1: लेकिन
0: कोल्ड ड्रिंक
1: हाँ,
0: का और चाय का,
1: बिल्कुल
0: ऐसी गर्म चीजों का मतलब खान पान नहीं करना चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: और
1: लेकिन
0: मैम योगा भी
1: हम ये
0: करना
1: जानना
0: चाहिए,
1: चाहते हैं।
0: क्योंकि अभी हम लोगों ने मतलब योगा दिवस भी मनाया अंतर्राष्ट्रीय, तो मैम अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख।
1: लेकिन हम ये जानना चाहते हैं पिंकी जी, कि जैसे आपने कहा कि दही का सेवन करना चाहिए, छाछ मठा वगैरह, तो इसका एक विशेष कोई समय आप बताएंगे कि कब करना चाहिए, या दही का सेवन गर्मियों में कब ज्यादा लाभकारी होता है?
0: मैम जैसे हम सुबह खाना खाते हैं तो उसके साथ ही खाएं, और
1: जी
0: मैम जैसे करके अगर दही छाछ को हम खाते हैं, तो मैम ये भी हमारे सेहत मतलब लाभदायक होता है।
1: अच्छा, तो चलिए पिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
0: जी
1: आपने
0: और
1: हमें ये
0: मैम
1: जानकारी दी।
0: गाँव में तो जब चीनी मिक्स करके मतलब जैसे इसका घोल बना के पीते हैं, खाते हैं ना, तो ऐसे में मतलब ज्यादा पसंद करते हैं खाना।
1: जी, चलिए पिंकी जी, धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार
1: हाँ दीदी, नमस्ते।
0: जी। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम है, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम और जगह का नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हाँ दीदी, मैं भागचंद साहू जी बोल रहा हूँ, राजेंद्र नगर गंज वासुदा से।
0: जी साहू जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल।
0: और आज हम जानना चाहते हैं कि खाद्य पदार्थों के सेवन का सही समय क्या है। अब उसमें से कोई भी खाद्य पदार्थ आप चुन सकते हैं कि जिसके बारे में आप
1: हाँ
0: जानकारी दें कि इसका सेवन कब करना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात।
1: तो दीदी, मैं तो देखो खाद्य पदार्थ चीजों में तो देखो बहुत चीजें आती हैं, केला भी है, सेब भी है, ठीक है जी, ऐसी चीजें सभी आती हैं
0: जी, तो
1: जिनका
0: हम
1: सेवन
0: जानना
1: जरूरी
0: चाहते
1: है।
0: हैं कि इनका सेवन का समय जो है वो कौन सा समय ज्यादा लाभकारी है।
1: दीदी वो तो देखो समय के अनुसार सब फल आते हैं और समय के अनुसार खाना चाहिए वो,
0: जैसे
1: बिल्कुल समय के बिना समय के तो खाना बिल्कुल सही नहीं है।
0: जैसे आप बताइए कि कौन सा फल या कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जो बिना समय नहीं खाना चाहिए।
1: दीदी वो तो समय से खाओगे तो सही रहेगा, जैसे अभी आम का मौसम है, आम आ रहे हैं तो आम खा सकते हैं,
0: कब खा
1: केला आ
0: सकते हैं
1: रहा
0: ये
1: है। नहीं
0: बताइए, सुबह ज्यादा लाभकारी होता है या दोपहर में या शाम में।
1: नहीं सुबह सुबह में लाभकारी होता है, केला खाओगे बहुत लाभकारी होता है,
0: और
1: और सेब खा लो वो भी लाभकारी है, अंगूर वगैरह भी आप बाहर में ले लो सुबह के टाइम,
0: सुबह के समय। जी,
1: बिल्कुल ये सब चीजें पौष्टिक आहार है, बहुत
0: पौष्टिक
1: फायदे
0: आहार
1: वाली
0: है
1: चीज है ये।
0: और सुबह के समय अगर हम खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को ये 4 गुना लाभ देता है। ठीक
1: अरे
0: है
1: बिल्कुल, क्यों नहीं देगा दीदी,
0: जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल देगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया साहू जी, आपने हमें फोन किया और ये जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं को बताई। नमस्कार।
1: बिल्कुल दीदी, नमस्ते।

0: कन्या
1: उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या
0: उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या अरे बीड़ा के सब रस ले लिया

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: बताइए अपना परिचय, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं ओम प्रकाश नेमा विद्यानगर तेलीखेड़ा जिला दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: जी ओम प्रकाश जी, स्वागत है। आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, तो बताइए खाद्य पदार्थ के सेवन का सही समय क्या है और आप कौन सा खाद्य पदार्थ चुनकर हमें बताएंगे कि इसे कब खाना चाहिए?
1: देखो, मौसमी जो रहते हैं ना, फल सब्जी वगैरह रहती हैं, तो उसका सेवन करना चाहिए
0: जी।
1: और ये खाना में सलाद अलाद वगैरह ये जरूरी है लेना।
0: ये कब लेना चाहिए सलाद, हमारे श्रोताओं को बताएंगे आप? सुबह लेना चाहिए या नाश्ते के समय लेना चाहिए, लंच के समय लेना चाहिए या शाम को भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ आप बताएंगे?
1: सुबह ही लेना चाहिए।
0: ठीक है, तो आपका कहना है कि सलाद सुबह खाना चाहिए। और ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिन्हें हमें शाम को खाने से अवॉइड करना चाहिए या सुबह ले लेना चाहिए, दोपहर को खाना चाहिए, ऐसी कोई जानकारी आपके पास हो तो बताइए हमें।
1: शाम के समय क्या है कि एक तो समय का विशेष ध्यान रखें कि समय से पहले ही खाना खा लें। माने ऐसा नहीं कि रात की 10 बजे या 11-12 बजे खा रहे हैं अपन, ये गलत है
0: जी, जी।
1: और शाम के समय ऐसी चीजें खाएं जो जल्दी से जल्दी
0: पचने में आसान हो।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे फोन इन कार्यक्रम है, जरूर
1: रखा गया है इस बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में।
0: जी बिल्कुल, हम आपसे विषय पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मैं जिला संगम मध्य प्रदेश से हर्षवर्धन पांडे बात कर रहा हूँ।
0: जी हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: विषय जानना चाहते हैं हम।
0: जी विषय हमारा है कि जो हम कई बार केला, संतरा या अंगूर या अन्य कोई ऐसे खाद्य पदार्थ है, जैसे दही हो गया और चॉकलेट वगैरह है, आइसक्रीम है, तो इनको हमें कब खाना हमारे सेहत के लिए बेहतर होता है ये बताइए, या इससे अलग और कोई खाद्य पदार्थ जो आप जानते हो तो उसके बारे में बताइए हमें कि कब उसका सेवन सही होता है।
1: ये इन सब चीजों का सेवन तो जब हम ये व्रत उपवास वगैरह रहते हैं और जो है इनको जब अपनी ज्यादा इच्छा हो तो तभी खाना, तो ज्यादा अपने को भूख बन के रह लेंगे तो।
0: अच्छा, तो अगर

0: हम ये कहें कि हमारा केले खाने का मन रात में बहुत हो रहा है तो क्या खा लेना चाहिए हमें?
1: तो ये इन फलों का उपयोग हम ज्यादा व्रत और उपवास में ही ज्यादा करते हैं।
0: जी जी
1: और वो जो है
0: लेकिन समय कौन सा सही रहता है? जैसे केला सुबह ज्यादा

0: कर रहे हैं, बताइए।
1: हाँ जी, आपकी आवाज तो आ रही लेकिन मैम स्पष्ट नहीं आ रही है, गाड़ी निकल रही थी।
0: जी जी, अब आ रही है हमारी आवाज सही तरीके से?
1: बिल्कुल आ रही मैम जी, लेकिन बस यह कहना चाहता हूँ मैं
0: जी
1: कि सोमवार को रिकॉर्डिंग मेरी हुई थी लेकिन प्रसारण नहीं हुआ है।
0: जी, हो सकता है जैसे कि अभी आपने हमसे बात की, पीछे से रेलगाड़ी निकली तो आपकी हमारी बातचीत सही तरीके से नहीं हो पाई, कहीं नेटवर्क का इश्यू हो जाता है तो फिर हमें वो फोन कॉल स्किप करना पड़ता है, तो शायद ऐसी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी फोन कॉल के रिकॉर्डिंग में, तो इस वजह से नहीं सुन पाए। और अब आप अपना नाम बता दीजिए और बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में, हम आपसे विचार जानना चाहेंगे कि कहाँ से बात कर रहे हैं और नाम भी बता दीजिए।
1: जी, मैं आपका नीमेश होता है, जय नरसिंहदेव, एफएम रेडियो ग्रुप, ग्राम करकबेल, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर से कमलेश कार बात कर रहा हूँ मैम जी।
0: जी तो कमलेश जी, स्वागत है, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, और आज हमारा विषय है कि खाद्य पदार्थों के सेवन का सही समय क्या है। कुछ
1: जी
0: उदाहरण आप जी हमें दीजिए, उसके फायदे नुकसान भी बताइए। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं ना कि अक्सर हमारे बुजुर्ग जो है घर में बड़े होते हैं वो कहते हैं कि इसे रात में ना खाओ, इसे सुबह ना खाओ, तो ऐसी कोई जानकारी आपके पास है?
1: जी जी, सबसे पहले मैम जी आपका स्वागत करता हूँ श्रोता होने के नाते।
0: जी जी,
1: और बहुत
0: शुक्रिया,
1: अच्छा विषय रखा, क्योंकि अब कुछ समय पश्चात कह सकते हैं बरसात प्रारंभ हो ही गई है लेकिन अभी कभी कभी पानी कहीं कहीं गिर रहा है, कहीं कहीं नहीं।
0: बिल्कुल, तो जैसे हम रहन सहन बदलते हैं तो मौसम के साथ हमारा खान पान भी बदलता है, तो बारिश में या अन्य किसी मौसम में कौन सी चीज सुबह ज्यादा लाभकारी होती है, दोपहर में, शाम को, रात को, तो इस तरह की कोई जानकारी हमें बताइए और हमारे श्रोताओं को भी बताइए।
1: देखिए मैम, ये थोड़ी सी बात और रख दे, लापरवाही तो हम सब करते हैं खाने में।
0: जी,
1: सतर्कता नहीं बरतते तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है,
0: इसीलिए तो हमने ये विषय रखा है कि आप श्रोताओं के माध्यम से ये बात और ये जानकारी एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचे कि सही समय पर सही चीज खाना ही लाभ देता है। कई बार बच्चे जिद करते हैं, केला रात में मांगते हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि केला रात को नुकसान करता है, दही नुकसान करता है या संतरा खा लिया, तो यही चीज हम जानना चाहते हैं और हमारे श्रोताओं तक भी ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि सही समय पर सही सेवन किसी वस्तु का लाभ देता है, तो कुछ उदाहरण आप हमें बता दीजिए जल्दी से।
1: मैं अपना उदाहरण मैं स्वयं कर दे दूं, सुबह से मैम जी मैं तो कुनकुना पानी पी लेता हूं। और रही बात खाने की, तो दिन भर दुकान पे रहता हूं, रह रहकर मैं अपनी स्थिति बता दूं, जलेबियां खाता रहता हूं लेकिन मैं खाना एक टाइम ही खाता हूं।
0: अच्छा,
1: हाँ, और पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करता हूँ, पानी को स्वच्छता के माध्यम से पीता हूँ, तो सभी से निवेदन है कि पानी का सेवन करें लेकिन उसे जानबूझ के करें कि ये हमारे पीने योग्य है कि नहीं।
0: जी जी जी,
1: अधिकतर बीमारियां पानी से होती हैं। बात खाने की हुई है तो लापरवाही सभी बरतते हैं, तो मैं तो सबसे निवेदन करूंगा
0: जी
1: कि हमारे बड़े बुजुर्ग यदि घर में हैं,
0: हाँ,
1: नहीं तो हमें जानकारी रखते हुए खाद्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए जीवन में, क्योंकि हमारी तबीयत बहुत जल्दी बिगड़ जाती
0: है। जी जी, क्योंकि आज खान पान इतना शुद्ध नहीं है।
1: और मैम जी देखिए, अब शुद्धता की बात हुई तो मैं तो किसानी क्षेत्र में रहता हूँ, तो यहाँ पर खाद पाउडर जो होता है फसल में ज्यादा से ज्यादा सींचा जा रहा है, पूरे भारत में सींचा जा रहा है। मूंग अभी आई है, बीज होता है उसे इसी के माध्यम से उर्वरक शक्तियों के माध्यम से किया जाता है, और अंततः उसे एक ऐसे खाद सामग्री सींची जाती है कि वो अंततः वो फसल सूख जाती है और उसे हार्वेस्टर के माध्यम से काट लिया जाता है, तो शुरू से लेकर आखिरी तक उसमें जहर ही जहर सींचा जाता है। तो हम कहाँ तक सतर्कता बढ़ते हैं, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम सभी लोग सतर्क रहें ताकि हमारा जीवन अच्छे से रहे।
0: जी जी, शुक्रिया कमलेश जी, ये आपने बहुत जानकारी अच्छी दी है कि जो खाएं वो शुद्ध खाएं, प्योर खाएं और अच्छे से अच्छा खाएं।
1: और अंत में यही कहूंगा कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा
0: मन। धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, ग्राम बालोदा लखा तहसील बालनगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश है, कन्हैयालाल प्रजापति
0: जी। कन्हैयालाल जी कैसे हैं आप?
1: अब बस बढ़िया, आनंद मंगल है।
0: बढ़िया आनंद मंगल चल रहा है।
1: हाँ, अभी पानी का इंतजार में बैठे हैं, सभी एक आध खेती है हमारे पास, तो
0: हाँ।
1: अगर सोयाबीन लगाएंगे, अगर पानी अच्छा गिर गया तो सोयाबीन लगाएंगे, उसके इंतजार में बैठे हैं।
0: तो ये बताइए कि आप जो ये सोयाबीन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारे खान पान में किस तरह से असर करती है सोयाबीन?
1: ये तो विटामिन बहुत बढ़िया, इसके अंदर तो इसका तेल वगैरह भी निकलता है और कई।
0: तो सोयाबीन किस तरह से खाना चाहिए, आप ये बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: हाँ, सोयाबीन इसको है ना वो गला करके खाना चाहिए थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या है कि विटामिन सबसे अधिक इसमें रहता है क्या?
0: अच्छा, और ये कब खाना चाहिए, सुबह को या रात में?
1: सुबह में, सुबह में, सुबह।
0: अच्छा, तो इसे क्या रात में गला कर रखते हैं फिर सुबह खाना चाहिए, या आप 2 घंटे पहले गला दें और खा ले, ऐसा कोई?
1: दो तीन घंटे पहले गला करके फिर बाद में खाना शुरू कर दो, तो और विटामिन एक नंबर रहता है।
0: अच्छा, और उसका पानी वो जो निकलता है गलाने के बाद में, वो पानी किस उपयोग में लाया जा सकता है?
1: हाँ, वो पानी भी ले सकते हो क्या, पीने के लिए भी ले सकते हो, वो भी अच्छा पानी है।
0: चलिए,

कन्हैयालाल जी, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली कि जो अब फसल आने वाली है तो उसको लेकर भी जो हमारे श्रोता हैं तो वो थोड़े से जागरूक हो जाएंगे कि सोयाबीन हमारे लिए फायदेकारक है और उससे विटामिन मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैयालाल जी, जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम से और सुनते रहिए कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, और इसके साथ ही और दूसरे कार्यक्रम भी। नमस्कार।

0: हेलो, आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: बिल्कुल, स्वागत है आपका। कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे।
0: हाँ जी मैडम
1: जी, नमस्कार, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना नाम।
0: मंदसौर से बोल रहा हूँ, मनोहर लाल मेहर।

0: जी स्वागत है मनोहर लाल जी, कैसे हो आप?
1: बढ़िया हूँ मैम।
0: बढ़िया है। बारिश की क्या तैयारियां चल रही है आपके
1: बारिश
0: यहाँ?
1: तो अभी हुई नहीं है, बारिश की संभावना है, पर गर्मी बहुत पड़ रही है।
0: गर्मी हो रही है और संभावना है, तो बारिश में ये बताइए कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि जहाँ हमें उसे सुबह खाना चाहिए या रात में खाना चाहिए, दिन में, ऐसी कौन सी जानकारी है आपके पास?
1: अभी तो हल्का फुल्का भोजन लेना चाहिए, गर्मी भी बहुत पड़ रही है, बारिश हुई नहीं है। सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि हल्का फुल्का भोजन ले, ये तेल की जो बाजार की जो चीजें हैं ये खाना बंद कर दे, और अपने जो घर पे जो जैसे कोई दलिया बनाओ, जैसे हल्की फुल्की कोई चीजें बनाओ तो अपना शरीर स्वस्थ रहेगा।
0: लेकिन ये है कि दलिया तो हम शाम को खाएं ताकि पाचन भी आसान हो और हल्का फुल्का भी रहता है, लेकिन
1: हाँ, और सवेरे टाइम क्या है कि वो मूंग की दाल बना लो और रोटी, सादी रोटी खाओ
0: हर रोज
1: हर रोज।
0: हाँ, तो जैसे आपने बताया कि मूंग की दाल, तो हमारे अभी एक पहले कॉलर से बात हुई, उन्होंने बताया कि मूंग किस तरह से फसल में उगाए जाते हैं और उसका किस तरह से फर्टिलाइज करके और हम तक पहुंचता है। तो ये जो मूंग की दाल होती है, या इसके अलावा और कौन सी पौष्टिक चीजें होती है जो जिसकी जानकारी आप हमें देना चाहते हो?
1: पालक वगैरह, मेथी की सब्जी, ये ऐसे कुछ सब्जी ऐसी है जो लौकी की सब्जी है, तो ये अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहती है।
0: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये समझो और समझाओ।

0: श्रोताओं, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हमने जानना चाहा कि किसी भी वस्तु के सेवन का सही समय क्या होना चाहिए। शोध के अनुसार अक्सर ये होता है कि बच्चे जब चॉकलेट मांगते हैं हम उन्हें कभी भी दे देते हैं, लेकिन रात में चॉकलेट खाना इसमें कैफीन बहुत होता है जिसके कारण वो नुकसान करता है। सोने से पहले टमाटर खाना ये भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। संतरा और अन्य खट्टे फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं, लेकिन पूरी तरह खाली पेट इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। सभी 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान का आज से 30 जून तक समापन किया जा रहा है। 19 मार्च को शुरू हुए इस अभियान के दौरान लगभग 10,514 करोड़ रुपये की लागत से 3,62,000 से अधिक कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भोपाल से प्रदेश सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 33,92,000 से अधिक भाई बहनों और बुजुर्गजनों के बैंक खातों में मई माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का अंतरण कर रहे हैं। वेनेजुएला में आज 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी कराकास और आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। और प्रदेश में मानसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर कर लेगा। आज प्रदेश के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों में लिखकर भेजते हैं। सुनिए गीत हेमलता के स्वर में। फिल्म का नाम दुल्हन वही जो पिया मन भाए। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है बेलई जिला सागर से। श्रोता हैं लक्ष्मण रायकवार, श्रीमती विनीता रायकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी, अनरत रायकवार और ऋषि रायकवार। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सरस्वती चंद्र से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और मुकेश ने, गीत लिखा इंदिवर ने, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है राहुल नगर यवतमाल से। श्रोता हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी। अगले श्रोता राजावत परिवार हैं, मध्य प्रदेश से। मनमोहन रजावत, मधु रजावत, राशि, रशिद, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और ऋषभ। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जूली से। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राजेश रोशन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कवर कॉलोनी बड़वाह से। श्रोता हैं प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनूराज शिमाली। अगले श्रोता भाटापारा दत्तरिंगी छत्तीसगढ़ से हैं। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। चलिए श्रोताओं, सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जुबेदा से। इस गीत को सुरों से सजाया कविता कृष्णमूर्ति ने, गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीतकार A.R. रहमान। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है औरंगाबाद से। श्रोता हैं राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि। अगले श्रोता रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की आवाज़ में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म लम्हे से। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं शिवहरी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। श्रोता है कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुश्तबा, आफिया, रऊफ और शाहिद। अगली श्रोता गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। और श्रोता हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदे मातरम

0: 150 के साथ जरूर भेजिए #VandeMataram150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: जब जब जिधर निकल पड़े घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी का सातवां भाग।

धारावाहिक में अब तक आपने जाना, राजकुमार विजय श्रवा से प्रेम करने के कारण धारा नगरी के राजा द्युम्न सेन ने नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया।

0: को विश्वास दिलाया कि वो उसका विवाह राजकुमार से अवश्य करवाएगी। राजकुमार ने संदेशवाहक से भुवन मोहिनी को अपने आवास पर बुलवाया, परंतु हज करके राजकुमारी चंद्रहासिनी भी आ गई। भुवन मोहिनी ने राजकुमार से चंद्रहासिनी को अपनाने का आग्रह किया, परंतु विजय श्रवा ने साफ साफ कह दिया कि भुवन मोहिनी का जो स्थान उसके हृदय में है उसे कोई नहीं ले सकता। इसके बावजूद भी चंद्रहासिनी ने इस सच को स्वीकार कर लिया। तीनों ने मिलकर मेले का भ्रमण किया, जहां राजकुमार के माता पिता मिले। वहां राजकुमार ने राजमाता को आश्वासन दिया कि वो भारतीय सीमा पर आक्रमण करने वाले हूणों को पराजित करने के बाद चंद्रहासिनी से विवाह करेगा। अब आगे क्या होता है ये सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की सातवीं कड़ी में।
1: सम्राट दुमत सेन की जय। सम्राट दुमत सेन की
2: जय।
1: सम्राट दुमत सेन की
2: जय।
3: समस्त खंड राज्यों के राजा महाराजाओं को भारत सम्राट द्युमत सेन का यथा योग्य अभिवादन। इंद्रप्रस्थ मेले के इस पुनीत अवसर पर हम सब अति गंभीर प्रश्न पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, और ये प्रश्न है भारत पर ह्यूणों का आसन्न आक्रमण। हम देख रहे हैं कि हमारी सीमा पर ह्यूण जाति के बाहरी लोग लगातार छुटपुट आक्रमण कर रहे हैं। आप सभी अवगत हैं कि हूण बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और हमारी पुण्य पावन धरती को छीनना चाहते हैं। इस हेतु आप सबकी अंत इच्छा को हम जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए।
4: हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए।
3: हमारी भी यही इच्छा है, पर आप लोग जानते हैं कि हमारी आयु अब बहुत हो चली है। ऐसी स्थिति में क्या आप सब खंड राज्य के अधिपतिगण इस सभा में उपस्थित हमारे युवराज विजय श्रवा के नेतृत्व को स्वीकार करने की सहमति देते हैं?
5: इसके पहले कि आप सब किसी निर्णय पर पहुंचे, मैं इंद्रप्रस्थ नरेश आदित्य सेन युवराज विजय श्रवा के विषय में आप सबको कुछ जानकारी देना चाहता हूं।
6: अवश्य अवश्य अवश्य,
5: क्योंकि आप में से कई नरेशों ने युवराज विजय श्रवा की वीरता के बारे में नहीं सुना होगा। क्या आपकी अनुमति है?
6: अनुमति है, अनुमति है।
5: माननीय सभासदों, कुमार विजय श्रवा ने अतीत में हुए मगध और सूत प्रदेशों की लड़ाइयों में अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था। उन्होंने जिस चतुराई से इन युद्धों का संचालन किया था वैसा भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया। युद्ध में किस तरह साम दाम दंड और भेद की नीति अपनाकर शत्रु को चारों खाने चित करना चाहिए, युवराज को भली भांति जानकारी है। उन्होंने यह कला किसी और से नहीं अपने यशस्वी पिता सम्राट दुमत सेन से ही सीखी है। युवराज विजय श्रवा ने मगध के युद्ध में जिस प्रकार मोर्चेबंदी की वह अविस्मरणीय है। विपक्षी सेना को पता चला कि युवराज विजय श्रवा की सेना घबरा गई है और पीछे हट रही है, तो वो पीछा करने में लग गई। जैसे ही युवराज ने देखा इस पीछा करने की कार्यवाही में शत्रु सेना छिन्न भिन्न हो गई है, तो उन्होंने अपने सुनियोजित एक ही प्रबल आक्रमण से शत्रु सेना को चारों ओर से घेर लिया और बंदी बना लिया। मित्रों, हमें हूणों के साथ ऐसी ही बुद्धिमत्तापूर्ण युद्ध की नीति अपनानी होगी। मत भूलिए कि हूण अत्यंत ही बर्बर और आक्रामक जाति है, जिसका इस धरती पर प्रवेश मात्र हमारी दासता को आमंत्रण नहीं होगा अपितु हमारी संस्कृति का सर्वनाश होगा। अब निर्णय आपके हाथ में है।
6: हमें युवराज विजय श्रवा का ही नेतृत्व चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ।
3: तो अब हम यही निर्णय मानते हैं कि युवराज विजय श्रवा के नेतृत्व में समस्त खंड राज्यों की सेनाएं हूणों से युद्ध के लिए तैयार की जाएं।

0: महाराज का क्या कहना है?
1: सभी महामहिम नरेशों का मैं अभिवादन करता हूं। आप लोगों की आज्ञा शिरोधार्य है। मैं भावी युद्ध आप सब वयोवृद्धों के आशीर्वाद और आदेशों से लड़ूंगा। हमें राष्ट्र के युवकों में वीरता की ज्योति जगानी पड़ेगी। उनके भालों को लोहित टीकों द्वारा सुसज्जित कर रणभूमि में भेजना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपनी सेना के साहस और शौर्य को बहुगुणित करते हुए शत्रुदल को शीघ्र ही पराजित कर भारत की विजय पताका फहराऊंगा। कृपया मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सिर कटाने के लिए तैयार रहेंगे धन्यवाद।
2: कितनी अद्भुत बात है।
3: कौन सी बात?
2: जिस विजय सभा को हम अकर्मण्य और विलासी समझते थे उसने तो युवाओं में उत्साह भर दिया।
4: राजमाता, आज राजकुमार जी ने राष्ट्र में नए प्राणों का संचार कर दिया।
5: अरे ये सब मेरी भावी पुत्रवधु चंद्रहासिनी के सौभाग्य का परिणाम है। मेरे पुत्र के जीवन में चंद्रहासिनी का प्रवेश जैसे ही हुआ वो राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को भी समझने लगा। क्यों चंद्रहासिनी?
6: ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इस योग्य मान रही हैं।
1: आपने मुझे बुलाया माँ।
5: आओ पुत्र, पुत्र हमें तुम पर गर्व है।
1: माँ, एक दिन आपको आशंका हुई थी कि कहीं मैं विलासी बनकर स्वाभिमानिनी माता का दूध कलंकित न करूं। उसी क्षण मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपकी आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध करके रहूंगा। इसीलिए मां, उसी समय मैंने ये भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा।
5: पुत्र?
1: हां मां, ये मेरा स्पष्ट निर्णय है।
5: नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे लाल। अपनी इस वृद्धा माता की भूल को क्षमा करो। मैं जानती हूं कि मैंने अपने ही हृदय के टुकड़े को कठोर और अपराध युक्त वाकवाणों से पींद कर उसका बहुत अपमान और तिरस्कार किया था, किंतु तुम्हारी निश्चल तपस्वी मूर्ति को देखकर मेरा हृदय स्वयं अपने कहे वाकवाणों के लिए पश्चाताप कर रहा है। इसके अतिरिक्त मात्र सेवी पुत्र को जो निरर्थक कष्ट सहना पड़ा वो भी मेरे मातृत्व के विपरीत कार्य हुआ है। इन समस्त त्रुटियों को करते हुए भी चंद्रहासिनी को मैंने पुत्रवधु के रूप में स्वीकार कर लिया है पुत्र, और महारानी कुमुद वल्लभा को मैंने और महाराज आदित्य सेन को सम्राट ने वचन दान भी कर डाला है। क्या मातृ पितृ सेवी पुत्र से अवज्ञा की आशा की जा सकती है? क्या सम्राट और मेरे वचनों का कोई मूल्य नहीं है मेरे पुत्र? क्या विवाह की स्वीकृति देने का अधिकार कभी भी तुमसे छीना था हमने? यदि नहीं तो आज की राजपुत्रियों में चंद्रहासिनी ही सर्वश्रेष्ठ राजकुमारी है, जो अक्षय यौवना, अनिंद्य सुंदरी, पारंगत विदुषी और विनयपूर्ण आज्ञाकारिणी है। उसका समग्र जीवन चरित्र और सौंदर्य निष्कलंक है। फिर भला ऐसी राजपुत्री को अपनी पुत्रवधु बनाने का लोभ मैं कैसे संवरण करूं? तुम ही बताओ।
1: मां, मैं अपनी ओर से जो कुछ चंद्रहासिनी को दे सकता था भुवन मोहिनी को साक्षी बनाकर दे दिया है। इससे अधिक आज मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि मैं विवाह आदि के बंधनों में जितना ही उलझूंगा राष्ट्र रक्षा का प्रश्न उतना ही जटिल होता जाएगा। इसलिए मां, महान दायित्वों के सामने एक व्यक्ति के विवाह का मंगल कार्य तुच्छ है, चाहे साम्राज्य का उत्तराधिकारी ही क्यों ना हो। आप जानती हैं मां

0: अनासक्ति की तुलना में सर्वदा आसक्ति ही पराजित हुई है। फिर भी आप ये सब कह रही हैं? एक ओर मैं राष्ट्र की सेवा को तत्पर हो रहा हूं और दूसरी ओर राजकुमारी चंद्रहासिनी से विमुख भी हो रहा हूं। समग्रता में क्या उचित है क्या अनुचित नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि कल तक मैं शून्य जीवन व्यतीत कर रहा था, अकर्मण्यता का जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु आज तो मैं स्वयं के होने का भावार्थ समझ गया हूं। आज मेरे लिए जीवन का एक भी क्षण मूल्यहीन नहीं है, वो देश के लिए है, वो राष्ट्र के लिए है। मेरे माता पिता ने मेरी उपेक्षा की, सुनसान पहाड़ियों में, जंगलों में निरुद्देश भटकता रहा मैं, परंतु अब उन्हीं माता पिता के हृदय से स्नेह, सौभाग्य और आशीर्वाद की त्रिवेणी निकल रही है मेरे लिए। मुझे जो चाहिए था मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरण्यक?
1: हाँ मित्र।
0: धारा नगरी को प्रस्थान करने की तैयारी करो, और हां किसी भृत्य को कहो कि शीघ्र जाकर भुवन मोहिनी को मेरा संदेश सुनाए कि वो भी मेरे ही साथ मेरे रथ में बैठकर मातृभूमि की यात्रा करने की शुभ आयोजना में संलग्न हो। उसके भृत्य और वैयक्तिक संपत्ति आदि जो भी हो वो अपने रथ में लेकर शीघ्र ही पर्णकुटी में आ जाए, और हां उससे निश्चित रूप से स्मरण करा दिया जाए कि एक दिन उसके निर्वासन की घड़ी में मैंने प्रतिज्ञा ठानी थी कि उसे बुलाने के लिए मैं ही अपना रथ लेकर आऊंगा। वो बेला आज उपस्थित है।
1: जो आज्ञा युवराज, मैं अभी जाता हूं।
2: क्या सोच रही है हमारी भावी पुत्रवधू?
3: राजकुमार ने भुवन मोहिनी को बुलवाया है।
2: अच्छा?
3: अपने साथ धारा नगरी ले जाने के लिए वो तैयारी भी कर रही है।
2: कोई बात नहीं पुत्री, इसमें तुम परेशान ना हो, मैं अपने पुत्र को अच्छी तरह जानती हूँ।
3: माँ, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी जाऊं।
2: तुम्हारी भी इच्छा है, परंतु पुत्री हम लोग तो धारा नगरी बाद में पहुंचेंगे, क्योंकि अभी हमें सम्राट के साथ संपूर्ण देश की परिक्रमा करनी है। तब तक तुम अकेली प्रासाद में कैसे रुकोगी? देखो पुत्री, कुछ दिन और धैर्य रखो, उसके बाद शीघ्र ही तुम हमारी पुत्रवधू बनकर राज प्रासाद की स्वामिनी बनोगी। फिर भी यदि हमारे युवराज तुम्हें अतिथि के रूप में अपने साथ ले जा सकें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, अपने माता पिता की आज्ञा अवश्य ले लेना।
3: धन्यवाद माँ। मेरी माता ने भी मुझे आज्ञा दे दी, परंतु अब मुझे फिर से भुवन मोहिनी की शरण जाना पड़ेगा, ये जानती हुई भी कि वो मेरे प्रिय के अंतर मन में देवी की भांति स्थापित है। ठीक है, जाती हूँ भुवन मोहिनी के पास।
4: अरे राजकुमारी जी, आइए, बस मेरा सामान रथ पर रखा ही जा चुका है। राजकुमारी, मेरे गले लगिए, मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगी आपके पिता महाराज की, उन्होंने मुझे आश्रय दिया था। अरे आप अनमनी मत होइए, मैं जब तक आपको राजकुमार के हृदय का हार नहीं बनवा दूंगी शांत ना होंगी। राजकुमार आपको अवश्य स्वीकार करेंगे।
3: सखी, हृदय में जिस प्रेमाग्नि की लपटें धधक उठी हैं, वे क्षणिक वियोग की अश्रुधाराओं से बुझने ना पाए, बस यही तुमसे प्रार्थना है। न जाने क्यों आज ऐसा लगता है कि राजकुमार के ओझल होते ही मेरे जीवन की समग्र प्रसन्नता लूट जाने वाली है। मेरे नेत्र आंसुओं को नहीं संभाल सकते, मैं असहाय अपने जीवन को बचा न सकूंगी। बताओ बताओ सखी, मैं क्या करूं जिससे वो मेरी दृष्टि से ओझल ना हो।

0: राजकुमारी जी, संयोग वियोग मानव जीवन का अटल धर्म है, इसे सहन करना ही पड़ेगा, चाहे हंसकर सहन करो या रोकर। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय और संयोग वियोग का सम्मिश्रण ही तो मानव जीवन का लेखा जोखा है।
1: सखी, मैं मानव जीवन की परिभाषा नहीं जानती, न यही जान सकी हूँ कि मानव जीवन की उपयोगिता क्या है और ये जीवन में क्यों प्राप्त हुआ।
0: किंतु इसे तो जानना पड़ेगा राजकुमारी।
1: अवश्य प्रयास करूंगी, किंतु मात्र राजकुमार विजय श्रवा के माध्यम से। अकेली न मैं कुछ कर सकती हूँ न समझ सकती हूँ। विजय श्रवा के बिना मैं उस सरिता का शून्य अंक या गर्व ही बनी रहूंगी जिसका गंभीर और जीवनप्रद सरस रस पूर्णत्व की स्थिति के पूर्व ही सूख चुका है और जो शून्य से अधिक कुछ भी नहीं।
0: राजकुमारी, क्या आप मेरे साथ धारानगरी चल सकेंगी? युवराज से मैं आज्ञा ले लूंगी इसके लिए, निश्चिंत रहिए।
1: धन्यवाद सखी, तो मैं भी अपनी तैयारी कर लेती हूँ।
0: हाँ हाँ

0: सारथी, राजकुमार के वापस लौटने की सूचना पाकर न जाने कितनी भीड़ उनसे मिलने के लिए आ पहुंची है। भुवन मोहिनी भी कब की आ चुकी हैं, परंतु उन्हें अवकाश ही नहीं मिल रहा है।
1: अरे भुवन मोहिनी नहीं, राजकुमारी भी आई हैं।
0: क्या कहते हो?
1: मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा।
0: नहीं, मैं भी जाकर युवराज को बताता हूं।
1: हाँ हाँ जाओ।
0: मित्र मित्र मित्र
2: क्या है अरण्यक?
0: देव, भुवन मोहिनी पर्ण कुटी में आ चुकी हैं, किंतु उनके साथ साथ राजकुमारी चंद्रहासिनी भी पधारी हैं।
2: अरे तो ऐसा करो कि तुम उन दोनों की सेवा में प्रस्तुत रहो, और जैसे ही अवकाश मिलेगा मैं उन लोगों के बीच आ जाऊंगा और हम सब एक साथ भोजन करेंगे।
0: बहुत अच्छा मित्र, अभी जाता हूं।
2: बस बस, देखिए अब अधिक समय मैं नहीं दे पाऊंगा, यात्रा में विलंब होगा। आप सब जोश बनाए रखिए और आगामी युद्ध की तैयारी करिए।
3: युवराज विजय शर्मा की
4: जय!
3: युवराज विजय शर्मा की
4: जय!
3: युवराज विजय शर्मा की
4: जय!
2: भुवन मोहिनी, आज की घड़ी कितनी शुभ है। आज हमारे स्वतंत्र पुनर्मिलन का अति मूल्यवान क्षण उपस्थित हुआ है, और संयोग से उसमें भाग लेने के लिए राजकुमारी चंद्रहासिनी भी उपस्थित हैं। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें पुरस्कृत करूं।
5: देव चिरायु हो, मेरे समस्त सुख वैभव के क्षण तभी उपस्थित हो जाते हैं जब देव के पावन दर्शन में मुझ जैसी नारी के तुच्छ जीवन क्षण व्यतीत होते हैं। फिर भी देव के श्रीमुख से पुरस्कृत किए जाने का विशेष आदर पाकर मैं कृतार्थ हूँ।
2: आज तो राजकुमारी का नाम सार्थक ज्ञात होता है।
6: हाय, बलिहारी जाओ राजकुमार, कम से कम इतना तो कहा।
2: ओ रूप की जादूकरनी, अनमोल मोल का सौदा करके तुमने मुझे प्रेम की एकांत साधना से विचलित कर दिया है। मेरी पलकों में नाचकर तुमने अंतर के प्रेम रहस्य को पहचान लिया है। तुम बरजोरी से वहां प्रवेश कर चुकी हो जहां भुवन मोहिनी चिरकाल से प्रतिष्ठित रहती आई है। तुमने एक अपराजिता सौंदर्यमयी नारी को भी अपने मायावी रूप के बंधन में जकड़कर उसके रूपोन्मोहन से स्खलित कर दिया है। तुम्हारे ये विशाल नेत्र अपने पलकों में रूप की मदिरा उड़ेल कर मुझे मद विह्वल करते जा रहे हैं। मैं इनका जितना ही चक्षुपान करता हूं मेरी प्यास उतनी ही बढ़ती जा रही है।
5: देव, मेरा पुरस्कार मुझे मिलेगा?
2: हाँ हाँ, तुम मांगो तो।
5: एक बार आप और सोच लें, मैं जो कुछ मांगूंगी वो आपको देना ही होगा।
2: बस वो वस्तु मेरे प्राण से अधिक मूल्यवान न हो। मैं अगणित भुवन मोहनियों और चंद्रहासिनियों को अकेला प्यार करूंगा। चिर अद्वैत आज द्वैत की भावना से मूर्तिमान है। प्रेम वासना का प्रतिनिधि है,

0: मुझे इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी। आज अनंग का रंग तपस्वी विजय श्रवा की पवित्र नाड़ियों में मोहित मूर्छना का विष घोलता जा रहा है।
1: देर मत करो प्रिय, आज मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी देकर अपने दानी होने का परिचय दूंगा। तुमने देर की है, एक के स्थान पर दो पुरस्कार मांगो।
0: देव, दूसरा पुरस्कार तो भविष्य के लिए सुरक्षित रखती हूँ, परंतु पहला पुरस्कार यही मांग रही हूँ कि राजकुमारी चंद्रहासिनी हम लोगों से क्षण भर के लिए भी विलग ना हो।
1: क्या? मैंने वचन दिया, परंतु ध्यान रहे, यदि भविष्य में विजयश्रवा तुमसे दूर होता दिखाई पड़े तो उस स्थिति में संपूर्ण दोष का दायित्व तुम्हारा होगा। जानती हो ना, मानव जीवन पतन का भी इतिहास रहा है।
0: राजकुमारी, मैंने अपनी प्रियतम सौगात आपको अर्पित कर दी है। हो सके तो इस सागर से बिंदु मात्र मुझे प्रदान कर अपनी उदारता का परिचय देना, किंतु वो कभी बदला चुकाने की दृष्टि से ना हो। राजकुमारी, आपने मुझसे जब जो कुछ चाहा है वो सब मैंने आपको अर्पित किया है। अब आप मेरी छोटी बहन बनी है ना, किंतु हमारा ये संबंध बहुत एकांत का है। समाज और संसार की दृष्टि में आप एक महामहिमामयी और मैं मात्र एक तुच्छ नारी हूं।
2: बहन, कृतज्ञता ज्ञापन के लिए मेरी वाणी में शब्द नहीं है। तुमने बारंबार मेरे जीवन को आत्म प्रवंचना और आत्म प्रताड़ना के गर्त से ऊपर उठाकर सुख शांति और समृद्धि के स्वर्ग में प्रतिष्ठित किया है। देव स्वयं साक्षी हैं, तुम अपने महान दैवी संपत्ति द्वारा अपने जीवन को सजाकर एक अशुभ नारी से अब देवी बन चुकी हो। मैं तो शक्ति, अहंकार, अहमन्यता और सत्ता की गोद में पलकर साधारण मानवी हूं, भले ही मेरा वाह स्वरूप महानता का परिचायक हो।
0: मेरी बहन,
1: ये नारी जिसने अपना अंतर और वाह मेरे लिए बिखेर रखा है, मैं उसे कब से समेटकर अपने आप में छिपा लेना चाहता रहा हूं, किंतु मैं उसका बिखरना रोक नहीं पाता, मैं उसे अपने आप में समेट नहीं पाता।
0: देखा राजकुमार, मेरी छोटी बहन की महानता को, स्वयं इतनी विशाल हृदय होकर मेरा गुणगान करने चली है।
1: भुवन मोहिनी, मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं सका। जब भी मैं अपनी समझ की परिधि में तुम्हें घेर लेता हूं, तभी मुझे ज्ञात होता है कि तुम्हारे व्यक्तित्व का ना जाने कितना भाग अभी भी मैं स्पर्श नहीं कर सका। समझ की परिधि के भीतर लाना तो दूर की बात है।
0: ये भी देव की ही कला है, मुझे आदर देकर वो राजकुमारी को ही प्यार जता रहे हैं। अच्छा, अब देव का आदेश हो तो अरण्यक सबको भोजन कराएं।
1: अवश्य प्रिय, भोजनादि करके सब लोग शीघ्र ही सो जाएं और कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में धारा नगरी को निकल पड़ें।

0: संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की सातवीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। सभी 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। प्रदेश भर में कल अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे की लत से बचाना, पुनर्वास में मदद करना और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। प्रदेश भर में 30 जून तक जलगंगा अभियान चलाया जा रहा है। 19 मार्च से शुरू हुए इस अभियान के दौरान लगभग 10,514 करोड़ रुपए की लागत से 3.62 लाख से अधिक कार्यों का क्रियान्वयन किया जा चुका है। वेनेजुएला में आज 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी काराकास और आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख जताया है। प्रदेश में मॉनसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मॉनसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर कर लेगा। आज प्रदेश के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए में आज भारत बांग्लादेश के बीच मुकाबला मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुनने वाली श्रोता बहनों को एक साथ तय समय पर रेडियो सेट के करीब लाने की जिम्मेदारी आज है हमारी। तो बहनों, आप सबको आपकी अपनी सखी सुधा मिश्रा का नमस्कार। हम आपको बता दें बहनों कि हर वर्ष 25 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। बहनों, यह दिवस उन लाखों नाविकों और समुद्री कर्मियों को समर्पित है जो समुद्र की अथाह गहराइयों और कठिन परिस्थितियों के बीच बने रहकर वैश्विक व्यापार और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखते हैं। कहा जाता है कि अगर नाविकों के पहिए थम जाएं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था की गति भी प्रभावित हो सकती है। बहनों, विषय कुछ ऐसा है कि हमारे और आपके लिए रोजमर्रा से थोड़ा अलग हटकर है, लेकिन इन अनदेखे नायकों को जानना भी तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि बहनों आज भी पूरी दुनिया का लगभग 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से संपन्न होता है। ऐसे में नाविकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। समुद्र में कई कई महीनों तक अपने परिवार से दूर रहकर काम करना, मौसम अपने विपरीत भी हो तो भी काम करना, तूफानों और अनेक चुनौतियों का सामना करना आसान नहीं होता। फिर भी अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और अदम्य साहस के बल पर ये नाविक विश्व के देशों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। भारत जैसे विशाल समुद्री तट वाले देश के लिए भी नाविकों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय समुद्री कर्मियों ने अपनी दक्षता और प्रतिबद्धता से विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज विश्व के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन समुद्री मार्ग से होता है। भोजन, दवाइयाँ, ईंधन, मशीनें और दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली कई वस्तुएं समुद्री जहाजों के माध्यम से ही एक देश से दूसरे देश तक पहुँचती हैं। इस दृष्टि से नाविक वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक

महत्वपूर्ण कड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन को सहज और सुचारू बनाने में अनेक ऐसे लोग भी योगदान देते हैं जो प्रायः हमारी नज़रों से दूर होते हैं। इसलिए आज का दिन उन अनदेखे नायकों को धन्यवाद देने और उनके योगदान का सम्मान करने का दिन है। और चलिए कुछ ऐसे ही भावों से ओतप्रोत हम सुनवाते हैं आपको यह खूबसूरत सा गीत।

0: और बहनों, अब हम आपको लिए चलते हैं आज की अपनी भेंटवार्ता की तरफ। हमारी भेंटवार्ता का विषय है मधुमेह, हृदय रोग और योग। योगाचार्य अवनीश तिवारी जी से बातचीत की है डॉक्टर बैजनाथ गौतम ने।
1: श्रोताओ, योग के क्षेत्र में योगाचार्य अवनीश तिवारी जी

0: का नाम आज बहुत ही जाना पहचाना है। तिवारी जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, स्वागत है आपका हमारे श्रोताओं के बीच में।
1: नमस्कार।
0: और आज का हमने विषय जो निर्धारित किया है वो है मधुमेह, हृदय रोग और योग। तिवारी जी, मधुमेह एक ऐसा रोग है या कहें कि शरीर का एक ऐसा लक्षण है जो अगर आ जाता है तो बहुत परेशान करता है
1: जी,
0: और फिर वो छूटता भी नहीं है
1: जी,
0: एक लंबे समय तक छूटता भी नहीं है। कहीं योग का सहारा लेता है व्यक्ति, कहीं आयुर्वेदिक दवाइयों का, कहीं होम्योपैथी दवाइयों का, कहीं एलोपैथी दवाइयों का, जिसको जो समझ में आता है उसका वो सहारा लेके उसको नियंत्रित करने के लिए परेशान रहता है, भाग दौड़ भी करता है शरीर को एडजस्ट करने के लिए। आज का हमारा विषय इसीलिए मधुमेह, हृदय रोग और योग। ये मधुमेह और हृदय रोग दोनों जुड़े हुए हैं
1: जी।
0: आज हम आपसे योग के माध्यम से बहुत सारी बातें जानना चाहेंगे
1: जी।
0: कि योग क्या कहता है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि वो विधि बताएं हमारे श्रोताओं को कि मधुमेह के चपेट में हम आए तो उससे पहले बचाव के उपाय क्यों नहीं।
1: बहुत सही कहा आपने। देखिए, योग एक जीवन की शैली है, एक लाइफ स्टाइल है
0: जी।
1: उस लाइफ स्टाइल के माध्यम से आज मधुमेह जो है महामारी बनती चली जा रही है
0: जी।
1: हृदय रोग भी उसका एक पार्ट है
0: जी,
1: उससे अपग्रेड होंगे तो हृदय रोग है
0: जी।
1: तो मधुमेह के तीन दुश्मन हैं
0: जी।
1: पहला दुश्मन आपका है मस्तिष्क
0: जी।
1: यदि मधुमेह आपका बढ़ रहा है तो कभी भी ब्रेन हेमरेज आपको हो सकता है
0: जी,
1: इनफॉग ब्रेन में हो सकता है
0: जी।
1: दूसरा उसका दुश्मन है हार्ट
0: जी,
1: मायोकार्डियल इनफॉग आपको हो सकता है
0: जी,
1: कोरोनरी ब्लॉक आपकी हो सकती है
0: जी,
1: नेफ्रॉन्स किडनी के प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं
0: जी।
1: इसके तीन दुश्मन हैं
0: जी,
1: और ये तीन दुश्मन आपको पूरा जीवन चौपट कर देंगे
0: जी।
1: इसका सिर्फ एकमात्र रीजन है
0: जी,
1: हमारे जीवन जीने की शैली
0: जी।
1: मानसिक तनाव बढ़ते चले जा रहे हैं
0: जी,
1: जीवन स्तर में विकटता पैदा होती चली जा रही है
0: जी।
1: साथ ही हम भागम भाग की दौड़ में अपने आप खोते चले जा रहे हैं अपने आप को
0: जी।
1: तो पहली बात यह है कि योग हमको जीना सिखाता है
0: जी।
1: हमें क्या खाना है
0: जी,
1: कितना खाना है
0: जी,
1: कैसे खाना है
0: जी,
1: कैसे चल रहा है, कितनी एक्सरसाइजेस देना है
0: जी,
1: अपने ऑर्गन को कितना अच्छा बनाना है
0: जी,
1: ये हमको योग सिखाता है
0: जी।
1: योग एक तकनीक है, टेक्निक
0: जी,
1: है
0: जी।
1: उस टेक्निक के माध्यम से हृदय रोग, मधुमेह, रक्तचाप, मानसिक तनाव
0: जी,
1: बहुत सी प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं आप
0: जी।
1: दुनिया में एलोपैथी यदि आपकी बात करते हैं तो केवल एलोपैथी में कंट्रोल है
0: जी,
1: क्योर नहीं है
0: जी।
1: मधुमेह का ट्रीटमेंट
0: जी
1: नहीं है
0: जी,
1: केवल कंट्रोल है
0: जी।
1: हार्ट डिजीज केवल दवाइयां खा सकते हैं आप
0: जी,
1: उसका क्योर नहीं है
0: जी।
1: रक्तचाप का क्योर नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि सारी बीमारियां लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करती हैं
0: जी,
1: आपकी जीवन शैली कैसी है
0: जी।
1: यदि हमने जीवन शैली में आमूल परिवर्तन कर दिया तो हम इन बीमारी को खत्म कर सकते हैं।
0: हम चाहते हैं कि वो जीवन शैली हमारे श्रोताओं को आप बताएं जिससे एक स्वस्थ जीवन जिया जा सके।
1: बहुत बढ़िया। देखिए, पहली बात यह कि हमें अपने परमात्मा ने 24 घंटे आपको दिए हुए हैं
0: जी।
1: 24 घंटे में से हम एक सवा घंटे अपने आप को दें, बाकी 23 घंटे दुनिया को बांट दें।
0: क्या बात है।
1: वह अपने आप का एक कैप्सूल तैयार करिए आप
0: जी,
1: कि मुझे इतने आसन करना है, इतने प्राणायाम करना है, इतनी एक्सरसाइजेस करना है, इतना पसीना मुझे बहाना है
0: जी।
1: वर्टिकल एक्सरसाइजेस हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइजेस हैं
0: जी,
1: है ना, फ्लोर एक्सरसाइजेस कहलाती हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज उसमें होती हैं
0: जी।
1: यदि योग नहीं बनता तो आप दंडवत करें, कुछ भी कर लीजिए आप
0: जी,
1: लेकिन आपको घंटे अपने आप को देना है।
0: क्या बात है।
1: उस एक घंटे के माध्यम से जो स्वेटिंग आपको होगी, जो ज्वाइंट्स आपके खुलेंगे, जो पेट आपका साफ होगा, उससे आपकी पूरी टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे।
0: क्या बात।
1: और मानसिक तनाव में कमी आपको आएगी। देखिए, डायबिटीज का सिर्फ एक मात्र कारण है, वह है हाइपर। जितना मानसिक तनाव आपका हाई

0: पर स्ट्रेस आपका बढ़ेगा
1: जी
0: तो शुगर लेवल आपके एबनॉर्मल कभी हो सकता है
1: जी।
0: तो मानसिक तनाव को जितना आप कम करेंगे
1: जी
0: उतना ज्यादा शुगर लेवल आपका बैलेंस होगा
1: जी।
0: इसका दोषी जीन्स भी है, ऐसी बात नहीं है, जेनेटिक भी है ये
1: जी,
0: है ना। यदि पिताजी को है तो आपको आने की संभावना है
1: जी,
0: माँ को है तो आपको आने की संभावना है
1: जी,
0: दादा को है तब भी आपको आ सकती है
1: जी।
0: ये जीन्स डिजीज भी कहलाती है ये
1: जी।
0: लेकिन उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं
1: जी।
0: देखिए जितने भी हमारे ऑर्गन हैं
1: जी,
0: उन ऑर्गन ये बहुत ही सेंसिटिव हैं
1: जी।
0: मानव का मस्तिष्क
1: जी
0: और उसके ऑर्गन बहुत ही सेंसिटिव हैं, जो मैसेज उसमें डालोगे उसको फॉलो करते हैं। जो हार्ट को कहोगे, हार्ट उस बात को मानता है
1: जी,
0: ब्रेन उस बात को मानता है
1: जी,
0: पैनक्रियास उस बात को मानती है, पैनक्रियास उस बात को मानती है। तो जितना जो मैसेज कन्वे आप करोगे उसको, उस मैसेज को फॉलो करते हैं, उसी के माध्यम से आपकी डिजीज डिसाइड होती है
1: जी। जी
0: तो पहली बात, लाइफस्टाइल डिजीज को खत्म यानी खत्म करने के लिए अपने को हम लोग जीवन शैली, पहली बात नियमितता जीवन में
1: जी।
0: जितना नियमित आप होंगे अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाएंगे आप, पहली बात
1: जी।
0: नियमित समय पर उठना
1: जी,
0: एक्सरसाइजेस करना
1: जी,
0: सुबह उठते साथ ही कम से कम आपको 2 ग्लास पानी पीना
1: जी,
0: पेट साफ करने के लिए
1: जी।
0: जितना कचरा पेट का आपका साफ होगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा
1: जी।
0: 2 ग्लास पानी में कुनकुना पानी करिए, उसमें नींबू डालिए आप
1: जी।
0: नींबू डालने के बाद आपका पेट बढ़िया साफ आपका होगा,
1: बहुत बढ़िया
0: है ना। दूसरी बात क्या है, रोज 1 लहसुन खाइए
1: जी।
0: लहसुन रक्तचाप को सामान्य करता
1: है, कच्चा
0: कच्चा लहसुन खाइए, उसको कुटक जाइए आप
1: जी,
0: और पानी ऊपर से पानी पी लीजिए आप
1: जी।
0: तो पहली बात क्या है कि पेट की तमाम गैस कचरा बाहर निकल जाएगा आपको
1: जी।
0: उसको चबाओगे तो हो सकता है आपका एसिड बन जाए
1: जी,
0: लेकिन उसको गटकना है आधी लहसुन, 1 लहसुन
1: जी।
0: उसके बाद आप फ्रेश होने जाइए
1: जी,
0: है ना, पेट आपका बढ़िया साफ होगा
1: जी।
0: सुबह नाश्ते में आपके स्प्राउटेड बीन्स
1: जी,
0: अंकुर दाने
1: जी,
0: विटामिन बी का भंडार है
1: जी,
0: अंकुर दाने आपको रोज खाना है
1: जी।
0: कभी टमाटर खाना है
1: जी,
0: कभी चुकंदर खाना है
1: जी,
0: कभी आपका शलजम कभी खाना है, कभी आपको ककड़ी खाना है
1: जी,
0: ऐसे चीज उसमें चेंज कर लीजिए आप
1: जी।
0: तो ये हाईली फाइबर्स डाइट आपके अंदर के तमाम आमाशय को और आंतों को साफ करेंगे।
1: क्या बात,
0: जितनी क्लीनिंग आपकी होगी उतना ज्यादा शुगर लेवल आपका बैलेंस होगा
1: जी।
0: जो बच्चे की डाइट है
1: जी,
0: वह डाइट मधुमेह की डाइट होना चाहिए
1: जी।
0: बच्चा हर बार बार खाता रहता है
1: जी,
0: तो उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा खाता है
1: जी,
0: बच्चा ठूस कभी नहीं खाता है
1: जी जी,
0: है ना। हम लोग पेट भर के खाते हैं, बच्चा नहीं खाता है
1: जी।
0: तो उसी प्रकार से जो डाइट बच्चे की, वो डाइट आपकी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाइए आप,
1: यानी थोड़ी भूख बाकी रहे,
0: बाकी रहे।
1: क्या बात
0: है ना, इससे क्या होगा कि आपकी ब्लड शुगर लेवल अपने आप नॉर्मल आ जाएगा
1: जी।
0: उसके बाद आप बढ़िया करिए आसन
1: जी,
0: बढ़िया करिए प्राणायाम
1: जी।
0: तो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए और खत्म करने के लिए सूर्य नमस्कार का प्रयोग आप कम से कम 6 बार तो करें।
1: सूर्य नमस्कार,
0: पहले स्लो
1: जी,
0: देन फास्ट
1: जी,
0: फिर स्लो
1: जी।
0: यदि आप 12 बार कर सकें बहुत अच्छी बात है, लेकिन सांसों के साथ में
1: जी।
0: हर आसन में सांसों का गहरा महत्व है
1: जी।
0: जितनी गहरी सांसें लेके आप सूर्य नमस्कार करोगे
1: जी,
0: उतना ज्यादा आपके बॉडी के सिस्टम, आपके बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होंगे।
1: हृदय रोग में भी
0: बिल्कुल बिल्कुल सूर्य नमस्कार बहुत इफेक्टिव है। सूर्य नमस्कार एक प्रकार से मल्टीपल ऑर्गन को बैलेंस करता है
1: जी।
0: जितने हमारे पैनक्रिया है
1: जी,
0: हार्ट है
1: जी,
0: डायफ्राम मसल है
1: जी,
0: किडनी है
1: जी,
0: स्प्लिन है
1: जी,
0: लीवर है, इंटेस्टाइन है, गॉडनेस ग्लैंड हमारी है, हमारे थायराइड है, हमारे लंग है
1: जी,
0: इन सभी को ये इसके हार्मोन्स को बैलेंस करता है
1: जी।
0: जो भी इसमें केमिकल्स पैदा होते हैं उस केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए सूर्य नमस्कार क्रिया बहुत इफेक्टिव है
1: जी।
0: दूसरी बात, हमारे आसन में अर्धमच्छिंद्रासन
1: जी
0: बहुत इफेक्टिव है
1: जी,
0: पश्चिमोत्तनासन
1: जी,
0: भुजंगासन की क्रियाएं बहुत इफेक्टिव है
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: अपान सिद्धि क्रिया, गहरी सांस लेना, गहरी सांस को बाहर निकालकर पेट को अंदर बाहर खींचना
1: जी।
0: जितना पेट को अंदर खींचोगे आपके मल्टीपल ऑर्गन स्ट्रॉन्ग बनते हैं आपके
1: जी,
0: कचरा बाहर आपका निकलता है
1: जी,
0: निफ्रॉन्स आपके क्लीन साफ होते हैं, किडनी आपकी साफ होती है
1: जी,
0: तो किडनी रोग से बचेंगे आप
1: जी।
0: तो ये जाने अनजाने जो एक्सरसाइजेस हम करते हैं
1: जी,
0: देखिए क्या वैक्यूम थेरेपी है पूरी है ये
1: जी।
0: श्वासों का आपकी मस्तिष्क से बहुत गहरा संबंध है
1: जी।
0: यदि जब वैक्यूम आप क्रिएट करते हैं
1: जी,
0: उसी वैक्यूम के द्वारा हम बरसात होती है
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: जब तक चक्रवात
1: जी
0: और एंटी साइक्लोन साइक्लोन नहीं होगा
1: जी,
0: तब तक बरसात नहीं हो पाएगी
1: जी।
0: उसी प्रकार से जितना

0: आप गहरी सांस को लेकर गहरी सांस को बाहर निकाल के पेट को अंदर खींचते हैं
1: जी,
0: तो जो पेट में वैक्यूम तैयार होता है उस वैक्यूम तैयार होने से आपका पेट कचरा बाहर निकलता है पहली बात, और ज्यादा सांस ले पाते तो क्लीनिंग बहुत आपकी फास्ट होती है। उस क्लीनिंग की वजह से पैनक्रिया इंसुलिन फेंकना शुरू कर देती है
1: जी,
0: दबाव पड़ता है
1: जी,
0: लीवर बाइल छोड़ना शुरू कर देता है
1: जी,
0: स्टमक एसिड छोड़ना शुरू कर देता है
1: जी।
0: तो ये जाने अनजाने हमारे अंदर के ऑर्गन अपने हार्मोन्स को छोड़ना शुरू कर देते हैं।
1: अच्छी बात
0: है ना। तो इसलिए आसन की क्रियाएं आपके लिए बहुत इफेक्टिव हैं
1: जी।
0: उसके बाद गहरी प्राणायाम कर लीजिए आप
1: जी।
0: प्राणायाम में चंद्रभस्त्रिका है
1: जी,
0: सूर्यभस्त्रिका प्राणायाम है
1: जी,
0: नाड़ी शोधन की क्रियाएं हैं
1: जी,
0: है ना, कपालभाति की क्रियाएं हैं, उसके बाद आपका भस्त्रिका प्राणायाम है
1: जी,
0: उज्जायी प्राणायाम है
1: जी,
0: बहुत एक सीरीज है
1: जी।
0: यदि एक घंटे आपने अपने आप को दिया
1: जी,
0: तो ना ही आप हृदय रोगी हो पाएंगे
1: जी,
0: ना ही मधुमेह के मरीज हो पाएंगे
1: जी,
0: ना ही रक्तचाप आपको उच्च हो पाएगा
1: जी,
0: निम्न हो पाएगा
1: जी।
0: और उसके बाद जब सारे आसन की क्रियाएं आप कर लें
1: जी,
0: देखिए एक सीरीज बता रहा हूं मैं आपको, सीरीज है
1: जी,
0: योग की
1: जी।
0: कम से कम आपको 30 मिनट आसन करना है।
1: क्या बात।
0: कम से कम आपको 20 मिनट प्राणायाम करना है।
1: क्या बात।
0: प्राणायाम करने के बाद आपको 10 मिनट का ध्यान करना है।
1: 10 मिनट ध्यान करना,
0: ध्यान करिए, और ध्यान में जितना अपने आप वैक्यूम कर सकते हैं आप
1: जी,
0: है ना, थॉट्स आते हैं आने दीजिए, जाते आने दीजिए
1: जी,
0: और ब्रेन को मैसेज कन्वे करिए आप
1: जी।
0: देखिए दुनिया में सबसे जो आपका ओबीडियंट है
1: जी,
0: आज्ञा करेक्ट ब्रेन आपका है
1: जी,
0: आपका ब्रेन हर बात को मानता है
1: जी।
0: हमने दुनिया से दोस्ती की है
1: जी,
0: हमने कभी ब्रेन से दोस्ती नहीं करी है।
1: क्या बात है,
0: है ना। तो पहले योग सिखाता है कि अपने आप से फ्रेंडशिप करिए।
1: क्या बात।
0: अपनी दोस्ती करिए
1: जी,
0: कहो मेरे हृदय तुम्हारे क्या हाल है, हमने कभी नहीं पूछा।
1: जो ध्यान की बात आपने की तिवारी जी, इसमें हमारे श्रोताओं को बताएं इसकी क्या क्रियाविधि होना चाहिए।
0: देखिए शरीर के विश्राम का नाम ध्यान है
1: जी,
0: नहीं शरीर के विश्राम का नाम नींद है
1: जी,
0: शरीर के विश्राम का नाम नींद है
1: जी,
0: और दिमाग के विश्राम का नाम ध्यान है।
1: ध्यान।
0: यदि शरीर विश्राम को चला गया
1: जी,
0: तो यह बिल्कुल आवश्यक नहीं कि दिमाग विश्राम को चला ही जाए।
1: क्या बात है।
0: लेकिन जब जब दिमाग विश्राम को जाता है
1: जी,
0: शरीर को विश्राम को जाना ही पड़ता है
1: जी,
0: इसकी परिभाषा है
1: जी।
0: तो ध्यान का सबसे बड़ा जो केंद्र है हमारी सांस है
1: जी,
0: मस्तिष्क और शरीर के बीच का सेतु हमारी सांस है।
1: क्या बात।
0: यदि आपने मन को सांस पर केंद्रित कर दिया तो धीरे धीरे आपकी सांस अपने आप सूक्ष्म हो जाएगी।
1: क्या बात।
0: माइक्रो हो जाएगी
1: जी,
0: और वह माइक्रो ब्रीथ जो है आपके ब्रेन के तमाम कोशिकाओं को
1: जी
0: चार्ज कर देगी
1: जी। और आसन कौन सी पे रहना चाहिए अगर
0: हाँ, सुनिए ध्यान करने के लिए सबसे बढ़िया पद्मासन।
1: क्या बात।
0: इसको हम कमलासन कहते हैं
1: जी,
0: कमलासन
1: जी,
0: या पद्मासन
1: जी,
0: या सुख आसन
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: ये आप चौकड़ी मार के बैठ जाइए
1: जी,
0: नहीं बनता है कोई बात नहीं है
1: जी,
0: आप चेयर बैठ जाइए, कुर्सी बैठ जाइए आप
1: जी,
0: उसे बैठ कर सकते हैं आप
1: जी।
0: आपकी आंख बंद होना चाहिए, पीठ सीधे होना चाहिए
1: जी,
0: और आंख बंद करने के बाद में सारे आसन करने के बाद जब आप प्राणायाम कर लेते हैं उसके बाद फिर ध्यान में जाइए, तो आपके अंदर डिफरेंट एक ऊर्जा होगी। और उस दौरान शरीर के अंदर जो हलचल हो रही है
1: जी,
0: उस हलचल को आप महसूस करिए, एनर्जी लेवल कहाँ जा रहा है आपका, स्पाइन को देखिए अपने आप को।
1: आपने मधुमेह के बारे में बहुत कुछ बताया, आपने ध्यान के बारे में बताया। जो लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं, ऐसे हमारे श्रोता, उनके लिए कौन कौन सा प्राणायाम आप उचित समझते हैं?
0: हृदय रोग के लिए सबसे बढ़िया है अपान सिद्धि क्रिया।
1: अपान सिद्धि
0: क्रिया। अपान सिद्धि क्रिया
1: जी।
0: आप पीठ के बल लेट जाएं
1: जी,
0: पीठ के बल लेट कर गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें 10 बार
1: जी,
0: और आखिरी में जो पूरी सांस फूंक मारते हुए मुख से बाहर निकाल कर
1: जी
0: पेट की मसल को कस के अंदर खींचे
1: और
0: बाहर छोड़ें, अंदर खींचे बाहर छोड़ें
1: जी,
0: अंदर खींचे बाहर छोड़ें, तो पहली बात जो बढ़ा हुआ पेट हमारा है
1: वो घटे,
0: वो कम होगा
1: जी।
0: जब बढ़ा हुआ पेट कम होगा तो हृदय पे लोड कम आएगा।
1: क्या बात।
0: जब हृदय पे लोड कम आएगा तो हृदय की लाइफ बढ़ जाती है। हृदय रोग का जो प्रमुख कारण है कि यदि सीना आपका छोटा है और पेट आपका बड़ा है, तो जब भी आप सोने जाते हैं तो पेट का भार सीने की तरफ आता है, हृदय की तरफ आता है, तो हृदय काम करने की क्षमता कम हो जाती है
1: जी।
0: और यदि आपका पेट कम हो जाता है
1: जी,
0: तो पेट कम होने की वजह से हृदय तरीके से काम करवाता है।
1: और प्राणायाम में क्या बताएं?
0: प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम बेस्ट है।
1: नाड़ी शोधन,
0: श्वास को लेना है
1: हाँ,
0: श्वास को रोकना है
1: हाँ,
0: सांस को छोड़ना है।
1: क्या बात।
0: लेफ्ट इन एंड होल्ड राइट आउट, राइट इन एंड होल्ड लेफ्ट आउट, है ना। इसकी 4 16 8 5 20 10 यानी 4 सेकंड सांस को लेना है
1: हाँ,
0: 16 सेकंड सांस को रोकना है, 8 सेकंड सांस को छोड़ना है
1: जी।
0: लेफ्ट एंड

0: जी,
1: होल्ड राइट आउट
0: जी,
1: राइट इन होल्ड लेफ्ट आउट
0: जी,
1: इस क्रिया को आप रोज 10 बार करिए
0: जी,
1: स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए
0: जी।
1: हृदय रोग से बचने के लिए बहुत बढ़िया क्रिया है ये
0: जी। तिवारी जी, समय की सीमा देखते हुए फिलहाल तो हम अपनी बातचीत को यहीं विराम देना चाहेंगे। आपने आज यहाँ पर आके मधुमेह और हृदय रोग से संबंधित दिनचर्या कैसी हो, किस तरीके की एक्सरसाइज और साथ में प्राणायाम इत्यादि किया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा राहत और बचाव भी हो सकता है, विस्तार से आपने हमारे श्रोताओं को बताया। फिर कभी मौका मिला तो किसी और विषय पे आपसे बातचीत करेंगे
1: जी।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: बहनों, अभी आपने ये भेंट वार्ता सुनी। विषय था मधुमेह, हृदय रोग और योग। विषय विशेषज्ञ थे योगाचार्य अवनीश तिवारी और इनसे बातचीत की थी डॉक्टर बैजनाथ गौतम ने। और बहनों, अब हम फिर से वापस आते हैं अपनी बातचीत पर और अब हम बात करेंगे अपने देश के युवा वर्ग की और उनके लिए एक ऐसी योजना की जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। और यह योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे 2015 में भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत युवा वर्ग को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और आतिथ्य, कृषि, निर्माण कार्य, ऐसे कई क्षेत्र शामिल हैं। प्रशिक्षण के सफल समापन पर इन युवाओं को प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सुविधा होती है। इस योजना का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण प्रदान करना ही नहीं, बल्कि युवाओं को उनकी क्षमता और उनकी रुचि के अनुसार अवसर उपलब्ध कराना भी है। तो बहनों, अगर आपके आसपास, आपके परिवार में, आपकी पहचान में ऐसे युवा हैं जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं या फिर रोजगार की तलाश में हैं, तो उन्हें आप इस योजना के विषय में ज़रूर बताएं। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से वे न केवल नौकरी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपना खुद का उद्यम भी आरंभ कर सकते हैं। ये तो निश्चित है बहनों कि जब युवा वर्ग कुशल और आत्मनिर्भर बनेगा तभी देश की प्रगति को नई दिशा मिलेगी। आज जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा युवा इस योजना का लाभ उठाएं, अपने कौशल को निखारें और देश की प्रगति में, राष्ट्र के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। बरखा की बूंदे गर्मी की तपिश कम करने को आतुर हैं, तो चलें हम भी प्रसन्न मन से स्वागत करें बरखा की बूंदों का। प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। बाकी बातें आपसे होंगी अगले कार्यक्रम में। आज बस इतना ही। अनुमति दीजिए सुधा मिश्रा को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, ये आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में

0: थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक।
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
0: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
1: आपके साथ
0: आकाशवाणी।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

जब तक इस देश का राजकाज अपनी भाषा में नहीं चलेगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि देश में स्वराज्य है। मुरारजी देसाई।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजा राम विश्वकर्मा और साथियों द्वारा गाए लोकगीत, और ये कार्यक्रम है आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति। तो लीजिए आपको सुनवाते हैं पहला लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अब सुन रहे थे राजा राम विश्वकर्मा और साथियों द्वारा गाए लोकगीत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत का, जहां आप सुनेंगे नंद कुमार जैन द्वारा गाए भजन और गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नंद कुमार जैन द्वारा गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मोहम्मद इरफान की आवाज़ में फिल्म विलन से।

मिथुन का संगीत उन्हीं के लिखे बोल मोहम्मद इरफान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म विलन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है नंदिनी श्रीकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है क्वीन।

0: अमित त्रिवेदी का संगीत अन्विता दत्त के लिखे बोल नन्नी श्रीकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म क्वीन से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संविधान हत्या दिवस के अवसर पर कहा कि ये दिन आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों के प्रति सदैव समर्पित रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आज हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास के सबसे काले दौर में से एक यानी आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती से रक्षा की। श्री मोदी ने कहा,
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला इलाके में कल एक निर्माणाधीन गोदाम का हिस्सा अचानक ढह गया था जिसमें करीब 9 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल से प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 33.92 लाख से अधिक लाभार्थियों को बड़ी आर्थिक सौगात दी। उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 203.56 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य के बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रितों को समय पर आर्थिक संबल प्रदान करना है। श्री यादव ने कहा कि सरकार की इस पारदर्शी डिजिटल हस्तांतरण प्रक्रिया से हितग्राहियों को बिना किसी परेशानी के राशि मिल रही है जिससे उनके जीवन में खुशहाली और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो रही है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले 24 घंटों में सीधी और दतिया में सर्वाधिक 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया जबकि पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री रहा। छिंदवाड़ा के चांद में 75.2 मिलीमीटर भारी बारिश हुई है। वहीं जबलपुर में 56 और सीहोर में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चली। मौसम विभाग ने सीहोर और जबलपुर में भारी बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झंझावात और वज्रपात बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर सहित

प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है, जबकि सीधी जिले में कुछ स्थानों पर लू का भी प्रभाव रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में संचालित शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग सेंटर्स और छात्रावासों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में साइबर अपराधों से बचाव को लेकर जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व में एक माह के भीतर 8 बाघों की मौत के मामले को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। आगर मालवा में कल आयोजित हुए कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक ने एक साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगा। धार जिले में खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान किसानों को समय पर पर्याप्त रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर ने आकस्मिक निरीक्षण किया। डिंडौरी जिले में वर्ष 2026 के खरीफ मौसम में सामान्य से कम वर्षा और सूखे जैसी स्थितियों की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को समय रहते आवश्यक कृषि उपाय अपनाने की सलाह दी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मोंटेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ीं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियाँ आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्त गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा

0: के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
1: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
2: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस।
3: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
2: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
4: The global south should be enabled.
5: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जैकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जाँच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री

0: मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशंस को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा।

0: मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जहां हम आपके भेजे पत्रों को पढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं आप ही की पसंद के गीत। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पहला गीत हम कौन सा सुनने वाले हैं और उसके लिए जो हमें फरमाइश मिली है वो कहां से प्राप्त हुई है। तो उदित नारायण की आवाज़ में, साथ ही कविता कृष्णमूर्ति। हम गीत सुनेंगे फिल्म हद कर दिया आपने से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है नेपाल पैलेस सागर से, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की तरफ से, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिक पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम देवाल से शंकरलाल गंगराडे, वनीता गंगराडे, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराडे, ग्राम छेंगा और देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, जवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे की तरफ से। तो लीजिए आप सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत।

पहाड़ी बर्मन का संगीत मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे बोल किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से। कार्यक्रम में अब सुनते हैं अगला गीत जो है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और इसे हमने लिया है फिल्म कन्यादान से। इस गीत की फरमाइश हमें मिली है गयाजीपुर मंडला से वीरेंद्र कुमार पंजाबी और राधे श्याम चावला की ओर से। इसके अलावा यादव मोहल्ला सनावन मध्य प्रदेश से लिखा है दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जीतेंद्र धर्मेंद्र मालाकार की तरफ से। प्रियंका पंचौलिया, संजय पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचौलिया ने हमें लिखा है घंटाघर चौक खंडवा से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है आपकी पसंद का ये गीत फिल्म कन्यादान से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

शंकर जयकिशन का संगीत, नीरज के लिखे बोल, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म कन्यादान से। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आपकी फरमाइश का, और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है अगले गीत को सुनने का, जो हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पाकीज़ा से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की तरफ से। गोला बाजार बक्सर से हमें लिखा है श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ से, जो है पंजाब में, हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक की ओर से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है अगला गीत फिल्म पाकीज़ा से, लता मंगेशकर की आवाज़ में।

गुलाम मोहम्मद का संगीत कैफ़ी आज़मी के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप गीत सुन रहे थे फिल्म पाकीज़ा से। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का और आपकी फरमाइश पर ही अगला गीत आपको सुनवाएंगे कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है ताल और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की ओर से। कवर कॉलोनी बड़वाह से हमें लिखा है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में फिल्म ताल से।

0: ए आर रहमान का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म ताल से, और इसी गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमारा पता नोट कर लें ताकि आप अपने पत्र भेजते रहें। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश, पिन कोड है 462002। नमस्कार, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान दिवस संविधान हत्या दिवस के अवसर पर कहा कि यह दिन आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल से प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 33.92 लाख से अधिक लाभार्थियों को बड़ी आर्थिक सौगात दी है। उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 203.56 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक जमा किए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निशकजन के लिए आग, हीट वेव और आकाशीय बिजली से बचाव के संबंध में ब्रेल लिपि में प्रकाशित पुस्तक का आज लोकार्पण किया। और राज्य में मानसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर कर लेगा। मौसम विभाग ने आज राज्य के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुने युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। शाम 6:00 सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य मैनचेस्टर में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाया जाएगा आज शाम 6:30 से। इसे हम खेल की समाप्ति तक अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान DTH के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है राजा राम विश्वकर्मा और साथियों द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, ओटीटी वेब्स और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोलकाता में गोदाम की छत गिरने से हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की विकसित भारत @2047 की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रदेश के युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब हमारे युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की है।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रश्मि मिश्रा
1: और मैं सनाया नायक।
0: हम आप सभी का युवाओं को ऊर्जावान बनाने वाले हमारे खास कार्यक्रम युववाणी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि कैसे ई वेस्ट दिन प्रतिदिन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है और हम इससे कैसे उचित तरह से निपट सकते हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, साथ ही आज हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डेप्यूटी एडवोकेट जनरल अभिजीत अवस्थी के साथ एक भेंट वार्ता से जानेंगे युवाओं के साथ हो रहे अपराध और उनसे संबंधित कानून के बारे में।
1: साथ ही मैं जानेंगे कि आपके और हमारे यानी युवाओं के समाज के प्रति क्या दायित्व है।
0: और हाँ, हमारे पास आपके लिए सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न भी हैं। तो चलिए, आज का हमारा संगीतमय सफर शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में पाए जाने वाले ब्लैक होल का क्या नाम है।
1: और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए गए वे कौन व्यक्ति थे जिन्हें यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया था।
0: दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। इसी के साथ आइए शामिल करते हैं आज का पहला गीत, जिसे लिया गया है फिल्म धड़क 2 से। गाया है दर्शन रावल, जोनिता गांधी और रोचक कोहली ने।

0: दोस्तों, आज के दौर का एक महत्वपूर्ण एवं चिंताजनक पहलू है टेक अपग्रेड्स के प्रति हमारी अनियंत्रित ऑब्सेशन। फिर चाहे वह हर आईफोन का नया मॉडल हो या फिर अच्छे खासे वायर्ड ईयरफोन्स की जगह पहले नेक बैंड और फिर ट्रेंडी ईयरपॉड्स लेना, अच्छी तरह काम कर रहे लैपटॉप को उसके स्लीकर वर्जन से रिप्लेस करने की चाहत हमें एक अंतहीन चक्र में फंसा देती है और नतीजा हमें पता भी नहीं चलता और हम ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का एक विशाल पहाड़ पैदा कर चुके होते हैं।
1: दोस्तों, ई वेस्ट का मतलब है वह सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनका उपयोगी जीवन खत्म हो चुका है। इसमें पुराने फोन्स और टूटे कंप्यूटर्स के पार्ट्स से लेकर हमारे इस्तेमाल की जाने वाली बैटरीज और पुराने हो चुके घरेलू उपकरण, सब कुछ शामिल है। हर साल बाजार में नए मॉडल आ जाते हैं, इसलिए पुराने उपकरणों को जल्द ही बेकार मान लिया जाता है और अक्सर वे लैंडफिल्स में चले जाते हैं।
0: दोस्तों, ई वेस्ट की समस्या इसकी मात्रा से कहीं और बड़ी है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लेड, मर्क्यूरी और कैडमियम जैसे खतरनाक पदार्थ होते हैं। जब इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अनुचित तरह से निपटान किया जाता है तो यह पदार्थ मिट्टी और ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं, जिससे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य दोनों के लिए ही गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। ई वेस्ट को जलाने से जहरीला धुआं निकलता है और इससे रेस्पिरेटरी समस्याएं भी पैदा होती हैं।
1: दोस्तों, ई वेस्ट पर्यावरणीय समस्या पैदा कर सकता है, परंतु इसमें मौजूद कीमती धातुओं का पुनः उपयोग एक आर्थिक अवसर भी प्रदान कर सकता है, इसलिए ई वेस्ट का सही मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
0: इसी के साथ आइए सुनते हैं फिल्म ऊंचाई से यह गीत, जिसे गाया है अमित त्रिवेदी ने।

0: आइए दोस्तों, जानते हैं युवाओं के साथ होने वाले अपराध और उनसे संबंधित कानून के बारे में इस भेंट वार्ता द्वारा।
1: विशेषज्ञ हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डेप्यूटी एडवोकेट जनरल अभिजीत अवस्थी। इनसे बातचीत की है नीला बाजपेयी ने।
2: श्रोताओं, समय समय पर हम अपनी भेंट वार्ताओं के माध्यम से आपको जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं, और ऐसे ही एक नई जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका विषय है युवाओं में अपराध और उनसे संबंधित कानून। और इस विषय पर आज विस्तार से बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री अभिजीत अवस्थी जी को, जो कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में उप महाधिवक्ता डिप्टी एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्त हैं। अवस्थी जी, आपका हम अपने इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ आकर आप लोगों के साथ मैं अपने विचार साझा कर सकूंगा, इसके इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। अवस्थी जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जैसे कि किशोर न्याय अधिनियम की अगर हम बात करें, तो जेजे एक्ट 2015 के तहत 16 से 18 वर्ष के किशोरों पर जघन्य अपराधों के लिए वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान है। आपके विचार से यह बदलाव कितना प्रभावी रहा है और क्या इससे अपराधों में कमी आई है?
3: देखिए, यह प्रावधान निर्भया कांड के बाद जनभावना और गंभीर अपराधों को की रोकथाम की दृष्टि से लाया गया था
2: जी।
3: किसी भी इस तरह के प्रावधानों का जो जो जो पर्पज होता है, जो कारण होता है, वो रहता है कि लोगों के अंदर एक डर लाना कि अगर वह इस तरीके के अपराधों में संलिप्त होंगे
2: जी,
3: तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी
2: जी।
3: जहां तक यह इसका कितना प्रभाव रहा है, इसको देखने के लिए हमें एक्चुअली केस टू केस बेसिस पे मूल्यांकन करना होगा
2: जी।
3: परंतु ये जरूर हुआ है कि लोगों के अंदर जो है ज्यादा इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध होने के कारण, और एक चूंकि ये पूरा प्रकरण ही जनभावना के आधार पे हुआ था जो बदलाव था
2: जी,
3: इस कारण से लोगों के अंदर अब ये जागरूकता आ गई है कि अगर वो इस तरीके के किसी कार्य में संलिप्त होंगे तो उनके विरुद्ध जो है वो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी
2: जी जी। अब अवस्थी जी, अगर हम बात करें भारतीय न्यायिक संहिता की, तो भारतीय न्यायिक संहिता में पहली बार छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा, जिसे हम कम्युनिटी सर्विस भी बोलते हैं, का विकल्प दिया गया है। तो युवाओं को अपराधी बनने से रोकने में यह कदम कितना मददगार साबित हो रहा है आपकी नज़र में?
3: यह एक प्रगतिशील और मेरे हिसाब से स्वागत योग्य कदम है
2: जी।
3: छोटे अपराधों में जो पहली बार युवा जिनको जेल जाना पड़ता है
2: जी,
3: उन्हें समाज से जोड़े रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन्हें जेल में हार्डकोर अपराधियों के संपर्क में आने से बचाएं
2: जी।
3: और इससे होगा क्या कि जो उनमें सुधार की संभावनाएं हैं वो बढ़ेंगी
2: जी,
3: और इसके साथ साथ जो एक अपराधी का स्थायी ठप्पा लग जाता है वो भी नहीं होगा। परंतु ये आवश्यक है कि उनके ऊपर लगातार निगरानी रखना भी आवश्यक रहेगी, बट मेरे हिसाब से ये एक बड़ा स्वागत योग्य कदम है
2: जी। युवाओं से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि आजकल देखा जाता है कि युवाओं में बिना मेहनत किए जल्दी अमीर बनने की चाहत रहती है, जैसे हम एक तरीके से फास्ट मनी कल्चर बोलते हैं, ये बहुत बढ़ गई है। तो ये मानसिकता उन्हें साइबर फ्रॉड या संगठित अपराधों की तरफ कैसे धकेल रही है?
3: देखिए, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं लगातार जो चकाचौंध है, और मोस्टली सोशल मीडिया पे लोग जो उनके जो मूल रूप से वो हैं वो ना दर्शाते हुए वो जो लोगों में एक ऐसा भावना, एक ऐसी इम्प्रेशन लाना चाहते हैं कि वो सब कुछ अचीव कर चुके हैं या वो बहुत फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं। इसके कारण ये होता है कि जो युवा जो दूसरे उनके साथ वाले हैं उनके ऊपर एक सफलता का दबाव सा महसूस करते हैं, इस कारण से वो लगातार इस तरीके के अपराधों में संलिप्त हो जाते हैं
2: जी।
3: अब इसमें इसका जो आंसर है वो तो सिंप्लिसिटर यही रहेगा कि उन्हें ऐसे स्कीमों से बचना चाहिए, साथ में उनको ये जानना चाहिए कि उनको स्वयं अपना किस तरीके से वो अपनी एजुकेशन शिक्षा पूरी करके
2: जी
3: किस तरीके से वो प्रोफेशनल कोर्सेज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और अपनी जो ये जो उनकी ये कहना चाहिए स्किल है
2: जी,
3: उसका उपयोग कर सकते हैं अच्छे कार्य।

0: के लिए।
1: जी। अवश्य जी, अगर हम बात करें पीयर प्रेशर या दोस्तों का दबाव और पारिवारिक माहौल किसी युवा के अपराधी बनने में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, यदि परिवार में संवाद की कमी है तो इसके क्या परिणाम होते हैं?
0: देखिए, मेरे हिसाब से तो इनकी भूमिका निर्णायक है।
1: जी
0: किशोर अवस्था में चूंकि व्यक्ति जो रहता है वो लगातार अपनी पहचान बनाना चाहता है,
1: जी
0: वो अपने साथ वालों में अपनी स्वीकृति चाहता है, वो ये चाहता है कि भाई लोग उसे सफल माने। तो इसके चलते जो है वो कई बार ऐसा हुआ है कि आप गलत संगत की ओर ले जाते हैं, चले जाते हैं। और अगर परिवार में संवाद की कमी होती है तो फिर लोग बाहर जो गलत लोगों के संगत में आके समस्याओं में फंस जाते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि भाई संवाद परिवार में लगातार होता रहे, उनको इस चीज़ के बारे में अवगत कराते रहना चाहिए कि शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है।
1: जी
0: और जब तक शिक्षा पूरी नहीं होती है, आप इस तरह के किसी भी अगर आप कृत्य में लगते हैं तो आपके लिए आने वाले समय में डिफिकल्टी हो सकती है।
1: जी अवश्य जी, आजकल हम देखें तो सोशल मीडिया या ओटीटी का बहुत चलन है, तो सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाने वाली हिंसा या अश्लीलता युवाओं के व्यवहार को किस हद तक आक्रामक बना रही है? क्या इस पर किसी तरीके कानूनी सेंसरशिप की आवश्यकता है क्या?
0: देखिए, लगातार हिंसक या आपत्तिजनक सामग्री के संपर्क में रहने से संवेदनहीनता तो बढ़ती है,
1: जी
0: इसको हम नकार नहीं सकते, और यह चिंता भी वास्तविक है इस कारण से। परंतु मेरे मत में पूर्ण कानूनी सेंसरशिप उसका जवाब नहीं है,
1: जी
0: बल्कि लोगों के अंदर इस चीज़ के बारे में साक्षरता लाना आवश्यक है। उसको एक शिक्षा का हिस्सा बनाना चाहिए कि जहाँ पर डिजिटल मीडिया का उपयोग या फिर ओटीटी का उपयोग किस अनुरूप होना चाहिए, इसकी जागरूकता लानी चाहिए। क्योंकि सेंसरशिप हर चीज़ को रोक देना उसका जवाब नहीं होता,
1: जी
0: बल्कि यह है कि उसके बारे में अवगत कराना ज़्यादा मेरे हिसाब से कारगर होगा।
1: जी जी जी आजकल देखा जाता है कि साइबर क्राइम में पकड़े जाने वाले अधिकांश आरोपी जो हैं वो 18 से 25 वर्ष के युवा होते हैं। इस तकनीकी युग में डिजिटल अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस बल को कितना अपग्रेड करने की जरूरत है? आपके इस पर क्या विचार है?
0: देखिए, जब अधिकांश आरोपी तकनीक में दक्ष होते हैं तो उनके लिए जो पारंपरिक पुलिसिंग के जो तरीके हैं वो नाकाफी हो जाते हैं।
1: जी
0: अतः ये तो ऑफ कोर्स आवश्यक है कि एक हमारे यहाँ ऑलरेडी एक समर्पित साइबर सेल का गठन हो चुका है, थाने हैं, और आप वहाँ पर जो है वो आधुनिक फॉरेंसिक उपकरण भी उपलब्ध हैं।
1: जी
0: और इसमें जो लगातार जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनकी तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है, और साथ में उनको लगातार जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ उनकी साझेदारी की जा रही है। और अब इससे ऑफकोर्स ये ज़रूर होता है कि जो पुलिस बल है उसको निरंतर अपग्रेड करना अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता हो गई है।
1: जी
0: तो मेरी नज़र में जो अभी हमने जो स्टेप्स लिए हैं वो काफ़ी हैं,
1: जी
0: और लगातार ऐसे क्राइम्स से उनको रोकने के लिए हमने जागरूकता के अभियान भी लाए गए हैं, और साथ में हमारे पास तकनीकें उपलब्ध हैं जिससे ऐसे अपराधियों को जल्दी और तुरंत पकड़ा जा सकता है।
1: जी अगर हम बात करें सोशल मीडिया की दोबारा, तो सोशल मीडिया पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और युवाओं द्वारा ऑनलाइन की जाने वाली अभद्र टिप्पणियां, जिसे हम हेट स्पीच या स्टॉकिंग बोलते हैं, के बीच की कानूनी सीमा बहुत धुंधली है। कानून की नज़र में सीमा को युवाओं के लिए कैसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है?
0: देखिए, ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है बनाम ऑनलाइन अभद्रता की सीमा, ये जो दोनों चीज़ें हैं इसके लिए ये कहना आवश्यक होगा कि भाई हमें इरादा और नुकसान, इन दो शब्दों का बहुत ध्यान रखना होगा। कोई भी स्वस्थ आलोचना या असहमति स्वतंत्रता है,
1: जी।
0: पर किसी व्यक्ति को निशाना बनाना, धमकाना या उनको स्टॉक करना वो गलत है। युवाओं के लिए इसे सरल भाषा में समझाया जाना चाहिए कि तुम्हारी आज़ादी वहीं समाप्त होती है जहाँ से दूसरे का सम्मान या सुरक्षा खतरे में पड़ता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल
0: स्कूल कॉलेज स्तर पर डिजिटल आचार संहिता की शिक्षा मेरे मत में इस धुंधली रेखा को स्पष्ट करने में सबसे प्रभावी होगी।
1: जी
0: अतः मेरी मेरी नज़र में ये आवश्यक है कि हम लगातार लोगों में ये जागरूकता, बच्चों में ये जागरूकता लेकर आएं
1: जी
0: कि कहाँ तक उनकी जो आज़ादी है
1: जी
0: उन्हें वो आज़ादी उपलब्ध है, और किस किस लाइन को क्रॉस करने, किस लक्ष्मण रेखा को पार करने के बाद जो है वो अपराध की श्रेणी में आ
1: जी
0: जाएगा।
1: चलते चलते अवस्थी जी, आप हमारे सुनने वालों को आकाशवाणी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा संदेश मैं यही

0: यही कहना चाहूंगा युवाओं के लिए कि शिक्षा का कोई ऑल्टरनेट नहीं है
1: जी,
0: शिक्षा पूर्ण करना और लगातार यह संयम बरतना कि वो गलत संगत में ना आए, आसान पैसे के आसान पैसा कमा पाने की जो एक चाहत जो डेवलप हो रही है उसको कम करें
1: जी,
0: अपनी जो बेसिक शिक्षा है उसको पूर्ण करने के उपरांत ही
1: जी
0: वो, और लगातार ये आवश्यक है कि लगातार परिवार से अपने सारे जो परेशानियां हैं उसके बारे में लगातार वो डिस्कस करते रहें, उनसे आपस में चर्चा करते रहें
1: जी।
0: आई थिंक अगर पारिवारिक रूप से वो जुड़े रहेंगे, अच्छी संगत में रहेंगे और अपनी शिक्षा पूर्ण करेंगे
1: जी,
0: तो मुझे नहीं लगता कि ये जो अभी जो चुनौतियां हमने जिस पे चर्चा करी
1: जी,
0: उन चुनौतियों का बहुत फर्क पड़ेगा।
1: जी जी अभिजीत अवस्थी जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने युवाओं में अपराध और उनसे संबंधित कानून इस विषय पर विस्तार से अपनी बात रखी। हम आशा करते हैं कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो इस जानकारी से अवश्य लाभान्वित होंगे। आपको आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ आपने बुलाया, थैंक यू।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डेप्यूटी एडवोकेट जनरल अभिजीत अवस्थी द्वारा। हमने इससे सीखा कि युवाओं के प्रति क्या अपराध हो रहे हैं और उनसे संबंधित क्या कानून है। इसी के साथ आइए शामिल करते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म हिचकी से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने।

0: रश्मि, क्या तुमने सोचा है कि जब भी देश के भविष्य की बात होती है, तो सबसे पहले युवाओं का ही नाम क्यों लिया जाता है?
1: बिल्कुल सोचा है सनाया, क्योंकि युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उनमें ऊर्जा है, नए विचार हैं, बदलाव लाने का साहस है और समाज को नई दिशा देने की क्षमता भी है।
0: सही कहा, लेकिन केवल

0: युवा होना ही पर्याप्त नहीं है। एक सच्चे युवा की पहचान उसके सामाजिक दायित्वों से होती है। यदि हम केवल अपनी पढ़ाई, नौकरी और करियर तक ही सीमित रह जाएं, तो हाँ, हम सफल व्यक्ति तो जरूर बन सकते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक नहीं।
1: इसी के साथ आइए सुनते हैं आज का अगला गीत। इसे लिया गया है फिल्म अंग्रेजी मीडियम से और गाया है विशाल ददलानी और सचिन जिगर ने।

0: दोस्तों अब वक्त है आज के दो प्रश्नों के उत्तर जानने का। आज का पहला प्रश्न था, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में पाए जाने वाले ब्लैक होल का क्या नाम है? इसका उत्तर है सैजिटेरियस ए।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था, वर्ष 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए गए वे कौन व्यक्ति थे जिन्हें यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया था? कर्पूरी ठाकुर।
0: इसी के साथ दोस्तों आज हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर पहुंच चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपसे एक नए कार्यक्रम में नई चर्चाओं के साथ। तब तक दयालु बने,
1: जिज्ञासु बने
0: और दुनिया में अपनी उज्जवल रोशनी बिखेरते रहें। नमस्कार।

0: ये था युवा श्रोताओं का दैनिक प्रसारण युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की थी।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे। वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। नमस्कार, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हुई है और धूप भी इनके बीच लुका छिपी का खेल खेल रही है। कभी बूंदों की टिप टिप है तो कभी खिलखिला कर चहकती हुई चमकीली सी धूप है। बादलों और किरणों का लुका छिपी का ये जो खेल है वो धरती पर धूपछाई उजाला बिखेर देता है। ठीक वैसे ही जैसे जीवन धूप छाओ के साथ हर इंसान की एक अलग कहानी लिखता है। तो आज फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लुका छिपी का यही रंग खास आपके लिए। वो कौन है जो छिप गया है ख्यालों में आकर, वो कौन है जो महका गया है सपनों की दुनिया को।

0: एक चेहरा एक एहसास गुलाबी सा, एक महक एक स्वर मीठा सा छूता है जिंदगी को और इस लुका छिपी में दिल गुनगुनाता है अपने एहसास। दिल कभी रुकता है तो कभी चलता है, कभी सुनता कभी कहता तो कभी खामोशी में गुम हो जाता है।
1: कुछ

खूबसूरत एहसासों की लुका छिपी जिंदगी को कितने रंग दे जाती है, कितने गीत फिजाओं में तैरने लगते हैं और दिल चल पड़ता है उनके पीछे गाते हुए, गुनगुनाते हुए।

श्रोताओं, जीवन लुका छिपी का ही खेल है। इसी लुका छिपी में कभी इंतजार है, बेकरारी है, प्यार है, और कभी खामोशी, उदासी और आंसू। यूं बादल भी हैं, पानी भी है, रोशनी भी है, और इन्हीं रंगों से जिंदगी मुकम्मल है।

सांसों की ये लुका छुपी बेहद खूबसूरत है, इसी से जिंदगी के अलग अलग रंग हैं। कभी एक अपनापन बाहों में भर लेता है, तो कभी बेगानी सी निठुराई मीठे उलाहनों की वजह।

दबे पांव ये कौन आता है मन आंगन में, झरता है हर सिंगार, खिलते हैं ख्वाब नए। तो श्रोताओं, ये लुका छिपी एहसासों की बनी रहे आपकी जिंदगी में, जिंदगी खिलती रहे, महकती रहे, गुनगुनाती रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ अब फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों बाद।

चूचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।

0: खुशियां लौट आए।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी

0: रेनी सीजन को हम जरूर एंजॉय करें,
1: गर्मा गर्म पकौड़े खाएं,
0: लॉन्ग ड्राइव पर जाएं,
1: भीगते झूमते नाचें गाएं,
0: लेकिन बारिश के पानी को यूं ही बर्बाद न होने दें,
1: पानी की एक एक बूंद बचाएं।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। मोदी ने नई दिल्ली में अमेजन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोलकाता में गोदाम की छत गिरने से हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत @2047 की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रदेश के युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा

0: म्यानपाट से रुबिना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा, तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी

0: गुरुओं और शिक्षकों की भूमि, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
1: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
0: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
1: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजुभाई बधेका।
0: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजुभाई बधेका जी की, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
1: गिजुभाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजुभाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
0: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम मास्टर जी।
1: प्रणाम। हां तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बीजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
2: जी डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
2: जी
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
3: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
4: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी

0: सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
1: अपनी साहित्य कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जितेश जी, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो जितेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
2: जी।
1: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
2: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
1: जी,
2: लेकिन कुछ खास हैं जिनपे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
1: जी।
2: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
1: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
2: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
1: युगल और सहभागिता पद्धति
2: जी। इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
1: जी,
2: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
2: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ, बताइए।
2: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति
2: जी। इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
2: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी,
2: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
2: जी।
1: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
3: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
3: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार,
0: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।

0: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
3: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
4: आकाशवाणी

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य मैनचेस्टर में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।

0: आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। We now bring you ball-by-ball commentary of the T20 cricket match to be played between India and Bangladesh of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
2: First Ball 20.
3: 25 जून वो तारीख जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से

0: आज है, क्योंकि आज ही 1983 में इंग्लैंड की भूमि पर भारत पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना था। 2026 में उसी इंग्लैंड की भूमि पर हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम T20 विश्व कप जीतने का ख्वाब देख रही है। लेकिन पिछले दिनों इस राह में मिला एक स्पीड बंप, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार। पर कहते हैं, हीरो वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो होता है जो गिरकर फिर खड़ा हो उठता है। आज फिर वही मैनचेस्टर का मैदान है, सामने बांग्लादेश है, और अपनी गलतियों से सीख बाउंस बैक करने की चुनौती है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20, मेरा नाम है दर्पण और मेरे साथ है मुदिता।
1: शुक्रिया दर्पण, हेलो एंड वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल। दर्पण, आपने 1983 के वर्ल्ड कप का जिक्र किया, तो हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स में मौजूद हैं चेतन शर्मा, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, जो नाम हर भारतीय फैन के दिलो दिमाग पर आज भी है, क्योंकि 1987 के वर्ल्ड कप में वो पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने हैट्रिक ली थी। चेतन, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: इसके अलावा हमारे साथ है विजय दहिया, जो फॉर्मर क्रिकेट खिलाड़ी होने के साथ ही अब एक बहुत सक्सेसफुल कोच की भूमिका में है। वेलकम विजय।
3: शुक्रिया।
1: और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शशांक शेखर। शशांक, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
4: थैंक यू सो मच।
0: तो एक्सपर्ट से पूछेंगे कि कैसी होने वाली है भारत के लिए आज चुनौती, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे सीधा मैनचेस्टर, जहां पर टॉस होने जा रहा है।
5: Are in the hunt for one of those top two spots. I've got Trudy Anderson, match referee, alongside the captains. I think Harman, I think you've got the coin. Jolty, your call. It's fallen your way. You've won. What are you going to do today?
6: We wanted to bat first because in this sort of game, we really wanted to put some score in the board.
5: I'm just watching your team warming up, and they are up and about. There seems like a real energy about the group as well because of the two wins. How do you just let the players sort of run with that, or do you want to try and keep them nice and calm?
6: I think this is really important game for us, and I think it's a huge opportunity for all of us to being in the top side. So I think we just wanted to give our everything in this game, and we are so happy that we are in a moment where we are count.
5: You've played this team a lot. That hasn't always gone your way. How do you approach this with a game plan? Is it what's worked for you well so far in this tournament? Are you going to change things up a little bit?
6: I think our batters been in a bad patches, but I guess they will come back in this game, that we hope. But our bowlers been very consistent in the last three games, so we will definitely looking forward for that.
5: Okay, any changes to your side today?
6: No, we are going with the same 11.
5: Okay, all the best for this big clash.
6: Thank you so much.
5: Harman, I'll get you to come in. Bowling first. I just saw you rolling the arm over. Is that what we're going to expect to see?
6: Not really. I'm just warming up myself.
5: Okay. You're going to be bowling first, not here on this pitch. It's a run scoring. It's very, very flat. What's your thoughts on that?
6: Yeah, I think it's a good wicket to bat on. But if you keep yourself in the game and, you know, spend some time on the wicket, it's a really good wicket. But I think for bowling also, if you, you know, spin your fingers, there is something you can, you know, take from this pitch, and hopefully our bowling group come up strong today.
5: A little bit in your favour is that you have played here. You've also played on this pitch against South Africa. What did you learn from that?
6: Yeah, I think that was a very good pitch to bat and ball. And I think, as I mentioned, you know, you just have to read the pitch and react accordingly.
5: Okay. Is it just about the win, or is a little bit of net run rate in there as well?
6: I think first to win, and then let's see how it goes.
5: Okay, let's see how it goes. Thanks a lot. All the best today.
6: Thank you.
5: Bangladesh have won the toss. They're going to be having a bat first.
0: तो टॉस बांग्लादेश ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश T20 क्रिकेट में, वुमेन्स क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, 23 बार आमने सामने हुई है। केवल 3 बार बांग्लादेश को जीत मिली है और तीनों बार चेज करते हुए मिली है, लेकिन यहां पर फैसला पहले बल्लेबाजी करने का किया है। चेतन, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को?
2: देखिये, जैसे अभी तक खबर आ रही है मैनचेस्टर से कि विकेट थोड़ा सा लो एंड स्लो विकेट रहेगा, और जब आपको ये अनुमान रहता है कि लो एंड स्लो रहेगा, तो चेज करना विद स्पिनर्स आपकी टीम के अंदर, तो यकीनन कहीं ना कहीं आपके मन में यह है कि अगर जितना बैटिंग के लिए अभी तक विकेट अच्छा है, उसके बाद थोड़ा डस्टी की संभावना। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया यही साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था और हार का सामना करना पड़ा था, तो वो चीज़ें आप कैलकुलेट करते हैं एज ए टीम। आप वो देखते हैं कि पिछला मैच भारतीय टीम ने कैसा प्रदर्शन किया, क्या उनकी रणनीति थी, उसके अकॉर्डिंग बांग्लादेश ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया कि अगर बाद में स्पिनर्स को कहीं मदद मिलेगी उसका पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट गेम में मैं हर समय कहता हूं विन द टॉस एंड डिसाइड टू बैट। रन ऑन बोर्ड हर समय अच्छा रहता है टीम के लिए।
1: जी,

जितिन बिल्कुल, लेकिन पिछला मैच अगर हम देखें तो वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट भारत ने यही निर्णय लिया था. हम क्योंकि बॉलिंग भारत करने जा रहा है तो पावर प्ले बॉलिंग की अगर हम बात करें हमारी तो बहुत सारे इश्यूज हमें दिखाई दे रहे हैं. लेकिन पिछले मैच को अगर हम खास करके देखें तो पावर प्ले में बहुत सधी हुई बॉलिंग की थी भारतीय बॉलर्स ने, केवल 25 रन. और आखिरी ओवर तो चरणी का मेडन विकेट,

0: अगर आप देखें जिस तरीके से आप गेंदबाजी का जिक्र कर रहे हैं, एक जो चीज़ जो भारतीय टीम के साथ जानी चाहिए या कंडीशंस के बारे में आप बात करें, तो जब आप अपने मीडियम पेसर्स की तरफ देखते हैं तो शायद उस तरीके का ये वर्ल्ड कप अब तक नहीं रहा है जहाँ गेंदबाजी के बारे में आप बात करने की कोशिश करते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला जिसके बारे में हमने अभी जिक्र भी किया, साउथ अफ्रीका, उसमें अगर आप देखें तो आप बड़े मैचों के हिसाब से जितने रन आपको बोर्ड पर लगाने चाहिए थे वो थे वहाँ पर, वो गेंदबाजों के लिए था मैच जीत के वहाँ से मैच भारतीय टीम को जिताना। तो वो एक चीज़ है जो बहुत अहम रहेगा आपका इस टूर्नामेंट में आपको बनाए रखना या यहाँ से इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर जीत दिलाना।
1: आपने बात की कि अभी तक सीमर्स ने शायद उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया और इसके चलते कुछ बदलाव भी हमें टीम में देखने को मिल रहे हैं। रेणुका सिंह ठाकुर जो कि सबसे अनुभवी सीमर है उनको प्रथम एकादश में आज शामिल कर दिया गया है। साथ के साथ राधा यादव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। शशांक, लास्ट टाइम इंडिया वेंट टू बांग्लादेश दे डिड अ क्लीन स्वीप, राधा यादव वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज, शी पिक्ड अप 10 विकेट्स, दोज हैप्पी मेमोरीज मस्ट हेल्प हर अगेंस्ट बांग्लादेश।
2: Hopefully so. This is a match which India are supposed to win, and I don't see any problems for India. I think it's going to be the spin department which will again do the needful for India. It's a very interesting stat that I would like to share. In the three matches that India have played, they have taken 24 wickets. 22 of them have been taken by the spinners.
1: Right.
2: Nandini Sharma has taken 2 wickets.
1: Right.
2: Kranti Gaur and Arundhati have not taken a single wicket. You know, so Manchester, this pitch, even Australia, for Australia, Sophie Molyneux, Wareham and all, their spinners took wickets against South Africa. So this is going to be a spinner's track. And as far as Radha is concerned, she's also a good left arm spinner. Mm-hmm. She's a very good fielder and a competent batsman. Mm-hmm. But shouldn't be a problem for India today. The problem will be against Australia in the last game of the group stage.
1: Vijay, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?
0: हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप देखें किस तरीके से भारतीय टीम की थिंकिंग रही है, राधा की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी खिलाड़ी जो पिछले कुछ समय में हर एक लिहाज से, अगर आप उनकी फिटनेस देखें, उनकी फिटनेस देखें, मैं मानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट फील्डर हैं इस समय वो वुमेन क्रिकेट में, अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट की बात करते हैं, उनका पहला मैच है और आपकी सोच कहीं ना कहीं ये चल रही थी कि जो हम स्पिनर्स खिला रहे हैं वो इनफ है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको ये लग रहा है कि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी और हमें चाहिए। शायद
1: श्रियंका पाटिल की इंजरी उसमें एक बड़ा
0: नहीं, बहुत बड़ा
1: जी,
0: क्योंकि जिस समय पर ये इंजरी उनको हुई है, सिर्फ गेंदबाजी नहीं, जिस नंबर पे वो बैटिंग करती हैं वो नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो एक ऐसी यंगस्टर इस टीम के अंदर रही है पिछले कुछ समय में। अगर आप देखें WPL के अंदर भी, अनफॉर्चुनेटली पिछले सीजन में इंजरी की वजह से पूरा सीजन बाहर हो गई थी, यहाँ पर आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, फ्रीक इंजरीज ज़्यादा रही हैं उनको, तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वो एक बड़ा लॉस ज़रूर है। लेकिन इतनी सक्षम है ये भारतीय टीम कि अगर आप किसी भी कंडीशन के बारे में बात करें, इस फॉर्मेट के बारे में बात करें, जो दो बचे हुए मैचों के बारे में बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए।
3: जी, सक्षम है भारतीय टीम जैसा विजय ने कहा, और दर्पण क्यों ना कुछ श्रोताओं को भी हम शामिल कर लें। तो अगर आपके पास हमारे एक्सपर्ट्स के लिए कुछ सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स हैं 011-234-21083 और 011-234-21085। चेतन, रेणुका सिंह ठाकुर को शामिल किया गया है आज प्लेइंग 11 में, सबसे अनुभवी बॉलर्स में है वो भारत की, and she has a good record against Australia and has the ability to swing the ball early and strike against their top order. kya ye sabse bada karan bana hai unko playing 11 mein shamil karne ka?
4: dekhiye, jitna maine abhi tak pura dekha, ek mahina pehle bhartiya team wahan pahunchi ji, aapke middle order mein abhi tak consistency nahi hai, aap reshuffle bahut zyada kar rahe hain, aur hamara ek spinner ki agar hum baat kare jo abhi aap baat kare Shreyanka Patil, वो इंजर्ड हुई, वहाँ से एक झटका लगा और अभी तक आप अपने तेज़ गेंदबाजों के साथ सेटल नहीं हो पाए। देखिए, वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप जितना शफल करते रहेंगे, जितना टीम में बदलाव करते रहेंगे, तो एक चीज़ है जो कंसिस्टेंसी हम कहते हैं ना क्रिकेट के अंदर, एक भरोसा, वो प्लेयर्स को आप नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके सामने प्रॉब्लम्स होंगी। तो रेणुका को मौका मिला तो जितना रेणुका को हमने गेंदबाजी करते देखा, इनको तो आपको शुरू में मौके दे देने चाहिए थे
1: जी।
4: देखिए, इस कंडीशंस के अंदर आप वो तेज गेंदबाज को लेकर आते हैं जिसके पास एबिलिटी है स्विंग कराने की। देखिए, इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है, आप 120 पे गेंदबाजी कर रहे हैं ना, अगर आप में एबिलिटी

0: स्विंग कराने की, आप किसी को भी आउट कर देंगे, बड़े से बड़े प्लेयर को आउट कर देंगे, लेकिन आप गति आप जितनी मर्जी कर लीजिए लेकिन स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी आपने कहा कि स्विंग बहुत अच्छा करती है, तो ऑब्वियसली आप इन कंडीशंस में उसी गेंदबाज को खिलाते हैं जिसके हाथ में अच्छा खासा स्विंग है।
1: लेकिन चेतन, इससे जुड़ा एक सवाल है। अभी हम देख रहे हैं जो वेदर फोरकास्ट है, हीट वेव की वार्निंग दी गई है, 31 डिग्री अभी टेम्परेचर है, और हम देख रहे हैं मैदान में धूप खिली हुई है, ऐसे में आपको लगता है कि वो उस तरह का स्विंग प्राप्त होगा?
0: देखिए, उस कंडीशंस में इंग्लैंड 45 डिग्री तो है नहीं, इंडिया जैसी हालत है नहीं, और दोनों ऐसी कंट्रीज हैं जिनको गर्मी की आदत है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल गर्मी है। बेशक इंग्लैंड के अकॉर्डिंग 30 डिग्री बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप में क्षमता है स्विंग कराने की, आप स्विंग करा सकते हैं। ये नहीं कि वहाँ के अकॉर्डिंग गर्मी है, अगर आप तो इंडिया में सारी उम्र क्रिकेट खेले, अगर आप यहाँ स्विंग कराते हैं तो वहाँ तो आपको ऑटोमेटिकली स्विंग कराना चाहिए।
2: फॉर मी द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इफ शी इज बोलिंग रियली वेल इन द नेट्स, हाउ कम शी डिडंट प्ले अर्लियर? सो देयर इज समथिंग, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द स्विंग, इट्स अबाउट समथिंग दैट काइंड ऑफ रिदम, maybe she's not finding her rhythm there. Otherwise, when you went for a tour like this and your most experienced bowler not finding her place in the playing 11 in all the games, there's something going on where the team management feel that she's not in that kind of rhythm, and come this game they feel if they qualify, get into the semi-finals, they'll be needing her, and that's the reason why they're introducing her in this game.
1: But tell you who is always in rhythm, it's our listeners. Mudita ek shrota hamare sath jud chuke hain, aaiye unse baat karte hain.
3: जी, अपना नाम बताएं और आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं? गुड इवनिंग।
2: नमस्कार विपिन जी।
0: नमस्कार।
1: चलिए शशांक, हम चाहेंगे कि आप ये सवाल लें और विपिन जी को इसका जवाब दें।
4: जी, तो जैसा आपने पूछा है विपिन जी, 160-170 का टोटल अगर होता है तो हम चेस कर पाएंगे कि नहीं, तो जहाँ तक मुझे लगता है इतना स्कोर शायद बांग्लादेश नहीं बना पाएगी। ये स्लो विकेट है जहाँ स्पिनर्स बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और हमारी स्पिन अटैक अच्छी है। पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारे स्पिनर्स ने ही संभाला है, तो मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश 160-170 का टारगेट दे पाएगी। अगर 160-170 बना लेती है बांग्लादेश तो उतना आसान नहीं होगा, लेकिन देखते हैं क्या स्कोर बनता है। और जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है, अगर हम आज का मैच जीत भी लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस फॉर्मेट में वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, इस फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया को हराना हमारे लिए मुश्किल है, असंभव तो कुछ भी नहीं है। हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, और साउथ अफ्रीका आज रात में 11 बजे से हॉलैंड के साथ खेल रही है, नेदरलैंड्स के साथ, और लास्ट मैच उनका बांग्लादेश के साथ है। तो ये वो दे आर एक्सपेक्टेड टू बीट बांग्लादेश एंड हॉलैंड। उस केस में अगर हम ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएंगे और हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो स्थिति अभी गंभीर है हमारी टीम की, देखते हैं आगे क्या
1: जी,
4: होता
1: सभी
4: है।
1: सभी समीकरण आपके सामने पेश कर दिए गए हैं विपिन जी, मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल सैटिस्फाई हो गए होंगे आप हमारे इस आंसर से। लेकिन सैटिस्फैक्शन की बात करते हैं विजय, बॉलिंग की हमने बात की, आप मौजूद हैं हमारे पैनल पर, विकेट कीपिंग पर बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ऋचा घोष, पहले मुकाबले में थोड़े से फंबल्स हमें देखने को मिले, उसके बाद लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, उनकी ग्लव वर्क को आप कैसे आंकते हैं?
2: ऋचा घोष, अगर मैं उनकी तरफ देखता हूं तो बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर हैं, और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं अगर आप उनकी तरफ नज़र डालेंगे तो आपको लगता है कि ये एक बनती हुई टीम है। हम अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें और कह रहे हैं कि वो प्रबल दावेदार है खिताब की, तो वो इस वजह से है कि उसका जो न्यूक्लियस है उसके कुछ 7-8 खिलाड़ी हैं वो पिछले कुछ समय से इस फॉर्मेट में लगातार खेलते हुए आए हैं। हम 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते हैं, हमारे यहाँ पर जैसे ही जीतती है वो हर जगह की एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपको कंडीशंस देखनी बहुत ज़रूरी हैं, आप किनके खिलाफ खेल रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये टीम इस फॉर्मेट के लिए अभी भी आपकी एक सेटल टीम नहीं है। आपको मैचेस बल्लेबाज जिताते हैं, आपको टूर्नामेंट गेंदबाज जिताते हैं। आपने बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं किया, पिछले कुछ मैचेस में आपने हमेशा गेंदबाजी में बदलाव किया है। तो आपकी जब बॉलिंग यूनिटी सेट नहीं है और आप ये नहीं कह सकते कि आप खिताब के दावेदार हैं, हम कह जरूर रहे हैं जब भी आप टूर्नामेंट में जाते हैं, लेकिन एक बनती हुई टीम है और धीरे धीरे समय लगता है बनते इस टीम को बनने के लिए। क्वालिफिकेशन का भी जो पिछला सवाल वहाँ पर पूछा था, बांग्लादेश भी तो चार पॉइंट पे है।

0: बिल्कुल,
1: अगर हम हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं तो बांग्लादेश, और सबसे अच्छी चीज मुझे उनकी आज क्या लगी है कि उनकी सोच, क्योंकि आप वही हैं जो आप सोचते हैं, रन ऑन द बोर्ड वो टीम सोचती है कि हम यहां से जीत सकते हैं। उनकी नेगेटिव सोच नहीं थी या डिफेंसिव सोच नहीं थी कि हम इंडिया पहले खेल ले, अगर उनका ठीक दिन नहीं रहा तो हम उनको पकड़ सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी काबिलियत पे खेलते हैं, हम रन बोर्ड पे लगाएंगे और वहां से फिर गेम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ भारतीय टीम के लिए नहीं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बांग्लादेश के लिए भी है।
2: जी बिल्कुल, और जैसा चेतन कह रहे हैं कि बांग्लादेश बिल्कुल डिफेंसिव मूड में नहीं है, टुडेज मैच चेतन विल नॉट बी अ पीस ऑफ केक फॉर इंडिया। कई अच्छे स्पिनर्स भी हैं बांग्लादेश के पास जो आपको पुश करेंगे, खास करके ऑन अ विकेट लाइक ओल्ड ट्रैफर्ड।
3: नहीं बिल्कुल, देखिए पीस ऑफ केक तो क्रिकेट में कुछ नहीं होता, आप जिस मर्जी टीम के, दिस इज इंटरनेशनल, दिस इज वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी आपकी सामने जो टीम है वो कमजोर आप नहीं हांक सकते उनको। देखिए जो विजय अभी बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसको और जोड़ने की कोशिश करूंगा। जब आपके बॉलिंग कोच ये स्टेटमेंट देते हैं ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, तो उसका ये मतलब होता है कि आपका जो बॉलिंग लाइनअप है वो सेटल नहीं है। वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे आके अगर आप ये कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, क्योंकि सबको मालूम है कंडीशंस कैसी है इंग्लैंड में, आप अपना लाइन वन लाइन टू हर समय तैयार रखते हैं गेंदबाजी, और गेंदबाजी एक आपकी ऐसी है जो आपको टूर्नामेंट्स जिताएंगी, जो आपको ट्रॉफीज जिताएंगी, और आप बेशक 200 रन 220 रन कर देंगे, अगर आपकी गेंदबाजी में दम नहीं है तो ऑपोजिशन 220 रन चेस कर लेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप किसी को भी हरा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को आराम से हरा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अपने सेटअप को थोड़ा ठीक कीजिए। मिडल ऑर्डर में इतने शफल की जरूरत नहीं है, जमीमा पीछे जाएगी, तीन नंबर खेलती आई है, आप जमीमा को पीछे नहीं कर सकते। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं विच द इंडियन मैनेजमेंट हैज टू कीप इन ऑर्डर। हमारे लिए बहुत ईजी है यहाँ से बैठकर बोलना, आई डोंट नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, बट वी आर जस्ट होपिंग कि इंडियन टीम डू वेल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई वर्ड नहीं होता क्रिकेट के अंदर, बांग्लादेश के लिए बात करें या इंडिया के बात करें, whoever plays the better cricket definitely win।
0: एक बात बहुत आपने ठीक कही कि कम नहीं आ सकते बांग्लादेश को, क्योंकि भारतीय वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो करने वाले जानते हैं कि 2018 में ये गलती हम कर चुके हैं, एशिया कप के फाइनल में इसी बांग्लादेश की टीम से हमें हार मिली थी। खैर एक बड़ा रोचक विजुअल चेतन अभी हमने देखा, सू रेडफर्न जो कि रिजर्व अंपायर है वो एक बक्सा लेके आई और रेणुका ठाकुर को बोला उन्होंने कि आप गेंद का चयन कीजिए, किस गेंद से आप गेंदबाजी करना चाहेंगी। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या देखता है गेंदबाज जब गेंद का चयन करता है, क्या क्या वो चीजें होती है, क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिस पर वो ध्यान देता है।
2: इस सवाल पर हम आते हैं दर्पण, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अपना परिचय दीजिए और अपना सवाल पूछे। वेलकम बैक वेंकट रेड्डी जी, अपना सवाल पूछे।
1: सर इंडियन टीम बोलिंग के बिना चल सकती है लेकिन ये शो आपकी कॉल के बिना नहीं चल सकता है।
0: जी चेतन मैं चाहूंगा आप दोनों सवाल को कंबाइन करके हमें एक जवाब दें, क्योंकि फास्ट बॉलिंग एक्सपर्ट आप ही हैं।
3: आज रेणुका यादव, रेणुका ठाकुर को मौका मिला है तो वहां से अनुमान लगाया जा सकता है, जो अभी हमारे कॉलर कह रहे थे कि गेंदबाजी में कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा लग रहा है कि वीक है। और जहां तक आपने गेंद का बात की ना, देखिए आप तेज गेंदबाजों के हाथ में वो बॉक्स दे देते हैं, वो अपने आइडिया से कि उनके हाथ का साइज क्या, मतलब मैं अपने जमाने में तो ऐसा करता था कि मेरे हाथ में ग्रिप मेरा ठीक आ रहा है। कभी कभी होती है कि बॉल थोड़ी बड़ी होती है, आपके हाथ में वो सेटल नहीं होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ रेणुका ठाकुर नहीं करेंगी, वो दूसरे जो तेज गेंदबाज होंगे उनको भी दिखाई जाएगी। बट उसकी सीम पोजीशन की आप बात करें, कितना कंफर्टेबल आप उसको फील कर रहे हैं, हर समय आपने आपने देखा उल्टा ऐसे करके ऊपर फेंकते हैं कि वो सीम से वापस आ रहा है, कि कभी कभी होता है कि नहीं सीम से अच्छा आ रहा। तो ये गेंदबाजों की अपनी अपनी सोच रहती है सब।
1: इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं जोड़ूंगा आपको, इसमें एक खिलाड़ी टीम के अंदर रहता है, एक गेंदबाज रहता है जिसकी जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी रहती है कि आप जाके गेंद देखेंगे, तभी आप देखिए ज्यादा लोग नजर नहीं आते। वो एक फील रहता है और सिर्फ एक नहीं, आजकल अगर आप देखें तो थर्ड अंपायर या फोर्थ अंपायर जो आता है वो एक और बॉल आपको हमेशा बोलता है कि दो बॉल होनी चाहिए रखने के लिए। कई बार डी शेप हो जाती है, कई बार गेंद जाके कहीं टकराती है, तो उसके लिए दो बॉल आपको बोलते हैं हमेशा रखने के लिए। तो ये भी होता है, लेकिन चूज एक ही खिलाड़ी करता है और उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड ये करता है कि उसको किस तरीके से फील रहती है और बाकी सारे उस पर विश्वास रखते हैं कि ये जो भी पिक करेगा ना वो हम सब उसके साथ चलेंगे।
3: मेरे समय में मैं कपिल पाजी को कभी बॉल उठाने नहीं देता था।

0: मेरा हाथ और उनके हाथ में जमीन आसमान का फर्क था, और जब उनके हाथ की गेंद करते तो मेरे हाथ में फिट ही नहीं होती थी, तो मुझे बोला जाता था आप चूज करो, जैसे विजय बोल रहे हैं, तो एक को ड्यूटी लगती है आपकी करने के लिए।
1: जी, और क्योंकि बॉलिंग की बात चल रही है, विजय, शेफाली वर्मा के रूप में भारत को एक नया ऑलराउंडर मिल गया है, ये जो सफलता मिल रही है शेफाली को बॉलिंग में, क्या वो इसलिए है कि शेफाली को रीड करना बैटर्स के लिए उतना इजी नहीं हो रहा है? वुड यू लाइक टू डीकोड शेफाली'स बॉलिंग फॉर आवर लिसनर्स?
2: इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डीकोड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज़ शी वाज नॉट बॉलिंग फोर ओवर्स ऑन द रेगुलर बेसिस अर्ली ऑन। आई मीन लाइक शी वाज यूज्ड एज अ पार्ट टाइमर एंड शी इज डन अ फिनोमिनल जॉब एज अ पार्ट टाइमर। शी इज अ विकेट टेकर, यू नॉर्मली सी दैट। व्हेन आई सी अ टॉप order batter bowling, I always feel you think like a batter and then you bowl. What I don't want to face, that's what you try to deliver, and I think that works in a favor when a top order batter is used as an all rounder.
3: चलिए, गेंदबाजी के विकल्पों की हमने बात की, but there's this thing called utilization of resources. शशांक, नंदिनी शर्मा बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल के लिए जानी जाती है, डेथ ओवर्स बॉलिंग के लिए जानी जाती हैं। पिछले मैच में हमने देखा डेथ ओवर्स में उनको गेंद नहीं थमाई गई, तो जिस तरह से यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है, क्या आप उससे अभी तक सेटिस्फाइड हैं या इंडिया को उसमें अपना आउटलुक बदलने की जरूरत है?
4: यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ओके, यू नो आई थिंक इट्स अबाउट द परफॉर्मेंस of your resources. You know, so the entire middle order has not performed. You know, the captain herself, she came into the tournament on the back of a very good form, but hasn't been able to make her mark. Jemima has disappointed. Richa has not been her own self. So it's all, the entire onus is now on Smriti and Shefali through the tournament to score runs, and on Sri Charani to take wickets. So these are the three players who have carried the team, but it's a game of 11 players, you know, so only three players performing. And Deepti Sharma of course took 5 for 10 against Pakistan, but she gave 44 runs of her in her 4 overs against South Africa. You know, as the leading all-rounder in world cricket, she's supposed to do her best against the top teams. So there she couldn't deliver the goods. So it's all about how the resources perform, and there is the problem, and because of that there has been tinkering with the team. And as Chetan bhai said, in a big tournament it is very important to have a settled team, you know, because of injury or because of unexpected slump in form, you may change one player here and there, but in a big tournament you need to have a settled army. So that has not been the case with India.
3: जी, और आज हम उम्मीद करते हैं कि उन सारी गलतियों को भारतीय टीम पीछे छोड़ाएगी। इस वक्त हम मैदान पर देख रहे हैं कि टीम्स लाइंड अप है नेशनल एंथम्स के लिए, और कोइंसिडेंटली दोनों ही देशों के नेशनल एंथम्स रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं, तो इस वक्त नेशनल एंथम्स की प्रक्रिया जारी है। मुदिता, आप कुछ पूछना चाह रही हैं?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है और इसी बीच में ICC ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है, रिटर्न टू प्ले पोस्ट प्रेगनेंसी गाइडलाइंस जो है, और वो साफ कह रहे हैं कि मदरहुड इज नॉट the end of the innings, it's just a pause. Pregnancy की वजह से अभी तक हम जो देखते थे कि महिला क्रिकेटर्स को करियर ब्रेक या रिटायरमेंट लेना पड़ता था, लेकिन अब ICC ने फीमेल क्रिकेटर्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए गाइडलाइंस बनाई है। 16 हफ्तों का पूरा फ्रेमवर्क बनाया है जिससे मां बनने के बाद खिलाड़ियों पर डायरेक्ट प्रेशर नहीं हो, बल्कि स्टेप बाय स्टेप रिकवरी, मेडिकल सपोर्ट और ग्रेजुअल कमबैक हो सके। ICC प्रेसिडेंट जय शाह ने कहा कि किसी भी प्लेयर को मां बनने और देश के लिए खेलने के बीच चुनाव न करना पड़े, इसलिए ये गाइडलाइंस लाई गई है। विजय, एक्सेप्शनल स्ट्रोक बाय द ICC।
2: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। अभी आपने कहा कि मदरहुड स्टॉपेज नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक पॉज है। बिल्कुल, मुझे लगता है, और ये चीज़ ऐसी है जहाँ पर आप ये एक स्टेटमेंट देने की कोशिश करें कि किस तरीके से ICC वुमेन्स क्रिकेट की तरफ देखता है और उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है।
1: जी बिल्कुल, चेतन, मिडिल ऑर्डर की क्योंकि आप बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ एक जो और हमने पहले भी बात की, स्ट्राइक रोटेशन जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है हमको। पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पावर प्ले में 59 रन्स, डेथ ओवर्स में 36, जो कि साउथ अफ्रीका ने 39 जहां पर स्कोर किया था और पावर प्ले में 25 रन बनाए थे। असली फर्क जो बना जाकर के वो मिडिल ओवर्स का था, भारत ने जहां पर 63 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, वहीं साउथ अफ्रीका ने 97 रन बनाए बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
0: देखिए आपने विकेट्स गवाए हैं, आप

0: सेट होकर आउट हुए हैं। अगर आप जमीमा की बात करें, 36 रन बनाकर आप आउट हो रहे हैं, 47 रन बनाकर हरमनप्रीत कौर आउट हुई है। तो अगर आप यहां से दोनों में से एक भी आखिर तक अगर इंडियन टीम को ले जाता लास्ट ओवर्स तक, तो ऑब्वियसली आपके 15-20 रन एक्स्ट्रा जुड़ते हैं। देखिए, हर समय क्रिकेट के अंदर ये है, जैसे ही आप विकेट गंवाएंगे कहीं ना कहीं रनों पर अंकुश लगेगा, वो कहीं आपको आएगा, नया बैटर अंदर आएगा, आपको सेटल होने के लिए समय लगेगा। तो देयर कपल ऑफ थिंग्स विच आई थिंक, देखिए जो चीज गई उसके ऊपर ज्यादा सोचने का अब जरूरत नहीं है। आज जो है डिफरेंट ग्राउंड, डिफरेंट टीम, डिफरेंट एटमॉस्फेयर ऑल टुगेदर, आप अपनी जाकर नॉर्मल क्रिकेट खेलिए एंड कॉन्सेंट्रेट कि आगे क्या होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो बहुत दूर है। आज आपके सामने क्या चीज है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, प्ले योर बेस्ट क्रिकेट एंड रेस्ट, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे आप अपने आप जीतेंगे। जी
1: बिल्कुल, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और आप जीतेंगे। तो चलते चलते आप लोगों से हम प्रेडिक्शंस लेना चाहेंगे कि बांग्लादेश का क्या आपको लग रहा है, कि क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप
0: स्कोर? आपको लगता है कि हम उस तरफ जाएंगे? इंडिया का मैच है तो ऑब्वियसली इंडिया ऑल द वे।
1: तो कहां पर रोकना चाहिए भारत को, बांग्लादेश की टीम को?
2: मुझे लगता है कि अगर बहुत अच्छा बांग्लादेश अगर खेलेगी तो कहीं शायद 100-110।
1: जी शशांक, आप भी इसके आसपास ही?
3: 120 उन्होंने 124 बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ।
1: जी
3: मुझे लगता है उससे कम में हिंदुस्तान को उन्हें रोक देना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, उससे कम में रोक देना चाहिए। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर से हाजिर होंगे मिड इनिंग्स ब्रेक में और आप चलते हैं हमारी कमेंट्री टीम की ओर।

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: 2020 महिला विश्व कप

0: out Prema Rawat as well as the Seema from the previous game, Arundhati Reddy. So those are the two changes. One would have thought that maybe they would have thought of including an extra bowler, but they've gone in with those five specialist bowling options and Shefali Verma, of course, also as a backup.
1: Yeah, and in this match, Bangladesh has toss jeet kar isliye ballebazi ka faisla kiya hai ki पहली पारी में बल्लेबाजों को थोड़ी मदद मिलने की उम्मीद है. क्रैक्स हैं पिच में और उम्मीद की जा रही है कि ये थोड़े से बढ़ सकते हैं. सेकंड पारी में थोड़ी सी भारतीय टीम को परेशानी हो सकती है. इसी को देखते हुए बांग्लादेश की कप्तान जो हैं उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने कितना सही फैसला लिया ये जब मैच का परिणाम आएगा तब देखना होगा. लेकिन भारत के लिहाज से ये टूर्नामेंट अभी तक मिला जुला रहा है. पाकिस्तान को 64 रन से हराया था पहले मुकाबले में 14 जून को. 17 जून को नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया. लेकिन 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से 6 विकेट से हार मिली और वहीं से थोड़ा सा समीकरण भारत के लिए पलटा. हालांकि नेट रन रेट के लिहाज से दिवाइन अभी भी भारत दक्षिण अफ्रीका से आगे है और पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है.
0: Yes, it's a positive for India and it'll all probably boil down to that Sunday's match against Australia. But for the moment, they have to take on the two openers from Bangladesh who have made their way out to the middle, Dilara Akhtar and Juwairia Firdaus. And it does look like Shefali Verma is going to deliver the first over. So that sixth bowling option coming.

0: into play straight away.
1: बड़े दिलचस्प है ये, क्योंकि शेफाली आमतौर पर नियमित गेंदबाज नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में भरपूर उपयोग हुआ है उनका और पहला ओवर लेकर आ रही है। दिलचस्प होगा ये देखना कि किस तरह से उनका ये पहला ओवर चलता है। और इस समय स्ट्राइक पर बांग्लादेश की सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं, फील्ड पूरी तरह से तैयार है और दिलारा अख्तर इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रही हैं। धूप पूरी तरह से खिली हुई है और बस कुछ ही सेकेंड्स में ये मुकाबला शुरू होने वाला है। भारत को अपना अंतिम मैच 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। तो भारत अगर दोनों मुकाबले जीत लेता है, नेट रन रेट बेहतर रहता है, जो अभी दूसरे स्थान पर है उसको बनाए रखता है, तो सेमीफाइनल में पहुंचने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। पहली गेंद इस ओवर की और इसको सुरक्षित खेलना चाहती थी, बीट हुई पूरी तरह से, ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर निकली ये गेंद और चारों खाने चित हो गई। ये पहली गेंद कैरम बॉल थी और इस पर पूरी तरह से चकमा खा गई।
0: या ऑलमोस्ट प्लेइंग फॉर द टर्न व्हिच वाजंट देयर, सो वेल बोल्ड बाय शेफाली।
1: जी हाँ, और शुरुआत भारत के लिए अच्छी हुई है। स्पिनर्स की मददगार पिच पर भारत क्या कमाल करेगा ये देखना होगा। और इस गेंद को खेलना चाहती थी, ड्राइव करना चाहती थी कवर की तरफ, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लिया इस गेंद ने। किस्मत वाली रही कि विकेट कीपर की तरफ नहीं गई ये गेंद। एक रन लिया और फिर दूसरे के लिए भी पलटी है और ये दो रन पूरे हुए हैं। इन दो रनों के साथ बांग्लादेश की स्कोरिंग की शुरुआत हुई है और भारतीय टीम चाहेगी कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश की पारी को समेटा जाए। इस पिच पर 130 के आसपास का रन भी काफी सुरक्षित माना जा रहा है। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर दिशा में परिवर्तन किया था, जिसको हल्के हाथों से खेला ऑन साइड में। इस बार एक रन मिलेगा और इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 3 बगैर किसी नुकसान के। जैसा बताया देवायन ने कि आज भारतीय टीम में दो परिवर्तन हुए हैं, राधा यादव और रेणुका सिंह की टीम में एंट्री हुई है, जबकि अरुंधति रेड्डी और प्रेमा रावत को विश्राम दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए मुकाबला। रेस में बांग्लादेश की टीम भी बनी हुई है। ग्रुप ए से जो दो टीम बाहर हुई है वो है नीदरलैंड्स की टीम और उनके साथ साथ पाकिस्तान की टीम। अगली गेंद इस बार फिर से लेग स्टंप पर, दिशा से थोड़ी सी भटकी हुई गेंद, हालांकि बल्लेबाज ये देख रही थी कि अंपायर क्या इस गेंद को वाइड बॉल करार देते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल फेयर डिलीवरी और इस पर कोई रन नहीं। ये ओवर चलता हुआ 4 गेंदें हो चुकी है, 5वीं गेंद के साथ तैयार। इस बार शेफाली वर्मा की ये गेंद फिर से पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं खेल पाई। ऑफ स्टंप पर थी गेंद, इस बार परिवर्तन के तौर पर धीमी रफ्तार की गेंद और पिच का पूरा फायदा उठाते हुए। इस पिच पर अनुमान यही है कि गेंद थोड़ी सी रुक कर आएगी, अनइवन बाउंस भी देखने को मिल सकता है और अभी तक इस ओवर में परेशानी हुई है बांग्लादेश के दोनों सलामी बल्लेबाजों को। दिलारा नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं 3 रन बनाकर और इस समय फिरदौस ने इस गेंद को खेला कवर की तरफ, कोई रन नहीं। और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में बांग्लादेश ने बनाए 3 रन बगैर किसी नुकसान के।
0: 3 विदाउट लॉस, टाइडी स्टार्ट एंड शेफाली वर्मा जस्ट गेटिंग अ कपल ऑफ बॉल्स टू स्पिन, व्हिच विल बी एनकरेजिंग न्यूज नॉट जस्ट फॉर द इंडियन स्पिनर्स बट आल्सो फॉर द बांग्लादेश स्पिनर्स देमसेल्व्स। अ लिटल बिट अबाउट द टू ओपनर्स फॉर बांग्लादेश, दिलारा अख्तर 22 इयर्स ऑफ एज, जुआरिया फरदौस 20 इयर्स ऑफ एज, बोथ राइट हैंडेड बैटर्स एंड प्लेयर्स हु हैव अ स्ट्राइकली बेटर स्ट्राइक रेट इन टर्म्स ऑफ देयर करियर्स। दिलारा अख्तर, दिस इज हर 41st मैच, शी हैज अ स्ट्राइक रेट ऑफ 115 एंड फरदौस इन हर 18th मैच ऑल्सो पोजेसेस अ स्ट्राइक रेट ऑफ 113 व्हिच इज रिलेटिवली बेटर than many of their teammates, and that's why they have formed this combination. And in early June, Dilara actually scored 50 of 22 balls in a match against the Netherlands, which is the fastest 50 for Bangladesh in women's T20Is. They'll be hoping for that kind of explosive start if possible, but in that first over, we did see some tidy bowling from Shefali, just looking to attack the stumps. The odd ball turned a little, the odd ball also bounced a little, and the very first one just left the batter after pitching. Dilara Akhtar was beaten all ends up. And for the second ball, skipper Harmanpreet Kaur actually brought in a slip. Now Renuka Singh Thakur with her first over of this entire World Cup, her first match in fact, little short of a length, pulled away on the onside by Dilara and she picks up a single to move along to 4 and takes the Bangladesh score along to 4 as well without loss. Second over in progress, Renuka Thakur making her first appearance in this World Cup. India have had a little bit of a merry-go-round with their seamers. They have played Nandini Sharma pretty much throughout, but they have alternated between Kranti Gaur. They also brought Arundhati Reddy in the previous match. So never really completely sure about where they want the exact combination to fall. This time it's back of a length and it's been pulled away. There's a fielder in the deep though, deep backward square leg, where N. Sri Charani does the the cleanup. It's the first runs for

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। संविधान हत्या दिवस पर देश भर में लोकतांत्रिक मूल्यों पर हुई चर्चा, प्रधानमंत्री ने भी दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से 203 करोड़ रुपए की पेंशन राशि अंतरित की। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट या मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 300 दिनों के अवकाश का नकदीकरण कर सकेंगे। और प्रदेश के 15 जिलों में मानसून की दस्तक, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से।

0: आज संविधान हत्या दिवस के अवसर पर देशभर में आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक अत्यंत कठिन दौर था जिसने हमारे संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित की गई और राजनीतिक नेताओं तथा पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। श्री मोदी ने कहा,
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है ताकि भविष्य में लोकतंत्र पर ऐसा हमला फिर न हो। उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल की विभीषिका के विरुद्ध डटकर खड़े होने वाले लोकतंत्र प्रहरियों को नमन करते हुए कहा कि 25 जून 1975 देश में लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन था। आज के ही दिन 1975 में इंदिरा सरकार के अहंकार के परिणाम स्वरूप देश में आपातकाल लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारत और सेशल्स के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनजन के मजबूत संबंध हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी देश है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज 33,92,695 से अधिक भाई बहनों और बुजुर्गों के खातों में 203,56,00,000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य सरकार का कोई भी निर्धन परिवार, माताएं बहने, हमारे दिव्यांग साथी स्वयं को बेसहारा न समझें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अंत्योदय का संकल्प सिद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा,
3: नर सेवा ही नारायण सेवा, ये जो माननीय मोदी जी का भाव है, इस भाव के आधार पर आज 33,92,695 से अधिक इस विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के जुड़े हुए सभी भाई बहनों और बुजुर्गों को मई महीने की 203,56,00,000 की राशि ट्रांसफर करने की आप सबको बधाई देता हूँ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। सभी प्रकार के गरीब, युवा, नारी, किसान सबके लिए हमारी सरकार काम कर रही है।
0: भोपाल के लोकभवन में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 102वीं बैठक आयोजित हुई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्वविद्यालयों को युवाओं में कौशल, योग, सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं को अधिक अवसर देने और गरीब कल्याण की योजनाओं से विद्यार्थियों को जोड़ने पर बल दिया। बैतूल जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर को प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान से विभूषित किए जाने के बाद भोपाल लौटे मोहन नागर का मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा,
4: 23 जून को अवार्ड जब मिला तो निश्चित रूप से ऐसा लगा कि वर्षों की जो साधना थी, जो छोटे छोटे काम हम बैतूल के जनजाति समाज के साथ गंगा अवतरण अभियान के और कार्यकर्ताओं के साथ जो कर रहे थे, उसको और देश के शीर्षस्थ लोगों ने संज्ञान में लिया और विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो काम किया है, बैतूल के जनजाति समाज के बीच में शिक्षा को लेकर के जो काम किया है राष्ट्रपति जी ने, उसको संज्ञान में लेकर के और इतना बड़ा पुरस्कार उस अभियान को दिया है, मैं सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ।
5: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: बिकीबाज समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट राशि के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए।

किए हैं। इसके तहत अब कर्मचारी रिटायरमेंट या सेवाकाल में मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली छुट्टी की राशि का स्व आकलन कर सकेंगे। आदेशानुसार कर्मचारियों को अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश ईएल का ही नकदीकरण लाभ मिलेगा। यदि किसी ने पहले इसका लाभ लिया है तो वो अवधि कुल 300 दिनों की अधिकतम सीमा में से घटा दी जाएगी। प्रदेश में मॉनसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में कल दस्तक दे दी है। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मॉनसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर करने का अनुमान है। विभाग ने कल सीहोर, सागर, विदिशा, छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में भारी से सामान्य बारिश की चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटों के दौरान खंडवा जिले में 24.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं सीहोर जिले में इस दौरान 0.91 इंच बारिश हुई। छिंदवाड़ा जिले में 1 जून से अब तक कुल 64.4 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। दतिया जिले में अब तक केवल 13.25 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। उधर पांडुर्ना जिले के ग्राम बड़ चिचोली में खेत में काम करते समय आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर प्रीति यादव ने स्कूली वाहनों की नियमित और सघन जांच करने के कड़े निर्देश दिए हैं। धार जिले के धामनो क्षेत्र में परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाकर 50 स्कूली वाहनों की जांच की। नियम विरुद्ध पाए गए 7 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 33,000 रूपये का जुर्माना वसूला गया। नर्मदापुरम जिले में रेशम समृद्धि योजना के तहत किसानों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ई रेशम पोर्टल पर मलबरी पौधरोपण हेतु ऑनलाइन पंजीयन शुरू कर दिया गया है। सागर जिले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जलगंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए वर्षा जल संचयन के लिए फॉर्म पॉन्ड्स के निर्माण के निर्देश दिए। झाबुआ जिले के मेघनगर में संभागीय चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा मेघनगर और उदयगढ़ में औचक निरीक्षण कर किराना दुकानों और दुग्ध केंद्रों से खाद्य पदार्थों के 34 नमूने जांचे गए। शहडोल जिले के बुढ़ार में जनजातीय कार्य विभाग ने 2 करोड़ रूपये से अधिक की गंभीर वित्तीय अनियमितता सिद्ध होने पर पूर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी अशोक शर्मा को बर्खास्त कर दिया। नीमच जिले के ग्राम हनुमंत्या व्यास में शासकीय कुएं से पानी बेचने की शिकायत पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर पीएचई विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर रोक लगाई। गुना के चाचौड़ा शाखा में खाद वितरण व्यवस्था में लापरवाही और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के बाद प्रभारी प्रबंधक को हटाकर मोन्टू बिंदल को नया प्रभार सौंपा गया है। भोपाल के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के आनंद विद्या मंदिर में सेफ क्लिक 2.2 अभियान के तहत करीब 250 छात्रों को साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई। मंदसौर में पीएचई विभाग द्वारा भानपुरा में आयोजित कार्यशाला में 44 ग्राम पंचायतों को जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए 10 प्रकार की जांच वाली फील्ड टेस्टिंग किट वितरित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

चौपाल सुने वाले सबे भैया बहनी हेरन का हमार सुबेंद्र भाई केर राम राम। भैया बहनी हेरे देखी

कोनो काम हो जो मने नियम में बंध के चली वही करी तो वह निकाह होत है, पर जो मने नियम से काम ना करी तो फिर काम निकाह के ना हुई। यहीं से कोनो काम करे के पहले मने ओके खातिर नियम बनाए के फिर काम करत है। जैसन के आप देसाई का ले ली तो देखी कि जब अपने देश मा या प्रजातंत्र शासन प्रणाली लागू कीन गए तो फिर देश का निकाह के सुचारू रूप से चलावे के खातिर एक ठे नियमावली बनाई गए जौने का मने संविधान कहत है। संविधान देश के शासन पद्धति का चलावे के रिक्ते नियम आए जौने से अपने देश के बागडोर चलती। जब कबाव ओह नियम केर माने के संविधान मा लिखी बातन केर पालन न करत कीन काम कीन जात है तो फिर संविधान के उल्लंघन करब कहा जात है। तो फिर लोग ओकर विरोध करत करह कहे के सबै लोग वही नियम के अनुरूप काम करे चाहत था। तो भई करो देखी कि जब कबो को व्यक्ति या कि शासन पर बैठा व्यक्ति वह नियम के अनुरूप काम नहीं करे तब फिर वही शासन चलावे में बहुते कठिनाई के सामना करे के पड़त है। ऐसने में फिर शासन और जनता के बीच आपसी मतभेद दिखाए लागा था। शासन में बैठे व्यक्ति का आम जनता के ऊपर कठोरता दिखाई पड़त है। जैसन के एकर एक ठे उदाहरण है, जब 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश में आपातकाल के घोषणा कीन्हीं तो वह समय फिर ऐसा स्थिति आई कि संविधान में लिखित नियम से हट के शासन में बैठे लोग नियम लागू कीन्हीं और जनता के ऊपर जबरन दबाव बनाए गए। बहुत सारे लोगन का हवालात में बंद कर देंगा। भई करो यह घटना 25 जून सन 1975 के राय जौने का अब भारत सरकार के द्वारा हर साल 25 जून का संविधान हत्या दिवस के रूप में मनावे के घोषणा कीन गए है। यह दिन माने के संविधान हत्या दिवस 25 जून 1975 का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल के सुधि लगावत है। यह दिन का भारतीय लोकतंत्र और संविधान के इतिहास के सबसे काला अध्याय माना जाता है। भई करो केंद्र सरकार के द्वारा हर साल यह दिन का मनावे के मुख्य उद्देश्य नागरिकन का आपातकाल के दौरान हो वाले अत्याचारन और संविधान के दमन केर याद दिवाऊ है। कहे कि आपातकाल के दौरान देश के नागरिकन के सभी अधिकारन यहाँ तक के मौलिक अधिकारन का घलाए छीन लेन गए रहे थे। पुलिस और प्रशासन का असीमित शक्ति दय के आओ उनका शक्तिशाली बना देन गया रहा जौने के कारण वो बिना कोनो कारण के लोगन का गिरफ्तार कैलेत करत रहे। मीडिया के स्वतंत्रता पूरी तरह से समाप्त कर दीन गई। समाचार पत्रन और रेडियो में वह प्रसारित होत रहा जौने का सरकार मंजूरी देत रही। सत्ता के दुरुपयोग द्वारा विपक्षी दलन के नेता लाखन कार्यकर्तन का जेल में डार दीन गा रहा। सरकार के खिलाफ आवाज उठावे वाले हर व्यक्ति का दवाई देन जात रहा। आपन सत्ता बचावे के खातिर संविधान के मूल भावना का ताक पर रख दीन गा रहा।

जौने का भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ा हमला माना गा। वे करो गृह मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार यह दिवस का मनावे के संकल्प यह सुनिश्चित करब है कि भविष्य में कबो भारत में ऐसा तानाशाही और अलोकतांत्रिक फैसलन के कौनों मेर से पुनरावृत्ति न होए।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: क्या आप लगातार छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या से परेशान हैं? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनूप सिंह एमडी दीवा से बात कर रहा हूं। आज हम लोग एलर्जी राइनाइटिस के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग एलर्जी को एक छोटी समस्या समझते हैं, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकती है। नाक बंद रहने से नींद प्रभावित होती है, थकान महसूस होती है, सिर दर्द हो सकता है और काम या पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को सही से सांस ना ले पाने के कारण चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। अगर ये समस्याएं बार बार हो रही हैं, तो इन्हें नजरअंदाज न करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें और समय पर सही इलाज कराएं। धन्यवाद।
0: Issued in public interest by Dr. Reddy's Laboratories. This information is not a substitute for medical advice. Please consult your doctor. While prepared with care, Dr. Reddy's assumes no liability for its content.
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: बे करो देखिए साई तबे लगन हाई तो चलिन रही है, त ऐसने समय मा जब कौनो मंगल गीत हो लागत है, तबे नीक लागत है। त आई मनई सुने एकठे ऐसने लोकगीत।

अबे मने सुनत रहन अजूरी जौने का गावत रही ज्योति तिवारी। बे करो आजो आई भी फै। अबे अंजूरी नहीं सुहाग है सुनत रहन जौने का गाय नहीं ज्योति तिवारी। बे करो आज आई भी फै। और आज के दिन मनई हम पंचे सुनित करी थे अपने बोली बानी के माने के बघेली के साहित्य। देखी हम जानी थे कि हमारे बहुत जने भैया बहनी हरे यही सुनई के खातिर खुशी से इंतजार में राहत करा हैं। त आई अब बिना कोनो देर दराज के मनई सुनी बघेली कहानी। त आज के कहानी के शीर्षक है परदेसी। जौने का सुना रहे हैं सुरेश कुमार तिवारी। त आई मनई सुनई यह बघेली कहानी परदेस।

गांव घर अपन बहुत निक लागत है। लगते है सार राम से नहीं कमाए के घरे आ गए तय। गांव टोला परिवार सत्तर भलाई देख के मन में बड़ा उड़ाव मनाई। देखे थे कि सब मन ही अपने अपने कामे में लगे हैं। कौ अपन घर छबावत थे, कौ खेत में घूर बिछावत थे, कौ भाई रोपा धान बोवत थे, बो में का भूई बनावत थे। राम से नहीं मन मा घर छमावे के विधान बना लिहिन। दूसरे दिन बैठे हो सरिया मा अरहर के लाइना बनावत बैठ रहा है। उनके मन मा अपने खेती गृहस्थी के अध्ययन आएगा। देखा थे कि खेती मा खर्चा ओहिन त लागत है, पे बिना तोरा के घर खर्च तक का नहीं हुए। अब यह ठीक नहीं आया। अब परदेश हम 4 महीना का जाब, हमहू नए तरीका के खेती करब। यह बात मन मा ले रही के दूसरे दिन बड़े सकारे मुखारी कुल्ला कह के अपने बाप के हितुआ के लगे पहुंच गई। रमजान काका राम सनेही का देखते दौड़ के छाती से लगा लिहिन। कब आयत बेटवा? वो है हफ्ता के भीतर कक्कू। और टोला मा सब खैरियत है? हाँ कक्कू। कैसन चले कक्कू? एक ठे गरज लेके आनते, गरज तो सबके होती। कह के भीतरे का इत निहारिन, कहीं देखा को आवा है। रहीम के महतारी बहरे का निहारिन, बैठे दादू बैठे, भर से काम न चली, कुछ पानी पिए कल आवा। राम सनेही पानी पी के रीते कक्कू कहिन, हाँ अब गरज सुनावा। कक्कू अब हमहू नए ढंग के खेती करब, सलाह पूछ आन है। खेती के ढंग सलाह तक ग्राम सेवक बतावत हैं, उत्तम बीज देवावत है। तू हमारे लगे आया है तो खा हम ढंग बताओ। सियारी उन्हारी के बीज दे, हमहू किसाना हैं, सब फसल के नवा बीज धए हैं। निस्वर्ज घरे जा दूसर काम देखा, ठीक कहे कक्कू हमार भारा उतरगा। कह के घरे चले आए, घर मा देखा थे कि दोनों लड़का बिटिया मदरसा पढ़े जाए के तैयारी बनावत रहे। बड़ा लड़का बोल उठे, दादा हम कक्षा में गैर हाजिर हैं, हमका फीस का पैसा तय दिया, काहे तुम मदरसा नहीं जाते? छोट लड़का बोल उठे, दादा ई पंचायत में पड़त है, तुम्हार काम आए, पढ़ खूब पढ़ी खूब बढ़ी ले रुपया। अब ऐसा गलती न किया। दोनों लड़का बिटिया मदरसा चले गए। राम से नहीं बोल उठे, रुक्मिनी तुम नहीं जाने हम कहाँ गयनते। आज हम रमजान काका के घरे गयनते, हमार सब चिंता दूर कई दिन। सलाह खेती में बतौबे करही, बल्कि सियारी उन्हारी के बीज देगा कहीं। हमार अब तुहु कुछ मदद कराए दया, हम घर छवा ली। घर छवा के फुर्सत भें कि दयुमा बदरी लोरे लाग। एक दिन ऐसा पानी बरसा कि तमाम भूमि में पानी पानी दिखाए लाग। जो चौथे दिन सब किसान हर नदवामय के पूर्व तैयारी बना लिहिन। राम से नहीं रमजान काका के घरे सियारी के बीज लिए का पहुंच गए। रमजान काका बिजहा माँ उर्दा मूंग सोयाबीन और धान अनेक किस्म के बीज बड़ी दे दिहिन। लय जा खेती में हो जाई दे दिया, सब प्रमाणित बीज आए। राम से नहीं बड़े उराव से बीज लय के घरे चले आए। दूसरे दिन से राम से नहीं हर नद लिहिन खेत माँ बाह लगावे लागे। चौथे दिन रमजान काका खुदे पहुंच गए, कहीं दादू बीज हरुहन गरुहन दोनों आए। मोट पातर जमीन में बोया, खेत केर चारा झरवाए डारिया। राम से नहीं जौन चौमासे केर गोबर का करते है होएगा ऐसे।

फेंक देते वह तो आज जानते है। आज रासायनिक खाद बोबत के समय बाजार में ढूंढे नहीं मिले। खेती में खाद के मात्रा तबहीन पूर हुई जब एक ठे गड्ढा खेत के लगे एक ठे घर के कोलिया माँ खर पतवार गोबर दोनों स्वरूप तबहीन खाद के मात्रा पूरी हो पाई। आज जैविक खाद सब किसान का बहुत जरूरी है। रोपा जामे के 20-25 दिन तक माँ लगवाए दिया या बात बता के चलेगी। राम सिने ही दिन भर खेत में वाह लगाइन सांझ के घरे पहुँचे अकालू दादा का देख के बड़ा उड़ाव मनाये। धीरे धीरे लगे सा घरिये मीठ मीठ बताए लागे गौड़ मीजे लागे कुछ घरी मीजिन कुछ कहीं नहीं चले गए कंताली भीतरे से निकरे। दादा गुराय मारिन बतावा कालू हमार गौड़ काहे मीजिन बतैया का। हाँ दादा काल जयमंती दीदी मदरसा माँ साइकिल पाई है दोनों बहनी चली आई है चली जाये हम पंचे रेंगे तो उपजाव यहीं से ठीक बताया पे अभी खेती खेती वबर जाए खर्च पूर हो जाए प्रकृति साथ दई देई खेती हो जाये साइकिल ले लिया कैसन रमजान का सिमारे कई तागे। राम से नहीं केर खेती दिखिन मन में बड़ा उड़ाव मनाइन राम से नहीं कहिन काका खेती तो सबके रासो ठीक है या बगार काखा परा है। राम से नहीं आज सरकार बिरवा लगामे का रुधामय का तार बेहन तक दे थे तुहार काम सेवा कर बिरवा उपज ना तुहु लगवा लिया पड़ोसी का कहा फेर पंचे साल कहिया कक्कू बड़ा सुख है फर मिले लागी दवाई मिले लागी इमारती जलाऊ लकड़ी मिले लागी पैसा मिले लागी प्रगी सही साथ दे एक ठे बात और बेड़ी थे दादू जौन मनई नहीं कहेगा वहाँ केर पर पर्यावरण ठीक नहीं आए हम तुम नहीं जानी भोगी थे हवा का सही बनावट है हमार तुहार बोलबत कहा देखी सुनी थे कि गांव गमई माँ या बगरा है कि कुछ कहा कि पहले महतारी का गाड़ी दे थी फिर आगे केर बत कहा होत है वो हवा में मिले थे कहा थे वातावरण ठीक नहीं आए घर में साफ सफाई निकाह बत कहा गाँव बस्ती माँ बिरवा लगे रहा पर्यावरण सुरक्षित रही आज विज्ञान हमारे साथ माँ सरकार हमारे साथ माँ हम अपने साथ माँ नहीं आए या तन पाले का कालागी वह करें कपरी दादू बिटियन केर पढ़ाई तपूर हो गये हो यहाँ कक्कू एक जने वकीलत पढ़ती हैं बसंती नाव के और जयमंती कहन की सरकार जब गरीब के पढ़े माँ इतनी मदद कही है तो हम सब मनई के दवाई करें का पढ़ा डॉक्टर वैद बनब तब वही डॉक्टरी पढ़ती हैं लड़का दोनों अभी गांव के मदरसा माँ पढ़ते हैं गोरुआ जनावर के टिन रखे है निकहे नस्ल के ले लिया जितना तुहार खाई है सब सोल कह दी है दिखाए के दूध दे है रकड़ा दे है तुम्हारे काम का गोबर मिल जाये तुम्हारे गांव माँ गुरुहाई सरकारी अस्पताल हमें वहाँ कृत्रिम गर्भाधान के पूर्व व्यवस्था है फीसो कम लागत थी हमारे घर माँ एक ठे जर्सी गैया हई ओहिन के बछिया सुख कहे हैं चला दादू चली आज रोजी बिटिया घरे में हई उनका फुर्सत कहाँ है आंगनबाड़ी महाई घर घर पहुँचती हई दादू तुम्हारे सिमारे न हो पहुँच गैन तय बड़ा निकाह गोह है दैदी एक पानी दे दिया अब गले समा दिया पकी आई तुहार यो निगाह गोहू है दादू एक पानी दिया फिर दाना केर कूद न पहिया चना दोनों निगाह है।

0: क्या आपको छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या सिर्फ मॉनसून में होती है या पूरे साल रहती है? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्यन गुप्ता, एमडी फिजिशियन। आज मैं बात करूंगा एलर्जी। एलर्जी कुछ खास मौसम में होती है, जैसे बारिश के मौसम या सर्दी के मौसम। इन्हें कहा जाता है सीजनल एलर्जी। या फिर कुछ एलर्जी ऐसी होती है जो धूल से, धुएं से, पालतू जानवरों से या प्रदूषण की वजह से हो सकती है। ये पूरे साल बनी रहती है। बारिश के मौसम में अपने घर को साफ और सूखा रखें, सीलन वाली जगहों से बचें और बेडशीट तथा तकिए को कवर को नियमित रूप से बदलते रहें। छोटी छोटी सावधानियां और सही इलाज आपको आरामदायक महसूस करने और आसानी से सांस लेने में मदद कर सकता है। थैंक यू।
0: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।
2: गांव घर अपन बहुत निक लागत कहते है, बड़ा निकाह गूं है। दैदी एक पानी दे दिया, अब गले समा दिया पकी आई। तुम्हारी हो निगाह गहू है, दादू एक पानी दिया, फिर दाना के कूद न पैया। चना दोनों निगाह है, राई बड़ा दाना, निगाह तेल निकरत है सबके।

0: तीनहारी तुहार ठीक ही। दादू अब हम चलित हैं घरे, तुहू चारा लेके काट लिया आराम से, नहीं चारा लेके घरे पहुँचे तैसे पंचायत से बलौआ आएगा। पहुँचे सभा लगी रहा है, सरपंच देखते है बलाए मारिन आवा राम से नहीं सभा मा, तुहू दुई बात कहा राम से नहीं। खड़े हो के बतामे लागे हम ससुरार गयन, दोनों रोज चौवान रहन दोपहर सांझ, दुगना नहीं दिखन तो सांझ के बैठक में पूछ मारन, भाई तुम्हारे यहाँ खाए का काहे में बनत है कि दुकना नहीं चले, काहे तुम पंचे कितना पिछले गांव के आया, घर घर में यहाँ गोबर गैस बायो गैस इसमें खाए का बनत है, घर के प्रदूषण दूर रहा है, पानी बिरवा सफाई हवा यहाँ ही मने के जिए के दबा। बैठक से घर आए रुक्मिनी बोल उठी, नहाए खाए के बेरा कहाँ चले गए थे, बैठक गए थे बड़ी निकही बात बताएं, रोजगार बढ़ावे खातिर सरकार से कर्जा लेके उन्नत करे, बेरा माँ कमाए के कर्जा पटे दे, गांव माँ विकास के डोरी अस फैला दे।
1: अवै मने सुनत रहन बघेली कहानी परदेसी, जौने का सुनावत रहे सुरेश कुमार तिवारी।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ। समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: भैया बहनिया, अपने भारत देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री आओ मंडल मसीहा के नाम से मशहूर बीपी सिंह माने के विश्वनाथ प्रताप सिंह केर जयंती हर साल अजवाई के दिन माने के 25 जून का मनाई जाती। काहे कि उनकर जन्म अजवाई के दिन माने के 25 जून सन 1931 का उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जौने का अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ एक ठे जमींदार घराने मा अपने माता पिता के तीसरे पुत्र के रूप में भा रहा। इनका मांडा के राजा बहादुर राम गोपाल सिंह गोद ले लिन रहा और फिर ही वहन के उत्तराधिकारी बने। माने के सन 1941 में 10 साल की उम्र में मांडा के राजा बहादुर बने। ऐसा कहा जाता है कि इनकर पूर्वज मणिपुर के पूर्ववर्ती राज्य के शासक रहे, जिनकर स्थापना 1180 में कन्नौज के राजा जयचंद के भाई राजा माणिकचंद किन्हीं रहा। उनकर परिवार

मांडा जमींदार के घरवाल या कि घरवार वंश से संबंधित रहा। भाई करो, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने 24वें जन्मदिन पर राजस्थान के देवगढ़ मदारिया के राजा के पुत्री राजकुमारी सीता कुमारी से विवाह किन्हीं या एकठे निर्धारित विवाह रहा। विवाह के समय सीता कुमारी के उम्र 18 साल रही। इन सीता कुमारी उदयपुर के महाराणा प्रताप वंशज सिसोदिया राजपूत से रहीं। इन दंपति के दो पुत्र रहे। पहल अजय प्रताप सिंह जौन न्यूयॉर्क शहर में एक चार्टर अकाउंटेंट हैं और दूसर अभय प्रताप सिंह जौन नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में डॉक्टर हैं। तो भाई करो, या मेर से इनकर जयंती आज आया और इनके जयंती के उपलक्ष्य में आई मनाई खुशी।

अबे मने सुनत रह नजुरी जौने का गावत रही सोनाली शर्मा। भाई करो देखी अब होत लागी चले के अर्जुना। तो चले से पहले हम अपना पंचन का बता दे थे कार्यक्रम के पता। तब पता अपना पंचे लिख ली। कार्यक्रम के पता है चौपाल के चिट्ठी द्वारा उपनिदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी सिविल लाइन रीवा जिला रीवा मध्य प्रदेश। पिन कोड है 486001। तो भाई करो अब यहीं पता पर हम ही पंचन कर ही अपना पंचन के चिट्ठिन के इंतजार। अब हो गए चले के जूना तो दे विदा। चौपाल सुने वाले सबे भैया बहनी हरिन का हमार शुभेंद्र भाई केर राम राम जय जवान जय किसान।

0: ओवर में एक और दबाव नंदिनी के ऊपर.
1: And just the way that particularly Yastika Bhatia has been running after the ball, she has just recovered not too long ago from a knee injury. It's quite obvious that she's not 100% fit, which begs the question, why are India continually investing on her? This time it's a full toss on the pads and it's been whipped away towards deep square leg for yet another four.
2: Ye laga abha ka choka.
1: Massive over the 17 of it. It's 96 for 3 after the 14th.
0: बहुत महंगा ओवर ये भारत के लिहाज से नंदिनी का. हालांकि नंदिनी ने एक सफलता जरूर दिलाई थी, लेकिन ये ओवर एक तरह से वापसी कराने में बांग्लादेश को कामयाब रहा है. इस मैच में एक दबाव बढ़ रहा था, बन रहा था बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन नंदिनी के इस ओवर से जो 17 रन का ओवर रहा है वो दबाव काफ़ी हद तक हटता हुआ और स्कोर बांग्लादेश का बढ़ता हुआ 96 रन 3 विकेट के नुकसान पर. हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस मुकाबले में अगर 140 के आसपास स्कोर हो गया तो इतना आसान होगा नहीं भारतीय टीम के लिए भी. हालांकि स्पिनर्स को अभी तक कुछ खास मदद भारतीय स्पिनर्स को खासतौर पर नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दूसरी पारी में ज़्यादा गेंदबाजों के लिए मदद होगी इस पिच में.
1: Absolutely. And the other concern, Dharmendra, is that India shouldn't start thinking about the net run rate. First aim should be whatever Bangladesh make, their first aim should be to try and get past that, irrespective of how many overs it takes. Because if they start obsessing over trying to get there in a specific number of overs, then there's every likelihood that they'll bring some of the Bangladesh bowlers into this particular equation. And on this pitch, I suspect the Bangladesh attack, which is quite spin heavy, will also enjoy themselves. There's a lot of experience in their spinners. And just the one experienced off-spinner which they didn't pick today, Sultana Khatun, who has a very good record against India. I was expecting them to perhaps pick her, but they've gone with the combination which won or did the trick against Pakistan in the previous match.
0: जहाँ तक इस मुकाबले की बात है, टॉस बांग्लादेश ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. दिलारा अख्तर और जुआरिया फिरदौस ने पारी की शुरुआत की. जल्दी आउट हो गए अख्तर, जिन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए और रेणुका सिंह की शिकार हुई. शिचरणी ने उनका कैच लपका था. उसके बाद एक अच्छी साझेदारी हुई 50 से अधिक रनों की फिरदौस और शोभना मुस्तारी के बीच में. दूसरा विकेट बांग्लादेश ने जब गंवाया तो वो विकेट था फिरदौस का, जो 33 रन बनाकर आउट हुई. अच्छी पारी उन्होंने खेली, 31 गेंदों में 5 चौके उन्होंने लगाए थे, 106.45 की स्ट्राइक से रन रेट बनाए. और उसके बाद शोभना मुस्तारी तीसरा शिकार भारत के लिए हुई और भारत की तरफ से उनको राधा यादव ने आउट किया. दीप्ति शर्मा ने उनका कैच लपका था. 26 गेंदों में 22 रन बनाए थे, 2 चौके लगाए थे. इस समय क्रीज पर कप्तान निगार सुल्ताना और उनके साथ शर्मिन अख्तर दोनों इस समय बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं और इस पहली गेंद का नए ओवर की शुरुआत कर रही हैं श्रीचरणी के शर्मिन, और इस गेंद को स्वीप किया है स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे की तरफ. 1 रन और जोड़ने में कामयाब रही हैं इस नए ओवर की पहली गेंद पर. स्कोर बढ़ता हुआ 97, 3 विकेट के नुकसान पर. 15वां ओवर शुरू हुआ है. अभी भी बहुत सारे ओवर बचे हुए हैं बांग्लादेश के लिए, और इस अंदाज में अगर बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करती रही, विकेट सुरक्षित रहे, तो 150 तक बेस्कोर जा सकता है. दूसरी गेंद इस बार धीमी रफ्तार की गेंद, हवा में थोड़ी सी ज्यादा गेंद को छोड़ा था इस मौके पर शिचरणी ने, और अंत में सिर्फ आगे आकर बल्ले को दिखाते हुए मुंह उसका खोलते हुए सामने की तरफ खेला. कोई रन इस मौके पर नहीं बनेगा. अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेला है सामने की तरफ सुरक्षात्मक तरीके से फॉलो थ्रू में. 7 से 14 ओवरों के बीच की अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर 56 रन बनाए बांग्लादेश की टीम ने और 2 विकेट गंवाए थे. धन्यवाद स्कोरर हमारे वेंकट बाला रेड्डी इस जानकारी के लिए. अगली गेंद इस ओवर की, और इस बार क्रीज से बाहर निकलकर खेलने का प्रयास पूरी तरह से, गेंद की पिच तक नहीं पहुंच सकी. अंत में बल्ला भर अड़ाया, अंदरूनी निगी किनारा लिया इस गेंद ने बल्ले का, और मिड ऑन की तरफ गेंद गई 1 रन के लिए. धीरे धीरे बांग्लादेश 100 रन के आंकड़े की तरफ बढ़ता हुआ, ये 15वां ओवर चल रहा है. लक्ष्य निश्चित रूप से बांग्लादेश के दिमाग में, उनके बल्लेबाजों के दिमाग में 150 का होगा. अगली गेंद इस बार बल्ले का मुंह खोला, थर्ड मैन की तरफ खेला, फील्डर भाग रही है उसके पीछे. गेंद को क्या रोक पाएंगी एक तेज रफ्तार से जाती हुई गेंद, हालांकि टाइव लगाकर इस गेंद को रोकने में कामयाबी, और निश्चित रूप से 4 रन बचाए हैं. 2 रन ही मिलेंगे इस मौके पर. इन 2 रनों से स्कोर जा पहुंचा बांग्लादेश का ठीक 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस 15वें

0: फ्लाइट से पूरी तरह से इस मौके पर चकमा खा गई और भारत के लिए चौथी सफलता एक अहम मौके पर.
1: Yeah, this was that intent, that aggressive intent shown by the skipper looking to skip down the wicket, but Radha may have spotted that, just fired it in a little quicker, a little wider, and that's what made the difference. She missed it altogether, sweeping it under the bat, and she goes for 32 from 27. It's been a quality innings, but the first mistake has led to her wicket, and it's a smart bit of keeping and stumping as well from Richa Ghosh. And now that she is gone, a lot of responsibility now on the remaining batters to try and get them to somewhere in the vicinity of 140. Even a 135 from here looks like it could be a good total. But this has probably meant the difference between 140 and 150. Had Nigar Sultana Jyoti been out there, the chances of that extra 15 or 20 runs would always have loomed over the Indians.
0: Nishchit roop se, yahan par ek mauka zarur is wicket ke baad Bangladesh ne gawaya hai. Kaptan ka out hona pareshani ka karan ban sakta hai. Aur wo jo run hai, 10 se 15 run पीछे रह सकती है बांग्लादेश की टीम. और अगली गेंद को इस बार नई बल्लेबाज ने ऑन साइड में खेला एक रन के लिए. शोरना अख्तर नई बल्लेबाज आई है और इस एक रन से अपना खाता खोला. स्कोर बढ़ता हुआ 107 रन चार विकेट के नुकसान पर. शर्मिन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी अब आन पड़ी है. इस बार उन्होंने लेग स्टंप की तरफ हटकर थोड़ा सा स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी. खेला इस गेंद को स्वीपर कवर की तरफ. एक रन इस मौके पर उनको मिला है और इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 108 रन चार विकेट के नुकसान पर. राधा यादव की अच्छी गेंदबाजी, अभी तक भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज. हालांकि एक कैच आज भी उनसे छूटा था, लेकिन उस दबाव से बाहर निकलते हुए दो सफलताएं अब तक अर्जित की. अगली गेंद को इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला. एक रन दूसरे रन के लिए पलटना चाहती थी, लेकिन फील्डर तेजी के साथ इस गेंद पर हावी हुई. दूसरे रन की संभावना को तत्काल समाप्त किया. इस एक रन से स्कोर हो गया 109 रन चार विकेट के नुकसान पर. राधा यादव को थोड़ी सी मदद मिली है, जब गेंद को उन्होंने हवा में छोड़ा है, फ्लाइट दी है, तो टर्न भी थोड़ी बहुत उनको हासिल हुई है. इस बार लगभग फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया, एक रन और आता हुआ, बढ़ता हुआ स्कोर 110 रन चार विकेट के नुकसान पर. इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने सफलता अर्जित की थी और अभी तक स्कोर 110 हुआ है. एक गेंद अभी भी इस ओवर की आनी बाकी है. इस गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से हल्के हाथों से खेला, एक रन के लिए भागी गेंदबाज, खुद पहुंची गेंद तक, थ्रो किया स्टंप्स की तरफ, लेकिन स्टंप पर गेंद टकराई नहीं, सुरक्षित अपनी क्रीज में दोनों बल्लेबाज. इसके साथ ही 17वें ओवर की समाप्ति. स्कोर 111 है चार विकेट के नुकसान पर. रन रेट इस समय बांग्लादेश का 6.53 का. और ये जो विकेट गंवाया बांग्लादेश ने पिछले ओवर में कप्तान का, ये कुछ रनों में कटौती कर सकता है बांग्लादेश के लिए.
1: इट सर्टेनली कुड, एब्सोल्युटली. बट लेट्स नॉट फॉरगेट शोरना अख्तर इज द प्लेयर इन फॉर्म इन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान. स्कोर्ड 39 नॉट आउट फ्रॉम 22 बॉल्स. जस्ट 19 इयर्स ऑफ एज, प्राइमरीली प्लेज एज अ लेग स्पिनर, बट हैज द एबिलिटी टू हिट इट लॉन्ग एंड वाइड. And that's what the Indians must be wary of. And who knew? Radha Yadav, restored to the team today, is currently the best bowler with two wickets against her name. Those wickets coming of Shobana Mustari for 22 and Nigar Sultana Jyoti, the skipper, for 32. One of them caught by Deepti Sharma and the other stumped by Richa Ghosh. So India, in spite of some lapses in the field, now seem to have got their house in order as Deepti Sharma now comes in for her third. For a fourth and final over, the 18th of the innings. Perhaps we'll be looking to finish with seam then, with one over each left for Renuka as well as Nandini after this. This one was played in towards deep mid wicket, which picks up another single and takes the score with that particular single along to 112 now for those loss of four wickets that they have lost in the past. 112 for 4, 17.1 overs bowled. The maximum that they've ever managed against India was 142, but that was chasing one of those two victories or one of those three victories that they have had against the Indians in this format. That was in the 2018 Women's Asia Cup. Next ball played away on the onside, picks up a single. The boundaries certainly have dried up, almost 4 overs since the last boundary was scored, and that's meant that the Indian discipline has been in evidence, especially from the bowlers, and their spinners in particular doing a very good job. Deepti Sharma into her fourth and final over, none for 16 from her. Radha Yadav 2 for 15 from her 3 overs, and N. Sri Charani 3 tidy overs for 18 runs, no wickets taken. Next ball played away on the onside, but Deepti is very quick across the turf, very good fielder as it is, but especially of her own bowling, gets across to it and makes sure that there's no possibility of any runs. If there are no wides or no balls, there are still 15 balls to come, and how well can Bangladesh maximize this? Oh no, in the meantime, another no ball signaled, which will mean that despite a dot ball, It is a free hit now for Shorna Akhtar

0: And she needs no second invitation, but this will probably just help her free herself up a little bit more. The youngster, the teenager, 19 years of age, takes strike. Skips down the wicket, plays it away on the offside, and it's just got in through the infield, and this is running away for a four after a long time. India have bowled a few no balls, and this is the first one perhaps which has been properly punished.
1: बिल्कुल, और खास तौर पर दीपी शर्मा का ये दूसरा नो बॉल था, और इस मौके पर जरूर फायदा उठाने में बांग्लादेश की बल्लेबाज कामयाब रही हैं।
0: Shorna Akhtar is a danger woman in this situation because she can wield the long handle effectively, as she showed. She was able to access the offside with a strong ring of fielders. This time looking to go leg side with the turn and plays it away on the onside. Wants to, but very quick fielding yet again from the Indians. N. Sricharani was very quick to get across from square leg. And that single takes the score along to 119 in the process. 119 for 4 at the moment. And thanks to that no ball, this is turning out to be a remarkably good over from the Bangladeshi perspective, because they've already picked up 8 runs and there are still 2 balls, legal balls to come. Deepthi round the wicket, worked away on the onside, almost returning to her on the bounce, and then she whips in a throw at the striker's end, almost as if to tell Sharmeen Akhtar that there's no getting away from me, let's not think about pinching a single of that one. Last ball of the spell from Deepthi. Remember, poised on 355 international wickets, needs that one wicket to move ahead of Julan Goswami, but looks like the legend will hold on to that record, joint record for the moment, unless something happens of this last ball. Deepthi comes down the wicket, just past Deepthi, and this has been struck nicely enough, but it won't run away for four because Jemima Rodriguez is very good to clean up and restrict the scoring to just one. 120 for four, 18 overs bowled, just 2 overs to come.
1: तो दो ओवरों की बल्लेबाजी और बांग्लादेश की टीम को करनी है, और इस समय बांग्लादेश की टीम अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है. रनों के लिहाज से अगर बात करें, 120 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर. दीप्ति शर्मा को इस मैच में कोई भी विकेट नहीं मिला. 4 ओवरों की गेंदबाजी उन्होंने कर ली है, जो अधिकतम गेंदबाजी की जा सकती है. 23 रन खर्च किए, कोई सफलता उनके खाते में आई नहीं. इकॉनमी उनकी 5.75 की रही. राधा यादव सबसे सफल गेंदबाज, 3 ओवरों में 15 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए हैं. लेकिन अब जो ये नया ओवर होगा, 19वां ओवर बांग्लादेश की पारी का, ये जिम्मेदारी किसके कंधे पर होगी? क्या राधा यादव पर दाव लगाएंगी कप्तान हरमनप्रीत कौर? ये देखना दिलचस्प होगा इस समय, क्योंकि अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो उसमें रेणुका सिंह ठाकुर का ओवर भी बचा हुआ है और नंदिनी शर्मा का भी ओवर बचा हुआ है. तो इंतजार इस बात का कि गेंदबाजी किसके हाथों में सौंपी जाती है. शर्मिन अख्तर 12 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रही हैं, और शोरना अख्तर ने 7 गेंदों में 9 रन बनाए हैं. कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता इस समय बांग्लादेश के लिए, अगर उनको स्कोर को 230 से 240 के बीच में कहीं पहुंचाना है. 250 का लक्ष्य अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहां से 2 ओवरों में 30 रन बनाने होंगे अगर 250 तक पहुंचना है, और 15 रन प्रति ओवर थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर लग रहा है.
0: एब्सोल्युटली, इट लुक्स लाइक इट विल प्रोबब्ली बी इन द विसिनिटी ऑफ 130-135 एट द मोमेंट, एंड दैट विल बी अ गुड टोटल कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बांग्लादेश लाइज इन इट्स स्पिनर्स. हाउएवर, इंडिया हैज अ पावर पैक्ड बैटिंग लाइनअप एज वेल, मेक नो मिस्टेक. इन दैट टॉप 6 और टॉप 7 देयर आर एटलीस्ट 6 प्लेयर्स हु हैव मोर देन 1000 रन्स इन दिस फॉर्मेट.
1: और नए ओवर की शुरुआत, और पहली गेंद पर ही भारत को क्या यहाँ पर कामयाबी मिली है. अगली गेंद की तैयारी, और इस गेंद को खेला है ऑन साइड में 1 रन के लिए. 122, 5 विकेट के नुकसान पर. तेजी के साथ ये रन पूरा किया. थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई थी, लेकिन तेजी के साथ रन के लिए भागी. 122, 7 विकेट के नुकसान पर. 19वें ओवर की ये दूसरी गेंद, हवा में इस गेंद को उठाकर खेला है. फील्डर वहां पर थी, लेकिन अनुमान उतना सही था नहीं. 1 रन, और फिर दूसरे रन के लिए भी तेजी के साथ पलटी. 2 रन, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 124, 5 विकेट के नुकसान पर. राधा यादव के हाथ में ही गेंदबाजी है. राधा की अगली गेंद को इस बार खेला है ऑन साइड में. फील्डर पहुंच पाएंगी क्या? नहीं, जी नहीं, इस मौके पर नहीं पहुंच पाए. 4 रन आता हुआ. ये लगा आभा का चौका.

0: कप्तान निगार सुल्ताना के 32 रन और ओपनिंग बैटर फिरदौस के 33 रन की बदौलत बांग्लादेश ने भारत को लक्ष्य दिया है 137 रन का। नमस्कार, मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट दर्पण तिखिया
1: और हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा मौजूद है। चेतन, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका।
2: धन्यवाद।
1: विजय धैया हमारे साथ मौजूद है जो एक और पूर्व भारतीय क्रिकेटर है और आजकल आपको कोचिंग के रूप में एक बतौर एक कोच T20 सर्किट में बड़े सक्रिय नजर आते हैं, कॉमेंटेटर है, ब्रॉडकास्टर है और आज हमारे एक्सपर्ट पैनल में मौजूद है। विजय बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: शुक्रिया।
1: और साथ साथ जाने माने खेल पत्रकार शशांक शेखर भी हमारे साथ मौजूद है। शशांक बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद।
1: सो 136/8 इज व्हाट बांग्लादेश हैव मैनेज्ड। चेतन, सबसे पहले आपके तरफ योर फर्स्ट रिएक्शंस टू दिस स्कोर एंड हाउ द इनिंग्स पैंड आउट।
2: देखिए, अगर आप बात करें बीच में एक आधा बॉलर तो ऐसा होता है जो रन ज्यादा लौटाता है। अगर आप बात करें नंदिनी काफ़ी एक्सपेंसिव आज रही, लेकिन जैसी फील्डिंग भारतीय टीम की थी, अगर आप 136 की बात करें, 137 का टारगेट है, ये कम से कम 115-120 के आसपास का टारगेट होता है अगर सारे कैचेस पकड़े जाते। देखिए, कैचेस विन मैचेस, ये हर समय कहा जाता है, कैचेस ही हैं, विकेट्स गिरेंगी, रनों पे अंकुश लगेगा। तो आज मुझे लगता है कि भारतीय टीम अपनी फील्डिंग से बिल्कुल नाखुश होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी भारतीय टीम ने कैचेस छोड़े थे, हमने देखा नतीजा क्या हुआ और आज हमने कैचेस छोड़े हैं और कोई एक दो कैचेस नहीं, मैं कहता हूँ पूरा बैग भर के आज कैचेस छोड़े हैं। एक हो मतलब चार गेंदों में आपने तीन कैचेस छोड़ दिए, तो वो कहीं ना ड्रेसिंग रूम में चीजें जाती हैं, वो आपको आपके बैक ऑफ योर माइंड रहती है। जिसने कैच छोड़ा वो अगर बल्लेबाज है तो उसको वो चीजें अफेक्ट करती है। लक्ष्य 136 रन, 137 का टारगेट, भारतीय टीम आराम से इसको पूरा कर ले।
0: जी बिल्कुल, ड्रॉप कैचेस भारतीय टीम के लिए एक बार फिर से चिंता का विषय है। लेकिन विजय, एक जो पॉजिटिव आज देखने को मिला है वो है राधा यादव की वापसी। अपने पहले ही मैच में उन्होंने तीन विकेट, वो भी तीन इम्पॉर्टेंट विकेट, पहला शोभना मुस्तारी का, उसके बाद कप्तान निगार सुल्तानी का विकेट और फिर बाद में रितु मोनी का विकेट। शानदार कमबैक,
3: बहुत ही बढ़िया कमबैक। और आई थिंक ये एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा बहुत बढ़िया रहता है और इसी वजह से शायद जो भारतीय थिंक टैंक है उन्होंने ये सोचा होगा कि आप एक उस खिलाड़ी को जिसका कॉन्फिडेंस एक अपोजिशन के खिलाफ बढ़िया रहता है उनको आप ये मौका दें। लेकिन एक और चीज़ की फिर से यहाँ पर पुष्टि हुई है कि एक स्पिनर को खिलाया गया इस मैच में, जो इस टूर्नामेंट में उनका पहला मैच है, वो आके अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आप बॉलिंग कार्ड की तरफ नज़र डालेंगे तो दो मीडियम पेसर्स आपके आपको वहाँ दिखेंगे जिन्होंने अपने चार ओवर पूरे नहीं किए, तो जो चिंता का सबब आपके लिए बना हुआ है आज, वो प्रेशर जो आप हम बात कर रहे हैं वो पहले 6 ओवरों में बहुत बढ़िया बैटर्स ने जो थे बांग्लादेश के उन्होंने भारतीय टीम के ऊपर डाला। मुझे लगता है कि अगर आप मैच शुरू होने से पहले उन्हें इतने रन देते तो शायद वो ले लेते, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी थी जहां पर वो ये डिसअपॉइंटेड होंगे कि उन्होंने 150 का आंकड़ा पार नहीं किया।
1: और इसी चीज की हम चर्चा पहले प्रोग्राम में भी कर रहे थे। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 16 खिलाड़ियों का इस्तेमाल भारतीय टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में कर चुकी है। 15 का स्क्वाड होता है, श्रेयंका पाटिल चोट के चलते बाहर हो गई, 16 खिलाड़ियों का प्रयोग भारतीय टीम कर चुकी है। और शशांक, हमने देखा कि कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसने अपने 15 के 15 खिलाड़ी अभी तक इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल किए हों। कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि शायद अभी भी हम खोज कर रहे हैं उस परफेक्ट कॉम्बिनेशन की।
4: डेफिनेटली बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इससे ये भी पता चलता है कि प्रिपरेशन के लेवल पे कुछ कमियां रह गई थी, सेलेक्शन और प्रिपरेशन और एक वेल इंटीग्रेटेड विजन के साथ इस टूर्नामेंट में हम शायद नहीं आ पाए, या पहले मैचेस में खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो था उम्मीद से नीचे रह गया। तो ये तय बात है कि आप इतने सारे खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, फिर वापस ला रहे हैं, मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, तो एक तो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी घटता है, दूसरा कि वो एक जो 11 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन होता है जो सब एक साथ टीम में मैदान में उतरती हैं और फिर खेलती हैं, वो भी कई बार

0: वो ब्रेक होता है। तो कुल मिलाकर के ये कहीं से भी आदर्श स्थिति नहीं है और चैंपियन टीम्स इस तरह से तो डेफिनेटली नहीं उतरती हैं मैदान में।
1: जी चेतन, आपने बात करी क्योंकि ड्रॉप कैचेस हमारी फील्डिंग की, लेकिन तारीफ करनी होगी

0: की तरफ से रन्स बने हैं। देखिए हर समय कहते हैं कि अगर ऊपर से अगर आपको रन ना मिले, जैसे पहली विकेट 8 रन पर गिर गई थी, उसके बाद आपको एक स्टेबिलिटी की जरूरत थी, साझेदारियों की जरूरत थी। साझेदारियों को आप बुनेंगे तभी आप मैच में आगे जा पाएंगे। और आप बांग्लादेश की बैटिंग देखें, नंबर 2, 3, 4 सबने आके रन बनाए हैं, बेशक 33, 22, 32। तो अगर आप उस स्थिति में टीम को लाकर खड़ा कर देते हैं, जैसे विजय ने भी कहा कि 15 रन 14 और 15 रन, 150 साइकोलॉजिकल आपके मतलब जहन में चीज चलती रहती है कि 150 का टारगेट है, बट 137 जो चेज करना है वो भी चीज़ें इतनी आसान होगी नहीं। देखिए बनाना पड़ेगा, उन्होंने रन्स ऑन बोर्ड लगा दिए हैं, आपको करने पड़ेंगे। और चेज हर समय प्रेशर में चीज़ें आसान नहीं होती, तो लेट्स होप एक अच्छी साझेदारी ऊपर से पन पे अगर आप एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे मिडिल ऑर्डर के लिए, यू विल डेफिनेटली विन दिस गेम।
1: मैं एक बार ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपने बांग्लादेशी कप्तान के बारे में बात करी, कुछ लोग कप्तान होते हैं और कुछ लोग नायक होते हैं, ये उनमें से हैं। इनकी तरफ अगर आप देखेंगे तो इनका रोल सिर्फ वही नहीं है जो फील्ड में नज़र आता है, इनका रोल फील्ड के बाहर भी है। कुछ ऐसे खिलाड़ी रहते हैं जो आप जिनको आप आदर्श मानकर वो इंस्पायर करते हैं। तो अगर बांग्लादेश वुमेन क्रिकेट के बारे में आप बात करेंगे तो ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी यंग लड़कियों को वहाँ पर इंस्पायर किया है इस गेम को खेलने के लिए। तो इनका जो कद है वो और ज़्यादा बड़ा है उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर, और वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर भी जब आप बात करते हैं कुछ नायकों की तो इनका वहाँ जिक्र होता है। ये उस तरीके की खिलाड़ी हैं
2: जी। नायकों पर हम फिर से आएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अपना सवाल पूछे।
3: जी तो भारत ने कैच ड्रॉप किए, लगातार ये चर्चा का विषय है। और शशांक आपकी तरफ आऊंगा मैं, पहले 6 ओवर में हमने देखा 4 कैच ड्रॉप हुए, पाकिस्तान के खिलाफ भी 3 कैच ड्रॉप हुए थे। कैसे देखते हैं आप इसको, और ऐसे में फील्डिंग कोच की भूमिका को कैसे देखते हैं?
4: ये बड़ा दिस इज रियली ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि एक भारत की टीम डेफिनेटली 3-4 जो बड़ी टीम्स हैं महिला क्रिकेट में वर्ल्ड में, उनमें से एक टीम है, इस प्रकार की फील्डिंग का प्रदर्शन जो है, मुझे लगता है कि पहले भी कैचेस छूटते हैं मैचेस में और मिस फील्डिंग्स होती है, लेकिन कंसिस्टेंटली इतना ज़्यादा ख़राब प्रदर्शन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी राधा यादव जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स हैं उन्होंने 2 कैच छोड़े थे और आज भी उन्होंने एक आसान सा कैच छोड़ा, तो और बहुत सारी मिस फील्डिंग्स हुई। तो इससे ये क्यों हो रहा है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगता ही है फील्डिंग कोच पे, लेकिन इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, बड़े मैचेस का इनको अनुभव है, तो ये और ये एक ऐसी टीम से खेल रही हैं जहाँ पे इनके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं है, दे आर बिग फेवरेट्स टू विन दिस मैच, और बांग्लादेश को 23 में 20 मैचेस में हराया हुआ है इंडिया ने इसके पहले। तो इससे मुझे लगता है कि एक जिसको डिस्पिरिटेड टीम बोलते हैं ना, डिस्पिरिटेड और ये हारी हुई टीम, जैसे कि इनको लगता है कि अब ये टूर्नामेंट में इनका कोई भविष्य नहीं है, और जो फील्डिंग प्रदर्शन है इस मैच में उनकी बैटिंग पे शायद असर पड़ सकता है, और ये 137 रन जो हैं वो उतने आसान नहीं होंगे। और यही अगर ऐसा ही प्रदर्शन भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहा तब तो कोई मतलब क्या कहें, आप समझ सकते हैं जो सबसे अच्छी टीम है।
3: जी तो अपने श्रोताओं को बता दें कि बांग्लादेश के द्वारा बनाया गया भारतीय टीम के खिलाफ ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है टी20 आईज में, तो 137 की चुनौती है। कुछ पॉजिटिव्स भी हैं डिस्कस करने लायक, विजय फटाफट उन पर नजर डालेंगे। श्री चरणी ने आज एक बार फिर इंप्रेस किया, फिर 2 विकेटें ली है, और इसी के साथ टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाली वो खिलाड़ी बन गई हैं।
1: पहला वर्ल्ड कप खेल रही हैं अपने, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप है उनकी तरफ अगर नजर डालेंगे तो वो कौन से ओवर डालती हैं, सबसे मुश्किल ओवर आपको डालती हुई नजर आती हैं, पहले 6 ओवर में डालती हैं, और उसके बाद बहुत कम है वर्ल्ड क्रिकेट में आप देखें कि आखिरी ओवर में टी20 क्रिकेट के अंदर आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी करते हुए दिखे, और वो भी एक ऐसी खिलाड़ी

0: जो अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आई है, नंबर वन बॉलर हैं समय T20 क्रिकेट में, जहां तक वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में बात करें, ये सिर्फ स्किल के बारे में नहीं बताता है, ये इस यंगस्टर के माइंडसेट के बारे में भी बताता है कि वो मानसिक रूप से भी कितनी मजबूत है।
1: जी चेतन, अभी बात की विजय ने नायकों की, जैसे आज निगार सुल्ताना की परफॉर्मेंस रही है, और पिछले कुछ मैचेस में हम और खिलाड़ियों को देख चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए मारिजान काप ने वो काम किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिस पेरी ने वो काम किया पाकिस्तान के विरुद्ध अपने मैच में। अगर हम बात करें भारतीय टीम की, तो भारत के सबसे अनुभवी प्लेयर हरमनप्रीत कौर, 201वां T20 उनका ये होगा, उनको स्टार्ट हर बार मिल रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं, एंड शी इज नॉट प्लेइंग हर नेचुरल गेम, एक शेल में दिख रही हैं।
2: देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कोशिश करते हैं, वो कोशिशें आपकी कामयाब होती नहीं है। हरमनप्रीत मतलब 200, अभी आपने भी कहा 201 का इंटरनेशनल गेम्स खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, वर्ल्ड कप का प्रेशर है, और ये एक प्लेयर आपको मैचेस जिता नहीं पाएगा, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं ला पाएगा। देखिए, इट हैज़ टू बी ए कलेक्टिव एफर्ट। स्मृति की आप बात करें, शिफाली की बात करें, जमीमा की बात करें, दे हैव टू कम कलेक्टिव। देखिए, बहुत भरोसा है, मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि ऊपर के क्रम के बल्लेबाज जब तक एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे ना, आप मैचेस नहीं जीत पाएंगे। आज भी ये अप्लाई करता है भारतीय टीम को, आप जाइए ऊपर से रन्स बनाइए, शिफाली और स्मृति की जैसे हम बात करते हैं, ऊपर से अच्छा स्टार्ट दें, देन ऑटोमेटिकली आपके पास जमीमा है, उसके बाद आप।
3: श्रोताओं, क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे समाचारों के बाद रात 9:30 बजे से। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ, 8:45 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर ₹2,500 किया, तत्काल पासपोर्ट का शुल्क ₹6,000 होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया, और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
5: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
6: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
5: And together becoming a force multiplier.
4: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
5: Partnership with UK is taking many more dimensions.
6: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है।

0: हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
1: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा की देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
5: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
6: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani, and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. India-UK free trade agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hike to 2,500 rupees from 1st of July. Tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from July 15. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
8: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
7: Venezuela's acting president, Delcy Rodriguez, today said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes rocked the country. The acting president had said earlier that at least 32 people had died after last night's 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes and that the toll was expected to rise. The quakes were among the strongest to strike Venezuela in more than a century and could be felt throughout the region. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the president of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed by India in the aftermath of the earthquakes, saying it is in keeping with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed the remarks by Prime Minister Narendra Modi, who expressed his condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the severe consequences of the earthquakes. Government has hiked the fees for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passports Amendment Rules 2026 will come into force with effect from 1st of July. In a notification, the Minister of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. The existing fee for a 36-page passport is 1,500 rupees and for a 60-page passport is 2,000 rupees. In case of an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 36 pages, a sum of 5,000 rupees will be charged. For an ordinary passport, in lieu of lost or damaged passport containing 60 pages, the cost will be 6,000 rupees. India today hosted the 11th BRICS Energy Ministers meeting in Gurugram, Haryana, under its BRICS Chairship 2026. The Ministry of Power said that the meeting brought together energy ministers, vice ministers and senior officials from BRICS member countries to discuss key global energy challenges and strengthen cooperation in the energy sector. It added that the meeting concluded with the adoption of the 11th BRICS Energy Ministers Joint Communique, reaffirming cooperation in energy security, sustainability, innovation, resilient infrastructure and capacity building. Addressing the meeting, Union Minister of Power Manohar Lal said, energy remains fundamental to economic growth, social progress and human development. He emphasized that developing countries need adequate time, resources and policy space to pursue sustainable development while meeting the aspirations of their people.
9: Energy remains fundamental to economic growth, social progress and human development. Affordable, reliable and sustainable energy is indispensable for achieving our developmental aspirations and the sustainable development goals. India assumes the BRICS chairship at a time when the global energy landscape is undergoing a profound transformation.
7: Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today met Minister of Petroleum of Iran, Mohsin Pakhmijat, on the sidelines of BRICS Energy Ministers meeting in Gurugram, Haryana today. In a social media post, Mr. Puri said that during the meeting, both leaders explored opportunities to cooperate in the energy sector. He noted that India remains committed to enhancing energy security through dialogue, partnership and mutually beneficial engagement. Uttar Pradesh government has taken action in the alleged Ram Temple donation anomaly case in Ayodhya and arrested three persons. ADG Lucknow Zone Praveen Kumar told Akashwani News that three persons have been arrested. He said that an FIR has been registered at Ayodhya police station on the complaint of Krishna Mohan, a member of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. The case has been registered under sections 306, 306.5 and 317.4 of the Bharatiya Nyaya Samhita BNS. A total of 8 people have been named as accused in the FIR, though no major or prominent name has been included. 6 of the accused are reportedly cashiers. The action comes after the special investigation team submitted its investigation report. The probe was related to alleged irregularities in the handling of donations received for the Ram Temple. Railway Minister Ashwini Vaishnav held a review meeting today.

0: 0.3 overs when reports last came in. Earlier, Bangladesh won the toss and opted to bat first. While batting, Bangladesh scored 136 runs with a loss of 8 wickets in the stipulated 20 overs. In the FIFA World Cup, Curaçao will take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia in US today, late night. The match is scheduled to begin at 1:30 a.m. IST. In another Group E fixture, Ecuador will face Germany at East Rutherford in U.S. The match will begin at 1:30 a.m. IST. Later, Japan will take on Sweden in Group F match in Arlington, U.S. tomorrow early morning. The IMD has said that the conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into parts of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 3 to 4 days. The IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Southern Himalayan, West Bengal and Sikkim for the next 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-UK Free Trade Agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hike to 2,500 rupees on 1st of July, Tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals on 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया आजाद तिजारती मुआहदा अब तक का सबसे जामे मुआहदा है। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 164 हो गई है। वजीर आजम मोदी ने ताजियत का इजहार करते हुए बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में ताउन की पेशकश की है। राम मंदिर अतियात में खुर्द बुर्द के मामले में उत्तर प्रदेश SIT की इब्तदाई रिपोर्ट की सिफारिश के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। यकुम जुलाई से 36 सफात वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। इसी तरह तत्काल फीस अब 5,000 रुपये होगी। भारत 28 जून से बांग्लादेश के शहरियों के लिए सियाहती वीजा जारी करने का अमल दोबारा शुरू करेगा। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के एक मैच में कुराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी व तिजारती मुआहदा CETA आलमी मईशत को तकवियत देने में अहम रोल अदा करेगा। आज लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम IGF UK इंडिया वीक से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानिया के साथ आजाद तिजारती मुआहदा FTA भारत की जानिब से अब तक किए गए मुआहदों में सबसे जामे मुआहदा है। जनाब पीयूष गोयल 15 जुलाई से भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी व तिजारती समझौते के निफाज के लिए दोनों मुल्कों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 3 रोजा दौरे पर बरतानिया पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों मुल्कों को आलमी वैल्यू चेन से मजीद जोड़ेगा और इक्तिसादी ताउन और तरक्की के नए मौके फराहम करेगा। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक दिफा, अहम मादियात और दिगर कलीदी शोबों में ताउन को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और बरतानिया दहशतगर्दी के खात्मे और आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग की खातिर मुश्तरक अज़्म रखते हैं। वजीर आजम मोदी ने आज भारत में अमेजन की 48 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सरमायाकारी का खैर मकदम किया है। वजीर आजम ने नई दिल्ली में अमेजन के CEO एंडी जैसी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि सरमायाकारी नौजवानों के लिए नए मौके फराहम करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया भर में भारत में सरमायाकारी के लिए बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कास है। मीडिया से बात करते हुए एनडी जैसी ने कहा कि वो वजीर आजम मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से काफी मुतासिर हैं। उन्होंने भारत की तरक्की के सफर में एक तवील मुद्दती साझेदार बनने का अजम जाहिर किया। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेलसी रॉड्रिग्ज ने आज कहा कि मुल्क में आने वाले दो ताकतवर जलजले में 164 अफराद हलाक और 971 जख्मी हो गए हैं। इससे कबल उन्होंने कहा था कि कल रात 7.2 और 7.5 शिद्दत के जलजले के बाद कम से कम 32 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई थी, ताहम हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा था। ये जलजले गुज़श्ता एक सदी में वेनेजुएला में आने वाले सबसे ताकतवर जलजलों में शुमार होता है, जिसके झटके पूरे खित्ते में महसूस किए गए। कई इमारतों को खाली करा लिया गया, जबकि जलजले के असरात ब्राजील के अमेजोन इलाके में महसूस किए गए, जो वेनेजुएला की राजधानी काराकास से तकरीबन 1700 किलोमीटर दूर है। इस दौरान वेनेजुएला की सदर ने जलजले के बाद भारत की जानिब से इजहार यकजहती की सदाइश करते हुए कहा कि यह मुश्किल वक्त में दोनों मुल्कों के आवाम के दरमियान तआवुन और दोस्ती के जज्बे की अक्कासी करता है। उन्होंने वजीर आजम मोदी के ताजियती पैगाम और इमदादी सरगर्मियों में तआवुन की पेशकश का भी खैर मकदम किया। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि दुनिया ज्यादा बड़े पैमाने पर हथियारों की तैयारी और जखीरा अंदोजी ज्यादा खतरात मोल लेने और सोशल मीडिया के दौर की मुनासबत से की जाने वाली सियासत का मुशाहदा कर रही है। जनूबी कोरिया में अमन और खुशहाली के लिए जेजू फोरम 2026 से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इख्तलाफात पर जोर देने के रुझान में इजाफा हुआ है, और उन्होंने मजीद कहा कि टेक्नोलॉजी की तरक्की से अपने आप में ऐसी इम्तियाजी खसूसियात की हौसला अफजाई होती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि COVID-19 दहशतगर्दाना वाकयात या इंतहाई मौसमियाती वाकयात जैसे चैलेंजों से निपटने की गरज से बैन अल-अक़वामी तआवुन और इश्तराक की जरूरत है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अयोध्या में राम मंदिर अतियात में मुबैना खुदबूज से मुतालिक केस के सिलसिले में कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। लखनऊ जोन के डीजी परवीन कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि तीन अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक रुकन कृष्ण मोहन की जानिब से एक शिकायत दर्ज कराने के बाद एक FIR दर्ज की गई है। FIR में कुल 8 अफराद को नामजद किया गया है, हालांकि इनमें कोई बड़ा या नुमाया नाम शामिल नहीं है। 6 मुल्जिम मुबैना तौर पर कैशियर बताए जाते हैं। ये कार्रवाई एक खसूसी तहकीकती टीम SIT की जानिब से अपनी रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद की गई है। ये छानबीन राम मंदिर को मिले अतियात के मामले में मुबैना बेजाबतगियों से मुतालिक है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज हरियाणा के शहर गुरुग्राम में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की मीटिंग के मौके पर ईरान के पेट्रोलियम के वजीर मोहसिन पाकनेजाद से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब पुरी ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने तवानाई के शोबे में तआवुन के लिए मौके के बारे में गौर खोज किया। उन्होंने मजीद कहा कि भारत मुजाकरात साझेदारी और बाहमी तौर पर मुफीद रवाबित के जरिए तवानाई की यकीनी फराहमी में इजाफे के लिए अहदबंद है। भारत ने आज ब्रिक्स 2026 की अपनी सदारत के तहत हरियाणा के शहर गुरुग्राम में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग की मेजबानी की। बिजली की वजारत ने कहा है कि इस मीटिंग में ब्रिक्स रुकन मुल्कों के तवानाई के वजरा, नायब वजरा और सरकर्दा ओहदेदारों ने एक जगह जमा होकर तवानाई से मुतालिक कलीदी आलमी चैलेंजों और तवानाई के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के बारे में तबादला ख्याल किया। वजारत ने यह भी बताया कि मीटिंग में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की 11वें मुश्तरका एलामिये को मंजूरी दी गई, जिसमें तवानाई की यकीनी फराहमी, पायदारियत, इख्तरा, इस्तेहकाम, बुनियादी ढांचा और सलाह साजी से मुतालिक शोबों में तआवुन की तौसीख की गई। मीटिंग से खिताब करते हुए बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने कहा कि तवानाई इक्तिसादी नमू, समाजी तरक्की और इंसानी नशोनुमा के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने पासपोर्ट के लिए दरखास्त फीस में इजाफा कर दिया है। अब 36 सफात पर मुश्तमिल नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस 2500 रुपये होगी। पासपोर्ट तरमीमी जवाबी 2026 का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वजारत खारजा के मुताबिक नई फीस के तहत तत्काल स्कीम के तहत नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद के लिए 5000 रुपये वसूल किए जाएंगे। 60 صفحات پر مشتمل عام پاسپورٹ یا اس کی تجدید کی فیس 3,500 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ تتکال کے تحت اس کی فیس 6,000 روپے ہوگی۔

0: कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और शिमाल मशरकी रियासतों में कल मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप में आज देर रात अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के एक मैच में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। ग्रुप ई के एक दीगर मैच में अमेरिका में ईस्ट रूदरफोर्ड के मकाम पर जर्मनी और इक्वाडोर आमने सामने होंगे। ये दोनों मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 1:30 बजे शुरू होंगे। बाद में कल सुबह सवेरे अमेरिका के शहर आर्लिंगटन में ग्रुप एफ के एक मैच में जापान का मुकाबला स्वीडन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक कल सुबह सवेरे 4:30 पर शुरू होगा। इससे पहले आज सुबह मॉन्टेरेरी के मकाम पर जनूबी अफ्रीका ने जनूबी कोरिया पर 1-0 से जीत दर्ज की। मर्दों के क्रिकेट में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन अपनी पहली इनिंग्स में 4 विकेट के नुकसान पर 333 रन बना लिए हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया आजाद तजारती मुआहदा अब तक का सबसे जामे मुआहदा है। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 164 हो गई है। वजीर आजम मोदी ने ताजियत के इजहार करते हुए बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में ताउन की पेशकश की है। राम मंदिर अतियात में खुर्दबुर्द के मामले में उत्तर प्रदेश SIT की इब्तदाई रिपोर्ट की सिफारिश के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। 1 जुलाई से 36 सफात वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। इसी तरह तत्काल फीस अब 5,000 रुपये होगी। भारत 28 जून से बांग्लादेश के शहरियों के लिए सियाहती वीजा जारी करने का अमल दोबारा शुरू करेगा। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। महिला T20 क्रिकेट मैच में आगे के खेल का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए दिल्ली चलें।
2: पर गेंद को उन्होंने खेला, बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर गेंद चकराकर विकेट कीपर के पास गई और फिर क्रीज से बहुत ज्यादा बाहर पकड़ी गई। शेफाली वर्मा अपने सिर को उन्होंने फूका क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा लगा कि अपना विकेट इस मौके पर गंवाया है।
3: So it has officially gone down as a stumping. So Nahida Akhtar, because she's come on this late, it begs the question, what was it doing or what were they doing by not bringing her on earlier? It is something that we were discussing on commentary on repetitive occasions, and that's what's proved to be the downfall of India's top scorer thus far. Nonetheless, she's done the job and she's put India, one would think, on the road to victory. But as we were discussing, Dharmendra, at the drinks break, that strange things happen in cricket. Whoever comes next must try and carry on that momentum. They cannot let Bangladesh suddenly come back and get a foothold in this match.
2: जी हाँ, दो सलामी बल्लेबाजों का विकेट लेने के बाद तो निश्चित रूप से थोड़ा सा उनका मनोबल वापस लौटा होगा। अगली गेंद और इस गेंद पर कोई भी रन नहीं।
3: And interesting, it's Richa Ghosh who's come in at number 4. So India looking to up the ante and perhaps just try and finish this match in a hurry. So maybe that net run rate is also something that the Indians have kept in mind. But beautiful ball, the very first ball from Nahida. And Richa just showing the same thing to Yastika, that the ball was tossed up again, flighted outside off stump, beats the outside edge. Beautiful first over, 1 wicket and 3 singles of it. 9 overs bowled, India 76 for 2.
2: भारत को यहां से अभी भी 66 गेंदों में 61 रन चाहिए, 8 विकेट सुरक्षित हैं और पिछले ओवर में बहुत ही बेशकीमती विकेट भारत ने गंवाया है। आउट होने वाली बल्लेबाज शेफाली वर्मा, जिन्होंने अर्धशतक जरूर बनाया, 34 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुई और 76 जब भारत का स्कोर था तब भारत ने वो दूसरा विकेट गंवाया और अच्छा खासा ओवर समाप्त हुआ नाहिदा अख्तर का, जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च किए और शेफाली वर्मा जैसा महत्वपूर्ण विकेट लेने में कामयाब रही हैं। रन रेट भी थोड़ा सा भारत का नीचे आया है विकेट गंवाने के बाद। यस्तिका भाटिया और ऋचा घोष की जोड़ी मैदान पर है। ऋचा घोष को, जैसा देवायन ने बताया, कि संभवतः इसी सोच के साथ मैदान पर भेजा गया है कि भारत जल्दी से जल्दी इस मुकाबले को समाप्त करना चाहता है ताकि नेट रन रेट और बेहतर हो सके। भारत का नेट रन रेट के मामले में अभी भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया के बाद। दक्षिण अफ्रीका उससे नीचे 3rd स्थान पर है। इसी वजह से अंक तालिका में अंक बराबर होने के बाद भी जो है वो भारतीय टीम आगे है।
3: One more catch drop because this was played straight back at Rabia but just not able to hold on. Yastika Bhatia living dangerously.

0: जी हाँ, एक और मौका भारत के विकेट का था, बांग्लादेश की गेंदबाज राबिया के पास फॉलो थ्रू में एक आसान सा मौका आया था। यास्तिका ने सीधे सामने की तरफ सीधे बल्ले से खेला था, आसान सा कैच हो सकता था, लेकिन ये मौका हाथ से जाता हुआ। दो कैचेस तो अभी तक बांग्लादेश ने भी कम से कम टपकाए। इस बार इस गेंद को पैडल स्वीप कर दिया है विकेट के पीछे की तरफ और ये 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: बिल्कुल आसान सी ये गेंद थी यास्तिका के लिए, दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी, बढ़िया ओवर की शुरुआत की थी, फॉलो थ्रू में एक मौका आया था और इस बार लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर गेंद। आसानी से इस गेंद को देखा, छोटी गेंद भी थी और पूरा फायदा उठाया, खेल दिया इस गेंद को 4 रन के लिए। इस चौके के साथ अब भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 80 दो विकेट के नुकसान पर। दो विकेट भारत ने दोनों सलामी बल्लेबाजों के गंवाए हैं, पहले स्मृति मानधना का विकेट गंवाया और उसके बाद शेफाली वर्मा आउट होने वाली बल्लेबाज थी। ऋचा घोष ने अभी तक कोई रन नहीं बनाया है, दो गेंदों का सामना किया जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा वो समय दूर नहीं है जब उनके बल्ले से बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिल सकते हैं। 57 रन अब चाहिए भारत को, 64 गेंदों का सामना करना है। 10वां ओवर चल रहा है भारतीय पारी का। अगली गेंद इस बार कट किया इस गेंद को और तेज गति से गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, पीछे भाग रही है तो फील्डर क्या रोक पाएंगी, गेंद की रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई है और डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका गया है। 2 रन और फिर क्या ये 3 रन के लिए पलटेंगी। जी हाँ, 3 रन भी पूरा कर लिया आसानी के साथ, 1 रन जरूर इस मौके पर बचाया फील्डर ने। 3 रन और आता हुआ यास्तिका के बल्ले से, 83 हो गया भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। यास्तिका भाटिया पहुंच गई 15 गेंदों में 21 रन पर, उनकी पारी में अभी तक 3 चौके आए हैं। आज फील्डिंग दोनों ही तरफ से उतनी अच्छी हुई नहीं है, भारत को भी सोचना होगा अपनी फील्डिंग पर ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण मैच से पहले, क्योंकि उस मैच में एक भी मौका गंवाना यानी पूरे मैच का परिणाम बदलने के समान हो सकता है। अगली गेंद इस ओवर की 4थी गेंद और इस गेंद को इस बार खेला है पॉइंट की तरफ, डाइव लगाकर रोकने का प्रयास और गेंद को रोक लिया गया, रन इस मौके पर कोई भी नहीं बनेगा। इस ओवर में अभी तक 7 रन आए हैं, 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदें अभी भी राबिया की बची हुई हैं। ऋचा घोष स्ट्राइक पर हैं, 3 गेंदें खेल चुकी हैं, ऋचा के बल्ले से अभी तक कोई रन नहीं आया है। यास्तिका दूसरे छोर से वो काम कर रही हैं जिस भूमिका के लिए ऋचा को मैदान पर बुलाया गया है। 15 गेंदों में 21 रन बनाए हैं यास्तिका ने, रिक्वायर्ड रन रेट भारत के लिए 5.22 का और वर्तमान रन रेट 8.58 का। अंतिम गेंद इस ओवर की और इसको खेला है ऑन साइड में 1 रन के लिए और फिर दूसरे रन के लिए पलटने का प्रयास, लेकिन दूसरा रन यहां पर है नहीं। इसके साथ ही 1 रन और जुड़ता हुआ भारत के खाते में, बढ़ता हुआ स्कोर 84 2 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर इस ओवर में अभी तक 8 रन, जिस गति से भारत रन बनाता चला जा रहा है उसको अभी तक लगातार कायम रखने में कामयाबी। इस बार क्रीज से बाहर निकलकर खेलने का प्रयास, खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन और आता हुआ ओवर की समाप्ति। राबिया के इस ओवर में कुल मिलाकर 9 रन आए और भारत का स्कोर हो गया 10 ओवर के बाद 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
2: Much more comfortably placed than what Bangladesh were at this stage. 52 now required from 60. It does look like a mere formality, but they are still offering chances. And you never know, Bangladesh, if they can convert some of those, something could still give for them. But not a surprise to see Richa Ghosh in at number 4, because when she was 16 years of age, she made her T20I debut in February 2020 against Australia in Australia. And in her very first match, the Indian team management thought it fit to send her in at number 3. She played as a specialist batter in that match, only made 17, but showed signs of the kind of courage and the kind of ability that she had. And also came on as an impact sub, or rather a concussion sub, in fact, in that World T20 final that year. Naida Akhtar begins a fresh over, yet again driven straight back towards the bowler, wasn't very far away yet again from perhaps being a cotton bowled. But Nahida unable to stop it this time, and Yastika picks up a single from the ricochet as the ball goes away towards long on. Takes the Indian score along to 86 for 2. Yastika Bhatia with an impressive 23 from 17. But this is the phase where it can get a little ropey for her sometimes in these middle overs when the field gets spread and she doesn't get those boundaries to her will. Next ball just outside off stump. They are also doing a good job of keeping Richa Ghosh quiet, not offering her any pace to work with, because they know that much like Shefali Verma, her fellow 22-year-old, Richa Ghosh also loves feeding off that.

0: way that Deep Point was catching up with it. Nahida Akhtar was a little unhappy, but she really should be more unhappy about the fact that she was offering width to Richa Ghosh. So that boundary takes India along to 90 for the loss of that those two wickets. The two openers dismissed, Smriti Mandana for 8, and Shefali Verma, after scoring a fantastic 53 from 34 runs, her second half century of this ICC World T20 2026. Outside of some cutaway yet again, finds the gap, threads the needle, 4 more. And now that Richa Ghosh, Dharmendra, has come to terms with the pace of this wicket, she's figuring out what Nahida is doing and responding accordingly, playing it very late.
1: बस वक्त की ही तो बात थी, इस बात का पूर्वानुमान था कि जैसे उनको मौका मिलेगा वो मौका गंवाएंगी नहीं, और लगातार दो चौके इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अब उन्होंने पिच के मिजाज को भांप लिया है और इस तरह के स्ट्रोक्स उनके बल्ले से आते रहेंगे.
0: Just 43 runs required now as India move along to 94 for 2, and from 1, from 5 balls, she's on 9 from 7. The next ball looks for the sweep. It's a big LBW appeal. It's been given. India immediately review. It did look interesting, but well, it might stay umpire's call. That is the only concern. Otherwise, it seemed like it straightened, but may have been just about impacting somewhere around off stump, if not outside. What do you think, Dharmendra? That was close.
1: जी, बहुत नजदीकी ये मामला है, और चूंकि अंपायर का इशारा आया है बांग्लादेश के पक्ष में, तो ये थोड़ी सी परेशानी की बात हो सकती है. बल्ले का किनारा क्या लिया है इस गेंद ने, ये भी देखना होगा. बहुत करीब, बहुत नजदीक से बल्ले के गई है गेंद, और ऑफ स्टंप के बाहर भी ऐसा लग रहा है एक बार की ये गेंद जा रही थी. ऊंचाई भी थी इस गेंद में, तो अभी तीसरे अंपायर के फैसले का इंतजार करना होगा.
0: Yeah, definitely not taking any of the bat. In fact, the bat moving quite quickly and beaten by the pace of that, lack of pace. Richa Ghosh was completely committed to that sweep shot. But the question is, where is that impact? And is it actually going on to hit the stumps? The one factor in her favor, as we mentioned before, is that it has already been given out. So if it even as much as just glances a little bit of the off stump, then that will remain out. But there was a shuffle across. For the moment, it does look like the impact is outside off, so it would have gone on and missed the off stump in any case, perhaps. But yeah, impact outside off. India earn a reprieve, and Richa Ghosh given out. LBW at 9 is spared because of the timely review that she took.
1: जी हाँ, बहुत सही समय पर उन्होंने वक्त गंवाए बिना रिव्यू लिया और उनके पक्ष में गया ये रिव्यू, और इस तरह से जो भारत के ऊपर खतरा मंडरा रहा था वो टल चुका है.
0: Nahida Akhtar in her second over, second consecutive time that she has almost picked up a wicket, and again it begs the question, what was she doing coming in as the fifth bowler? So some strange decisions from Bangladesh, perhaps a little bit too defensive in their overall approach, especially while defending 137. Last ball played back towards the bowler, and she does a great job diving away to her right and making sure that there's no runs on offer. 11 overs bowled, 94 for 2 India.
1: तो ये ओवर काफ़ी कुछ घटनाओं भरा रहा. एक ऐसा मौका भी आया जब ऋचा घोष को अंपायर ने आउट करार दिया, उन्होंने रिव्यू लिया, और उस रिव्यू में ये साफ तौर पर सामने आया कि इम्पैक्ट जो था गेंद का वो ऑफ स्टंप के बाहर था, और ऋचा घोष बच गई. हालांकि अंपायर का फैसला बांग्लादेश के पक्ष में ज़रूर गया था, लेकिन इम्पैक्ट की वजह से ऋचा घोष मैदान पर अभी भी मौजूद हैं, और भारत का स्कोर 94 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 11 ओवर्स के बाद रन रेट अभी भी भारत का 8.54 का, रिक्वायर्ड रन रेट 5 से भी नीचे आता हुआ 4.77 का, और अंतिम जो 5 ओवर रहे हैं भारत के लिए उसमें 31 रन आए हैं, एक विकेट का नुकसान हुआ है, और वो विकेट था शेफाली वर्मा का. 2 विकेट पर 94 रन बनाए हैं. नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद, और इस गेंद को लॉक किया है सीधे फील्डर के हाथों में, ये गेंद जाकर समाई है. ये नुकसान भारत के लिए बहुत बड़ा. यस्तिका भाटिया का विकेट भारत ने इस मौके पर गंवाया है. क्रीज से बाहर निकलकर इस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास था. रितु मोनी ने चतुराई भांप ली थी बल्लेबाज की, गेंद की लंबाई को थोड़ा छोटा कर दिया, गेंद तक पहुंच नहीं पाई बल्लेबाज, और सीधे एक आसान सा कैच पकड़ा गया मिड ऑफ पर. इस तरह से भारत के लिए तीसरे विकेट का नुकसान 94 पर, और यस्तिका भाटिया इस समय मैदान से बाहर जा रही हैं. 18 गेंदों में 23 रन उन्होंने बनाए, 3 चौके लगाए, लेकिन भारत के लिए एक बढ़िया पारी खेल रही थी. उनके विकेट के पतन से निश्चित रूप से जो रनों की गति है उस पर

0: असर पड़ सकता है और भारत का जो लक्ष्य है इस समय कि न सिर्फ मैच को जीता जाए बल्कि रन रेट, नेट रन रेट जो है उसको और बेहतर किया जाए, उस पर थोड़ा सा विराम लग सकता है।
1: Absolutely, अनियास्तिका भाटिया अगेन जस्ट प्रॉमिसिंग अ लॉट बट डिलीवरिंग नॉट इनफ, 8 of 2 at one stage, so consequently she faced another 16 balls and she was only able to add 15 runs to that. And that sums up some of the issues that she has had in her career in T20 cricket. It brings in Jemima Rodrigues though, and I just think even though she's come in at number 5, she's probably best suited to bat at number 3. If you recall in the 50 over World Cup as well, India played its best cricket when Jemima Rodrigues came in at number 3.
0: और उसकी वजह शायद ये हो सकती है पीछे भेजने की कि इस टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म उतनी अच्छी रही नहीं है। इस बार गेंद को ड्राइव किया उन्होंने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, एक रन के लिए खाता खोला जेमिमा रॉड्रिग्स ने और इस एक रन से भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 95 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सफलता निश्चित रूप से बांग्लादेश की उम्मीदों को बढ़ा रही है, 3 विकेट उन्होंने लिया है। इस मैच में संभावनाएं उनके लिए तभी बनती हैं जब वो लगातार विकेट लेते रहें और आश्चर्यजनक कोई परिणाम उनके पक्ष में। एज गेंद को कट करने का प्रयास किया था रिचा ने, लेकिन गेंद बल्ले से काफ़ी ज़्यादा दूर थी, थोड़ी सी नीची भी रही और पूरी तरह से चकमा खा गई रिचा घोष। 10 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रही हैं, एक बार फिर से अंपायर से स्टांस ले रही हैं अपना और अब खेलने के लिए तैयार हो रही हैं। लेग स्टंप का स्टांस उन्होंने लिया है, जगह चाहती हैं ऑफ स्टंप के बाहर कि मिले उनको और कोई बड़ा स्ट्रोक वो लगा सकें। उनकी बल्लेबाजी की शैली भी यही है, बड़े स्ट्रोक्स लगाती हैं, तेजी से रन बनाती हैं और अब अगली गेंद का सामना करेंगी रितु मोनी की अगली गेंद। और इस बार इस गेंद को खेल दिया है ऑन साइड में मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 1 रन आसानी से, फील्डर पीछे मौजूद हैं। इस 1 रन से स्कोर अब भारत का हो गया है 96 3 विकेट के नुकसान पर, जो भारत ने 3 विकेट गंवाए। दोनों सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना, शेफाली वर्मा और अभी अभी यास्तिका भाटिया का विकेट भी भारत ने गंवाया। एक आसान सा कैच लपका गया था मिडॉन पर यास्तिका का। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को कट किया है खूबसूरत तरीके से, लेकिन पॉइंट पर मुस्तैद फील्डर डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका। निश्चित रूप से कुछ रन बचाने में कामयाबी मिली है इस बार। 96 अभी भी भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। भारतीय खेमा थोड़ा सा निश्चिंत क्योंकि उनको ये तो लग रहा है कि जीत तो उनके पाले में आने वाली है, लेकिन कितनी जल्दी आएगी इसकी भी एक संभावना भारतीय टीम तलाश रही है। अंतिम गेंद इस ओवर की, 49 गेंदों में भारत को चाहिए 41 रन। रितु मोनी की ये गेंद और इसको ऑन साइड में खेला है मिड विकेट पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई, 12वां ओवर समाप्त हुआ और स्कोर भारत का 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
1: 42 win from 8 overs, so exactly 5 runs per over required, but quiet overs will perhaps just put a little bit of pressure on the opposition. We saw that happen in the previous over where Rithu Moni gave just 3 runs and picked up that 1 wicket, and that kind of impact will help. If another bowler or two can deliver another couple of such overs, then we can suddenly see India staring at a situation where they need somewhere in the vicinity of 6 runs per over in the last 5 overs or so. But for the moment, they seem to have this chase well under control with 2 explosive batters out there in the middle, Richa Ghosh and Jemima Rodrigues, and still some batting firepower to come. They've got the skipper, Harmanpreet Kaur, they've got Deepti Sharma, and after that, it's basically the bowlers. So Bangladesh need wickets. Rabea has been a little inconsistent with her line and length. The leg spinner begins her 3rd over, and the very first ball outside off stump, punched away by Jemima towards sweeper cover, where Fahima Khatun is fielding as the substitute fielder. Rabea's 2nd over particularly was rather expensive, 9 runs of it, which began with a shot which was played by Yastika Bhatia behind the stumps, and from there on she gave another 3 to Yastika and then another couple of singles. But otherwise, it's been good tidy stuff. This time, looking for the sweep, this one will be given out, and this one I suspect will stay out. Although she has gone in for the review yet again, but this looked a lot closer, Dharmendra, because it kept a little low and after pitching it straightened as well.
0: Yeah, nishchit roop se is baar thodi si zyada mushkil hai Richa Ghosh ke liye. Sweep karne ka prayas kiya, gend ki line ko puri tarah se chuki, gend pad par takrai umpire ki ungliyan aasman ki taraf aur mushkilein thodi si is samay badhti hui Richa Ghosh ki, kyunki aisa lag raha hai ki gend lagbhag stumps ki line mein unke pad par takrai, ye niche bhi rahi hai gend. तो रिव्यू ज़रूर लिया है, लेकिन उसका कितना फ़ायदा मिलेगा ये इंतज़ार ज़रूर करना होगा। लेकिन

0: नजर में ऐसा लग रहा है कि ऋचा घोष मुश्किल में है.
1: Absolutely no contact with the bat whatsoever, so missing the sweep by a huge distance on both occasions, and it probably just should serve as a little note that in that match against Australia, the sweep is a shot which, unless she's absolutely sure, she should probably not pull out of her shelf, because she's got so much of power and ability to go straight down the ground as well. Just across the line is where she winds up in a little bit of trouble. And just judging by her body language as well, now that she's seen a replay, she doesn't seem to convince that she will escape this time. In fact, the wicket stays at umpire's call. So the height was perhaps the only factor. It wasn't a bad review in that sense. But Bangladesh have struck yet again. Richa Ghosh up at number 4, but it doesn't come off. She has to go back for 10. And it's an important wicket for Rabia Khan, because she's the leg spinner. And now that she has that wicket behind her, in a third over, maybe she'll bowl with a lot more confidence. India rocked at 98 for 4.
0: इस बार अगर अंपायर का फैसला ऋचा घोष के खिलाफ न गया होता तो शायद इस बार भी लकी वो साबित हो सकती थी. लेकिन चूंकि अंपायर ने फैसला आउट कर दिया था, गिल्लियों पर गेंद टकरा रही थी और तीसरे अंपायर ने आउट करार दिया. इस तरह से भारत को लगने वाला ये एक और नुकसान और चौथा विकेट गवाया है भारत ने इस मौके पर. ऋचा घोष का विकेट बहुत महत्वपूर्ण विकेट भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत के दिमाग में, भारतीय खेमे के दिमाग में जो जल्दी से जल्दी मैच को जीतने की एक रणनीति थी, उस पर काफी कुछ असर पड़ा है इस विकेट के गंवाने के बाद.
1: हरमनप्रीत कौर द स्किपर कम्स इन एंड इमीडिएटली निगर सुल्ताना ज्योति हैज अ स्लिप इन प्लेस बिकॉज शी डज लव प्लेइंग दोस लैप शॉट्स, दोस स्कूप शॉट्स एज वेल. Rabia with the very first ball right on the money, just about at middle and leg, and she taps it away on the onside, picks up a quick single. This will do Harmanpreet's cause a world of good as well, just getting off the mark immediately, because this can suddenly become a pressure situation. Just the way that Richa Ghosh wicket fell, India at that stage were coasting along not long ago. They were 94 for 2, but suddenly inside 4 runs they have lost 2 wickets and now stare at 99 for 4. And perhaps the last recognized pair. There are all-rounders after this, the likes of Deepthi Sharma, as well as a couple of the bowlers who can bat quite usefully, but you don't want them coming in with too many balls left or too many runs left to get. Next ball outside off stump, Jemima drives it through towards long off, picks up a single and brings up the Indian 100. 12.4 overs. The first 50 had come very quickly. That had come off just about 28 balls. But the next one has taken a slightly longer route to get there. 100 for 4, 37 required now of 44. What Bangladesh wouldn't give for something like 15 or 20 runs more in the bag right now, but that hasn't happened. And that's why they have to work with the target that they have set, India. 137 today in this crucial Group 1 encounter of this 2026 T20 World Cup. Rabia comes in once again outside off stump. Harmanpreet goes for the cut and just about eludes the under edge. Well, there's always been a spicy rivalry between her and the Bangladesh skipper, Nigar Sultana Jyoti. And surely, Jyoti will be making herself as audible as possible. Just indicating to the bowler that she wants her to attack the stumps. This time it's on the stumps, but it's driven down the ground. Harmanpreet retains strike with a single. She moves along to 2. And after 13 overs, India are at 101 for 4.
0: So, 13 overs ke baad, Bharat ne bana liye hain 101 run. 4 विकेट के नुकसान पर कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर आई हैं जेमिमा रॉड्रिग्स का साथ निभाने के लिए. जेमिमा रॉड्रिग्स ने 5 गेंदों में 4 रन बनाए हैं और हरमनप्रीत ने 3 गेंदों में 2 रन बनाए हैं. मान्यता प्राप्त भारतीय बल्लेबाजों की अंतिम साझेदारी, इसके बाद दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी के लिए ज़रूर आएंगी. वो भी बहुत अच्छे रन बनाती हैं, अच्छी बल्लेबाज मानी जाती हैं. बहुत मौकों पर उन्होंने भारत के लिए अहम पारियां खेली हैं. राधा यादव भी भारत की बल्लेबाजी में एक अहम नाम है. उन्होंने भी, आपको याद होगा कि जो पिछला विश्व कप खेला गया था उसमें कई भारत को मैच जिताने वाली पारियां खेली थी. फिलहाल स्ट्राइक पर हरमनप्रीत कौर, 42 गेंदों में 36 रन की आवश्यकता भारत को इस मुकाबले को जीत कर 2 अंक अर्जित करने के लिए. और इस नए ओवर की पहली गेंद जिसको कट किया, लेकिन पॉइंट पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग के बावजूद एक रन जरूर लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज. और इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 102 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर की शुरुआत हुई है. बांग्लादेश को अपना अंतिम मैच लॉर्ड्स में खेलना है दक्षिण अफ्रीका.

0: अमेरिका के खिलाफ 28 जून को और उसी दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को अपना मुकाबला खेलना है। अगली गेंद इस बार इस गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है ऑन साइड में। जब तक मिड विकेट की फील्डर आ गए हैं, गेंद को उठाकर वापस करें, एक रन और जुड़ता हुआ भारत के खाते में। बढ़ता हुआ स्कोर 103 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। भारत ने पिछला विकेट 98 के स्कोर पर ऋचा घोष का गंवाया था और उसके बाद से यह साझेदारी भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस बार स्वीप करने का प्रयास, बल्ले पर पूरी तरह से गेंद आई नहीं, जड़ पर टकराई, एक रन आउट का मौका, लेकिन मौका हाथ से जाता हुआ बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर खड़ी हो गई थी और वापसी की कोई संभावना दूर दूर तक दिख नहीं रही थी। थ्रो आया और थ्रो पकड़ा नहीं जा सका, गेंदबाज ने उस थ्रो को पकड़ा नहीं और फिर वापस जेमिमा लौट आई अपनी क्रीज में। ये किस्मत यहां पर जेमिमा के साथ।
1: कॉमेडी ऑफ एरर्स एवरीवेयर। फर्स्ट हरमनप्रीत लुकिंग फॉर द स्वीप, जेमिमा वाज वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड, ऑलमोस्ट रीच द अदर एंड, देन हैड टू पुट द स्किड्स ऑन एंड कम ऑल द वे बैक, एंड इट वाज अ पुअर थ्रो टू बी फेयर, एंड नाहिदा जस्ट कुडंट गेट इनफ कंट्रोल ओवर दैट। हैड इट बीन ऑन द स्टंप्स, दैट वुड हैव बीन अ फिफ्थ विकेट फॉर बांग्लादेश।
0: अगली गेंद इस ओवर की चौथी गेंद, और इस बार इस गेंद को सीधे बल्ले से सामने खेला लॉन्ग ऑन की तरफ, एक रन के लिए कप्तान हरमनप्रीत ने। ये विकेट अगर भारत ने रन आउट के रूप में गंवाया होता तो निश्चित रूप से बांग्लादेश की वापसी जोरदार तरीके से इस मुकाबले में हो सकती थी, लेकिन ये एक आसान सा मौका बांग्लादेश के हाथों से फिसला है। भारत के लिए राहत की बात कि अभी भी जेमिमा मैदान पर है और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रही है। इस बार फुल टॉस गेंद को खेलना चाहती थी ऑफ साइड में, हालांकि जड़ में गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक होल में। यॉर्कर गेंद एक तरह से हो गई थी जेमिमा के लिए, किसी तरह से अपने विकेटों से दूर ढकेला इस गेंद को। रन कोई नहीं मिलेगा, 104 अभी भी स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट 5.35 का। अगली गेंद इस बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, गेंद की लाइन को चुकी है, एक अपील हुई है विकेट कीपर की तरफ से, और क्या ये तीसरे अंपायर को फैसला रेफर किया जाएगा, इस बात का इंतजार। हालांकि जेमिमा के शारीरिक भाषा से ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि क्रीज में अपने मौजूद थे।
1: यस, बट अनदर टाइडी ओवर धर्मेंद्र, सो एग्जैक्टली व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट 3-4 ओवर्स अगो, दैट यू हैव अ फ्यू टाइडी ओवर्स एंड यू सडनली पुश दैट रिक्वायर्ड रन रेट अप टू द विसिनिटी ऑफ 6, एंड नाउ फ्रॉम 6 ओवर्स इंडिया नीड 33. And you have two players who are high quality, high pedigree, but just short on runs in this World Cup campaign. And it's being reflected in the way that they're batting. Harmanpreet Kaur, her batting ability or her batting form has been a topic of discussion. 36, 12 and 4, 24 thus far in this World Cup. Jemima Rodrigues 1, 19 and 12. And they're batting like they're under pressure. That run out chance also created because they were so desperate to switch ends. And it's just the moment that Bangladesh were probably looking for in this successful defense, if they are to get there, to get a couple of out of form batters in there and put the squeeze on them, and that's begun happening. This partnership has just about come into form the last few overs or so. Just 6 runs, how many balls faced between the two of them, if we can get those numbers in as well. But yes, just a tight squeeze coming in. 10 balls faced, so that just tells you that they are feeling that pinch, and India not being able to maintain the momentum which was provided early on, especially by Shefali Verma. So since her wicket, it's been a pretty different story. Astika Bhatia losing a wicket, then Richa Ghosh also falling, and in that last over we nearly saw a rather tragicomic moment, but it turned out well for India, but it could so easily have led to the dismissal of Jemima Rodrigues, Dharmendra.
0: Yeah, ye wicket भारत के लिए कहा जा सकता है कि तोहफे की तरह आया, क्योंकि एक ही छोर पर लगभग दोनों बल्लेबाज खड़ी हो गई थी और वहां से वापसी की संभावना तो न के बराबर थी। अगर वो थ्रो दूर न गया होता और उस थ्रो को गेंदबाज ने सफाई से पकड़ लिया होता तो फिर जेमिमा इस समय मैदान पर नहीं, पवेलियन में होती। लेकिन सुरक्षित हैं अभी और 5 रन बनाकर खेल रही हैं। हरमनप्रीत कौर 4 रन बनाकर खेल रही हैं और ये साझेदारी अब तक 10 गेंदों में 6 रन की हुई है। ऋचा घोष ने 12 गेंदों में 10 रन बनाए थे।
1: And Dharmendra, another very interesting factoid pointed out by our scorer Venkat Balreddy, that only one extra in this inning so far, just the one wide. So that tells you that Bangladesh have bowled

0: आक्रमण के लिए। बांग्लादेश की टीम चाह रही है कि साझेदारी को तोड़कर थोड़ा सा वापस लौटा जा सके इस मैच में। उम्मीदें लगभग समाप्त होती हुई सी बांग्लादेश के लिए। ये पहली गेंद और इसको एक रन के लिए खेल दिया। फिर से एक बार विकेटों के बीच में खराब दौड़ दोनों खिलाड़ियों के बीच में, आपस में टकराते टकराते दोनों बची हैं। निगाह बिल्कुल एक दूसरे पर नहीं, गेंद पर दोनों की निगाह, और वहां पर टक्कर होते होते बची है। ये तीसरा मौका है जब रन लेने के दौरान दोनों के बीच तालमेल की काफी कमी दिखाई है देवायन।
1: Absolutely, and two senior players and Harmanpreet in particular just looking so off color. She's going for risky singles. She's running a little all over the place, but it's an important innings for her. If she stays not out, then it will do her confidence a lot of good.
0: अगली गेंद और इस बार सीधे बल्ले से सामने की तरफ, गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर खेला है गेंद को, मिसफील्डिंग चरण।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: सीधे बल्ले से खेला था इस मौके पर जिमी मा ने, और जिमी मा ने यह ठान लिया है कि अब कुछ भी हो बड़े स्ट्रोक्स लगाने ही है, जल्दी से जल्दी मैच को समाप्त करना है। इस बार लगभग ओवर पिच गेंद थी, गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर खेला। रोका जा सकता था इस गेंद को, लेकिन थोड़ी सी गेंद घूम गई पड़ने के बाद और गेंदबाज काफी निराश थी। इस चौके के साथ भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 128, चार विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास, और इस गेंद को फिर से चार रन के लिए खेला है।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: फिर से सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक सामने की तरफ लगभग उसी दिशा में, और ये चौका एक और आता हुआ जेमी मा के बल्ले से। स्कोर भारत का बढ़ता हुआ 128, चार विकेट के नुकसान पर। अब सिर्फ 9 रन चाहिए, 27 गेंदें बची हुई हैं। महंगा ओवर एक और चलता हुआ इस समय रितु मोनी का। रितु मोनी को एक सफलता जरूर मिली है, लेकिन इस ओवर में अभी तक दो शानदार चौके जेमी मा ने जड़ने में कामयाबी हासिल की है। दबाव गेंदबाज के ऊपर, कुल मिलाकर इस ओवर में अभी तक 9 रन आ चुके हैं, और अब अगली गेंद खेलने के लिए तैयार जेमी मा। बहुत लाजवाब बल्लेबाजी इस समय जेमी मा की तरफ से। दोनों के बीच अभी तक 19 गेंदों में 30 रन की साझेदारी, बहुत तेज तर्रार साझेदारी।
1: Absolutely, and 24 of the last 9 balls, but that first run of that 9 balls could have resulted in a run out.
0: अगली गेंद को इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, हवा में गेंद और ये कैच लपका गया। जेमी मा का विकेट आखिरकार भारत ने गंवाया है। खेलना चाहती थी ऑन साइड में, बल्ले का बाहरी किनारा लिया गेंद ने, पॉइंट पर गई गेंद, और एक आसान सा कैच। इस तरह से जेमी मा की एक तेज तर्रार पारी का समापन हुआ है। जेमी मा रॉड्रिग्स कुल मिलाकर 15 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुई हैं, 3 चौके और 1 छक्का उनकी इस पारी में। लग रहा था कि उन्होंने जो निराशा का दौर था उससे पार पा लिया है, लेकिन उनकी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी मैच जीत कर भारत को नेट रन रेट में और बेहतर स्थिति में लाया जा सके, उसी कोशिश में उन्होंने अपना विकेट गंवाया है। हालांकि भारत के सामने अभी भी कोई खास परेशानी नहीं, 26 गेंदों में अब सिर्फ 9 रन चाहिए, 128 पर भारत ने 5वां विकेट गंवाया है।
1: Absolutely unselfish batting from Jemima, going for the big hit, and it looked initially that she had absolutely middled it, but went off the leading edge and was gleefully accepted at backward point inside the circle by Maroofa Akhtar. And that brings the all-rounder Deepti. Didn't quite get that 356th international wicket today with the ball. It was more than handy. 4 overs, none for 23, and now has a chance to put the finishing touches. But what Jemima, especially in that last short burst across the last 2 overs, has done is made this a much, much more favorable equation. Had Harmanpreet's wicket fallen when she went for that almost suicidal-looking single, then things would have been completely different. But Bangladesh have missed a lot of opportunities today.
0: अगली गेंद दीप्ति शर्मा के लिए। दीप्ति ने इसको हल्के हाथों से खेला है एक रन के लिए, और फिर दूसरे रन को तलाश रही थी, लेकिन उसकी संभावना थी नहीं। एक रन से और बढ़ता हुआ स्कोर भारत का 129, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 8 रन चाहिए 25 गेंदों में, एक गेंद अभी भी इस ओवर की बची हुई है। दीप्ति शर्मा ने पहली गेंद पर ही अपना खाता खोला। जेमी मा एक अच्छा बल्ले का जोर दिखाते हुए वापस मैदान से लौटी है। इस गेंद को एक रन के लिए, अंतिम गेंद को खेला है इस मौके पर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने, और इस एक रन के साथ ओवर की भी समाप्ति हुई। कुल मिलाकर 130 भारत का स्कोर 16 ओवरों के बाद, 5 विकेट के नुकसान पर। हरमनप्रीत कौर 8 रन बनाकर खेल रही है, दीप्ति शर्मा ने एक रन बनाया है। स्ट्राइक पर एक बार फिर से हरमनप्रीत रहेंगी।
1: So just 7 runs to win as Ritu Moni becomes the first bowler to bowl out her complete spell. 2 for 29, the most successful among the

0: wickets and move along to 6 points in this World T20 as well. And now we'll take you through to the post-match show. Kaun banega player of the match?
1: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार, मन की बात में आप सबका स्वागत है।
1: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात जिसमें है एक भाव नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला, बात देश की सबके मन की।
3: मेरे लिए मन की बात ये कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था पूजा व्रत है।
1: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।
4: प्लेयर ऑफ द मैच
5: शफाली वर्मा के 53 रनों की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर
6: मैच जीता है और शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच से भी नवाजा गया है। सीधा चलेंगे मैनचेस्टर जहां पर सुनेंगे कि क्या कह रही है प्लेयर ऑफ द मैच शिफाली वर्मा।
7: 3 of 34 टॉप स्कोर्ड इन द लास्ट गेम एंड इन दिस वन, हाउ प्लीज्ड आर यू विद योर बैटिंग दिस टूर्नामेंट?
8: या ऑफ कोर्स वेरी हैप्पी द वे आई बैटेड टुडे, बट इफ आई विल बी नो डाउट दैट विल बी सो हैप्पीयर फॉर मी, बट या गुड कॉन्फिडेंस टुडे एंड सो हैप्पी आई कैन ग्रैब सम रन्स।
7: 136, आई थिंक इट्स फेयर टू से यू माइट हैव थॉट यू'ड बी चेसिंग अ लिटिल लेस, व्हाट वाज द चैट व्हेन यू वेंट आउट टू चेस एंड व्हाट वाज द प्लान इन द पावर प्ले?
8: Nothing much, just begging our batting, just whatever loose ball will come, we'll just go for the 4 or maybe 6 or otherwise we'll go 1 run. So it's just a normal talks, not a different thing.
7: Any particular shots that you've been working on that you feel are now coming out very nicely?
8: Well, just try to, you know, choose the right ball, whatever come in my in my zone, just go for that. Otherwise, take single. It's just a very simple thing, but sometimes it's complicated a lot. But I just talk to myself a lot this time, and yeah, it's going good. I'm so happy for that.
7: What did you feel about when you got out and how you got out?
8: Of course, sad. The way I got out, as I said earlier, if I will be the not out and... that will be more happier for me.
7: I want to ask you one quick question on your bowling. You're now India's opening bowler as well. How much are you working on your bowling? At what point did this become a regular plan that yes, Shifu's going to play a big role with the ball?
8: Well, of course, in the nets I used to bowl with the new ball and with the old ball. Sometimes I laugh a lot. But in the end, what our team need, I'm there for that. And thanks to Harmandi, she always give me a lot of confidence when I bowl, give me a very good field set. So just thanks to her.
7: Ready for Australia?
8: Yeah, of course. So we'll go to London and see them.
7: All right. Well done today. Good luck for that one, Shefali.
8: Thank you.
5: ये थी प्लेयर ऑफ द मैच शफाली वर्मा और हम हाजिर हैं इसी कार्यक्रम में इसी नाम से प्लेयर ऑफ द मैच जो अब आप सबको पता है कि कौन है। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट दर्पण तिखिया।
6: बहुत बहुत शुक्रिया मुदिता। और हमारे साथ है एक्सपर्ट्स का एक पैनल जिसमें हमारे साथ आज जुड़े हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्व भारतीय सेलेक्टर चेतन शर्मा। बहुत बहुत स्वागत चेतन एक बार फिर आपका।
9: धन्यवाद।
6: साथ में साथ

0: साथ के साथ हमारे साथ जुड़े हैं विजय धैया, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर. विजय, वेलकम टू द शो वंस अगेन.
1: थैंक यू सो मच.
0: और उसके साथ साथ क्रिकेट जगत पर अपनी पैनी नगाह दशकों से रखने वाले शशांक शेखर भी हमारे साथ मौजूद है, जाने माने खेल पत्रकार. शशांक, बहुत बहुत स्वागत आपका भी.
2: धन्यवाद.
0: चेतन जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे और वहीं से उठाएंगे जहां पर शेफाली ने छोड़ा. अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है. उन्होंने कहा बड़े हरफन मौला अंदाज में कि विल गो टू लंदन एंड देन वी विल सी देम. ये जो एटीट्यूड है ये कितना जरूरी है.
3: मैं कॉन्फिडेंस कहूंगा इसको. देखिए बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस है. जब जीत, देखिए हर समय इम्पोर्टेंट है कि आप जीतते हैं, जीत से सीखते हैं. क्या भारतीय टीम ने सीखा ये तो हमें नहीं मालूम पड़ेगा क्योंकि ये ड्रेसिंग रूम की बातें हैं, वो बाहर आएंगी नहीं. लेकिन एक कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत अच्छी बात लगी. मतलब शेफाली, मैं पहले से बात कर रहा था जब हम मिड शो में बात कर रहे थे, ऊपर से स्टार्ट मिलेगा, आप इस मैच को जल्दी ख़त्म कर देंगे. नेट रन रेट का मुझे चिंता ज़्यादा नहीं है. देखिए आप मैच जीतते चले जाएंगे, नेट रन रेट तो आएगा ही नहीं सामने. तो अब आपने बांग्लादेश को मात दी, अब आपकी ऑस्ट्रेलिया की बारी. आपको रणनीति प्लान करना है. अच्छी बात है, कुछ जो मुझे समझ आई है, जमीमा का बल्ला चला आज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. शेफाली ने ऊपर से रन बनाए. स्मृति की कोई टेंशन नहीं है. देखिए वो अपना रन्स बना देती है. वन ऑफ आप आउट हो गए आज. तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो रन्स बने हैं आपके. तो जब रन्स बनते हैं तो इम्पॉर्टेंट है. लेकिन कुछ चीज़ें जो बीच में हुई हैं, रनआउट्स, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, जो आप तालमेल आपका नहीं है, वो थोड़ा सा बना के रखिए. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको ऐसे मौके नहीं देगा जो बांग्लादेश ने आपको मौके दिए. ऐसे रनआउट्स कभी वो छोड़ेगा नहीं. तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट है. हर समय क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट आप करते हैं. देखिए कभी आप परफेक्ट नहीं है, आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. इम्प्रूव करते जाइए, जीतते चले जाइए.
4: जी बिल्कुल. शेफाली खुश नहीं थी आउट होने से और उन्होंने कहा कि मैं तो चाहती हूँ मैच फिनिश करके जाऊं. शायद ये हम सब भी देखना चाहते हैं. विजय, चेतन ने बात की शेफाली के कॉन्फिडेंस की, इसके अलावा मैच्योरिटी और इंटेंट भी दिखता है अब उनकी इनिंग में.
1: आई थिंक इंटेंट आपको हमेशा नज़र आएगा, पर जिस तरीके से जो स्ट्रोक प्लेयर होते हैं ना, जब ये खेलते हैं तो मिलियन डॉलर लगते हैं, जब आउट होते हैं तो कई बार आपको लगता है कि इस नादानी की ज़रूरत थी क्या. पर वो खेलते ही इसी तरीके से हैं. आप किस इस फॉर्मेट में किसी भी तरीके को खिलाड़ी के देखेंगे जो इस इंटेंट से खेलेगा, जो आपको पारी की इस तरीके की शुरुआत देगा, उसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी कम नज़र आएगी क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क उठाते हुए आपको नज़र आते हैं, वो इस तरीके की क्रिकेट ज़्यादा खेलते हुए नज़र आते हैं. आप जब इस स्टेज पे लगातार रन बनाने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है. उनको कॉन्फिडेंस शायद इस बात से भी अब देखने को लग रहा है कि जिस तरीके से उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिंग में भी दी जा रही है. सिर्फ यही है कि प्लेयर सारे बढ़िया ही होते हैं, उनको किस तरीके से आप महसूस कराते हैं और उनसे बेस्ट कैसे ले सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और फिर वो अपने आप को एक प्रमुख अंग उस टीम का मानने लगते हैं, जो मुझे लगता है धीरे धीरे शेफाली को वो महसूस हो रहा है कि मैं सिर्फ इस टीम में खेल नहीं रही हूँ, मैं एक प्रमुख उस तरीके की खिलाड़ी हूँ कि जिसके ऊपर सबकी नज़र रहती है और मेरा योगदान बहुत महत्वपूर्ण है.
0: और नज़र हो भी क्यों ना, नोवा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड है उनका. और वुमेन्स टी ट्वेंटी आईज में सिर्फ हरमनप्रीत कौर, मिथाली राज और स्मृति मांधना के पास उनसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं. लिव बाय द स्वॉर्ड, डाई बाय द स्वॉर्ड, दैट्स व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर शी इज़. बट अनदर गुड पॉइंट दैट चेतन रेज्ड शशांक वॉज जमीमा स्कोरिंग दोज रन्स, बिकॉज अर्लियर वी सॉ इन द लास्ट थ्री मैचेस शी लुक्ड अ लिटिल बिट स्क्रैची, बट द बाउंड्री स्टार्टेड फ्लोइंग टुवर्ड्स द एंड.
2: यस, दैट boots well for India as they take on Australia come Sunday. Jemima, you know, she looked as if she wants to finish the match as early as possible, also keeping in mind probably the run rate. But she took on the spinners and hit some lusty blows, and she was trying another which got her out. So this is not a typical Jemima innings. It was a breezy cameo, but it came at the right time for India and it helped India finish the match well before the final over. So that's, and she was timing the ball well. Now she came in the middle order. Earlier she used to bat at number 3 where she had more time to build an innings and all. But if she's coming at 4 or 5 or even 6, then she needs to start hitting from the word go, and she tried to do that and she was successful to a large extent today, which is good for India.
4: जी, और अगर हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके पास भी हमारे एक्सपर्ट्स के लिए कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. नंबर्स है 2342-1083 और 2342-1085. इसके पहले दिल्ली का कोड 011 लगाना ना भूले. बैटिंग की बात चल रही है विजय, तो यस्तिका भाटिया

0: इस मैच में उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है, जो कहा जा रहा था कि जिसकी वजह से हम उनको प्रेफरेंस दे रहे थे कि एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनता है और पावर प्ले में बढ़िया प्रदर्शन वो कर सकती हैं। क्या लगता है कि अगले मैच के लिए उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है आज के परफॉर्मेंस के बाद?
1: जिस तरीके से अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में इंजरी के बाद उनकी वापसी हुई है, उनके ऊपर जो विश्वास दिखाया गया है, वो टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं वो आपके लिए, और उनकी जगह भी वही है, वो टॉप थ्री में ही बल्लेबाजी आपको करती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि बहुत सारे बदलाव आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जमैमा के हम बारे में बात करते हैं, जिस तरीके का उनका खेलने का तरीका है, वो जितने ज़्यादा नीचे बैटिंग ऑर्डर में जाएंगी उतनी ज़्यादा उनके लिए और ज़्यादा चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, क्योंकि वो इस तरीके की खिलाड़ी हैं कि थोड़ा सा समय ज़रूर लेती हैं, लेकिन फिर वो समय लेने की भरपाई आखिरी में आके ज़रूर कर लेती हैं। वो वैसे खिलाड़ी के लिए शुरू से ही अटैकिंग खेलना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। रिचा उस नंबर पर नहीं आती जिस नंबर पर आज बल्लेबाजी करने आई थी। नॉर्मली आप उन्हें चार पर बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखती, वो एक फिनिशर का रोल उनका रहता है। तो शायद आज टीम टैंक है, जो थिंक टैंक है, उनका ये सोचना था कि शायद इस मैच में आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। रिचा के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बढ़िया नंबर हैं, तो शायद इस वजह से आप चाहते थे कि थोड़ा सा गेम टाइम उनको और ज़्यादा मिल जाए इस मैच के अंदर, पर वो खेलती एक ही तरीके से, उनको ये नहीं रहता ऑपोजिशन क्या है, उनको ये रहता है कि अगर बॉल मेरे हाफ में है तो वो अपने आप को बैक करती हैं, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना है तो तीन चार प्रमुख जो खिलाड़ी हैं आपके बल्लेबाजी में, उनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा उस दिन।
2: जी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनौती होने वाली है कड़ी, और मस्ट विन चुनौती होने वाली है। खैर, मस्ट चीजों की हम बात कर रहे हैं, मस्ट इज आर कॉलर्स एंड यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन आर नंबर्स एंड जॉइन इन इन द शो। वी हैव वन कॉलर ऑनलाइन, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, अपना नाम बताइए जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, अपना सवाल बताइए। जी जी जी जी, हम आपका सवाल जरूर लेंगे, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। चेतन भाजी, वहीं पर बात घूम फिर कर आ गई है जो मिड इनिंग शो में हमने दोबारा डिस्कस की थी, और शायद सवाल वैलिड भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ अगर आप चार कैच छोड़ेंगे तो फिर वहां पर मुश्किलात हो सकती है।
3: देखिए, आप किसी के खिलाफ भी अगर मैच खेलते हैं, उनके खिलाफ आप कैचेस छोड़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप सोचिए, अगर आपने आज कैचेस सारे पकड़े होते तो 110 के आसपास टोटल होता, तो यू हैव इजीली वन दिस गेम 14-15 ओवर्स में आप मैच को जीत लेते। तो आज आपने जीत हासिल की है, वो इम्पोर्टेंट है।
2: जी, और अब सीधा लेके चलेंगे आपको मैनचेस्टर, वहां पर सुनेंगे कि कप्तान क्या कह रहे हैं। सबसे पहले सुनेंगे बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना को।
4: See, we have created a lot of chances in the middle, especially in the bowling, so we couldn't grab them, so they take this game away from us, and I think the way we actually bowled in the last game, we couldn't bowl.
5: How was 136 at halftime? Were you satisfied with the batting effort?
4: We are short of 15 to 20 runs, and we had a good start in the power play, what we are looking for the last few games. So, but we couldn't carry on in the middle, and in the last few overs of the innings, I think what we should accelerate on that time, so couldn't capitalize ourselves.
5: Positives even after the power play when India were looking strong. You stayed in the game. In the second innings break also, you got your team around. India needed 33 of 36. What was your message then to still try and keep the game alive? You still had a foot in the game at that stage.
4: Yeah, we are talking about like anything can happen anytime, so just be positive and try to bowl in the right areas, and try to be so calm. If it is the opportunity come, you have to grab it. So somehow I think we lost the momentum, and that they played really well.
5: Are you happy with the progress the team has made in your first international cricket in England? It's not like you've had a lot of experience over here. Are you satisfied with the progress overall?
4: See, it's not about success every time. I think the way this whole unit actually growing day by day, and a lot of young players come up each and every game individually. So it was a kind of a success for me, but still we are here to win. And we had a massive opportunity to do well here, but I think I'm really proud the way I actually played.
5: What will it mean for you and your team to play at Lord's on Sunday?
4: I guess this is a good opportunity for us, because being there is a good for the team. We really wanted to create some good memories there, and we are looking for the last game.
5: All the very best for that game. Tough luck today, Jyoti. Thank you so much. Now might I invite the winning captain, please, India's Harmanpreet Kaur. Harman, job done. How satisfied or happy?

0: that kind of cricket they love playing. Same goes with the women's side as well. They're the most dominating side as far as the women cricket is concerned, and they take pride in that. I think they're not going to forget what happened in the Mumbai. They'll come with that sort of a mindset that they're not going to give an inch as far as the Indian team is concerned. And let's not forget, if you keep an opponent like India alive, if they beat Australia, they might meet them again.
1: Right.
0: So Australia must be thinking, let's finish one opponent here in the league stage itself. So I think the pressure is going to be on the Indian side playing against the top side, plus everything on stake.
1: एवरीथिंग ऑन स्टेक. और आपको ये बता दें कि उससे पहले एक और मुकाबला होने वाला है जो भारतीय दृष्टिकोण से अहम है, वो है दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच जो मुकाबला अब से कुछ देर में होने वाला है. ब्रिस्टल में ये मुकाबला है जिसका टॉस हो चुका है. नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. चेतन भाजी, ये थोड़ा सा भारत के लिए खतरे की घंटी है क्या, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के पास मौका है बड़ा स्कोर बनाने का और वो बड़ा नेट रन रेट बूस्ट पाने का.
2: देखिए मुझे, मैं अगर आप मेरी अपनी सोच से मैं बात करूं, मुझे दूसरे मैच में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने मैच के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. ठीक है, अगर एंड ऑफ द डे साउथ अफ्रीका हार जाते हैं वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन आप उसके ऊपर वो नहीं कर सकते, आप निर्भर मत रहिए. देखिए, दूसरे के ऊपर निर्भरता और देन आप सोच रहे हैं वो हारेगा मैं जीतूंगा, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस. आपने आज अच्छी क्रिकेट खेली, यू डिड वेल. आप क्या यहाँ से सीख कर गए हैं, आपने क्या गलतियाँ की, उस पर सुधार कीजिए. एंड अगर जो नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का होना है वो मालूम पड़ जाएगा आपको 3 घंटे के अंदर, लेकिन आप अपनी तैयारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कीजिए कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं वैसे ही आप थ्रू हैं, तो कोई टेंशन नहीं है. तो जो आपके हाथ में जो आपको करना है वो आप कीजिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है.
0: मुझे लगता है कि रन रेट तस्वीर में नहीं आने वाला है.
2: बहुत कम है.
0: हाँ, जिस तरीके से आप पॉइंट्स टेबल की तरफ नज़र डाल रहे हैं उसमें रन रेट बहुत बहुत मुश्किल है कि रन रेट वहाँ पर आए. सीधा सीधा है दोनों टीमों के लिए, आप अपने बचे हुए मैचेस जीतिए और जिंदा रहिए
3: जी. और अगला मैच नॉकआउट मैच हो सकता है भारत के लिए. विजय, अभी आप बात कर रहे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया क्योंकि हर डिपार्टमेंट में एक्सेल तो कर ही रहा है इस टूर्नामेंट में भी, लेकिन साथ ही साथ वो जिस किलर इंस्टिंक्ट के साथ खेलने उतरता है, तो यू नीड दैट मेंटल स्ट्रेंथ, दैट माइंडसेट टू बीट देम.
0: वो मेंटालिटी ओवरनाइट नहीं बन सकती है, आपको उसकी तरफ अग्रसर होना पड़ता है. और जैसे ही हमने प्री शो में भी ये बात करी थी कि ये टीम एक बनती हुई टीम है, इस तरफ की तरफ आप नज़र डालें, बहुत सारे खिलाड़ी इस टीम के अंदर ऐसे हैं जिनके लिए पहला वर्ल्ड कप है. T20 वर्ल्ड कप से हमारी एक्सपेक्टेशन जो है, अगर आप उस तरफ नज़र डालेंगे तो उसमें आप कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसे बॉक्सेस हैं जिनको टिक करते हुए नज़र आएंगे. दूसरी तरफ आप अगर उस टीम की तरफ नज़र डालेंगे ऑस्ट्रेलिया, उसमें आपको ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे नज़र आएंगे जिनके पास बड़े मैचेस खेलने का अनुभव है. तो जब आप बड़े मैचेस खेलते हैं वो तभी खेलते हैं जब लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं. और वो सिर्फ स्किल सेट नहीं है, एक बहुत चीज़ आपने यहाँ पर जिक्र की, मेंटालिटी. आई थिंक वो जिस मेंटालिटी से उतरते हैं वो एक विनिंग मेंटालिटी है. आप उनसे खेलते वक्त सिर्फ ये नहीं सोच रहे होते हैं कि हम अपने अच्छे दिन पे जीतेंगे, कई बार आप ये भी सोच रहे होते हैं कि हमारा अच्छा दिन तो होगा, क्या उस दिन ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा ख़राब दिन हो सकता है जहां पर हम उनको पकड़ सकते हैं. इस तरीके की धाक कुछ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पिछले कुछ समय में जमाई है, और इसी वजह से आप सिर्फ उनको स्किल से नहीं हरा सकते, आपके उस दिन मानसिकता भी उनसे बेहतर होनी चाहिए.
1: खैर, हम ये बैठे बैठे आकाशवाणी के स्टूडियो में ये सोच रहे हैं कि हमारे लिसनर्स क्या सोच रहे हैं, सीधा जुड़ते हैं एक लिसनर के साथ और पूछते हैं कि उनका क्या कहना है कि आज की जीत पर. नमस्कार, अपना नाम बताइए. राम अवतार जी, क्या सवाल करना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से?
4: सर, पहले तीनों क्रिकेट के जगत गुरुओं को नमस्कार. मेरा
5: नमस्कार.
2: नमस्कार. नमस्कार जी.
4: मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही यस्तिका भाटी को हम 3 नंबर पे उतार रहे हैं, वो 3 नंबर पे उतार के और हरमन को उतार के और ऋषभ को उतार के फूलमाली को क्यों नहीं उतार सकते? वो भी एक बहुत बेहतर बैट्समैन है, आईपीएल में हमने देखा उसका चलवा.
1: जी जी जी. तो जी शशांक, वेलकम टू यू विद दिस क्वेश्चन. भारती फूलमली स्टार्टेड ऑफ इन इंडियाज फर्स्ट प्लेइंग 11 व्हेन दे फीचर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, नाउ फाइंड्स हरसेल्फ आउट ऑफ द प्लेइंग 11. हाउ डू यू सी इट?
5: सो अभी जैसा कि हमारे कप्तान हरमनप्रीत ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि अब आपने बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपने मैचेस में इस वर्ल्ड कप में और 15 खिलाड़ियों को आपने खिलाया है, तो सारे खिलाड़ियों को आपने टेस्ट किया है, तो उन्होंने कहा कि हमने शुरू में ये सोच रखा था कि शुरू से ही कि जैसे मैच हम खेलेंगे हमारी अपोजिशन जैसी होगी उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से हम अपनी

टीम चुनेंगे जिसको हम हॉर्सेस फॉर कोर्सेज कहते हैं। तो उस फुलवनी ने पहला तो मैच खेला, उसके बाद इनको लगा कि शायद वो कॉम्बिनेशन जो वो उतारना चाहते हैं वहाँ पे उनकी जगह नहीं।

0: their bets on Yastika Bhatia?
1: I think before left hand, right hand combination, you need to understand, or as a team management, for us sitting here, need to understand what they feel, who they think is can give you the best. At the moment, they feel that Yastika Bhatia can give them what they're looking for. Then comes the combination, left hand, right hand combination. You have to pick up the best batter in the side. In their eyes, at the moment, it's Yastika Bhatia, and that's the reason why they're going with them. It's very simple to understand sometimes. You know, what happens is, whoever is not playing, it's very easy to advocate and say, that person can play as well. But the people who matter at the moment, they think that this is the person who can do the job for us, and they back that person.
2: जी विजय, थोड़ी देर पहले आपने रिचा घोष की बात की. रिचा नीड्स सम टाइम एंड देन शी एक्सप्लोड्स. व्हेन शी गेट्स मोर टाइम, शी प्रूव्स टू बी मोर इम्पैक्टफुल. एंड ऑलमोस्ट सेम एज विद जेमी ऑल्सो, शी परफॉर्म्स बेस्ट व्हेन शी हैज टाइम टू रोटेट द स्ट्राइक एंड देन एक्सेलरेट. आज के मैच में रिचा घोष को ऑर्डर में पहले भेजा गया, क्या ऐसा ही कुछ आप अगले मैच में एक्सपेक्ट करेंगे या फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो डिसीजन लेगी?
1: अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही है, क्योंकि आज रिचा का उस नंबर पे आना आप नॉर्मली उन्हें देखते नहीं है. पिछले कुछ समय में अगर आप देखें, कोई भी फॉर्मेट रहा है, चाहे 50 ओवर की बात करें या T20 की बात करें, आपने हमेशा उनको एक फिनिशर के रूप में इस्तेमाल किया और उन्होंने वो काम किया भी है. लेकिन कई मैचेस ऐसे भी रहे हैं जहाँ पर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे थे और आपकी उतनी विकटें नहीं गिरी थी, लेकिन वो मोमेंटम आपको चाहिए था, तभी रिचा का बैटिंग ऑर्डर हमेशा थोड़ा सा चेंज किया गया है. क्योंकि उनकी पास जो एबिलिटी है, कई बार आपके पास बीच में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो आपको गेम सेटअप करके देते हैं. जेमी का आपने जिक्र किया, वो कुछ इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि गेम सेटअप करके देती हैं. कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो गेम सेटअप करते हैं, कुछ होते हैं जो मैच को फिनिश करते हैं. पिछले कुछ समय में रिचा आपकी फिनिशर रही हैं, तो मुझे ये लगता है कि उनका इस्तेमाल उसी तरीके से किया जाएगा. लेकिन अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ बराबर की लड़ाई लड़नी है, तो आपके जो अपने इस तरीके के खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा प्रमोट करना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि वो फेयरलेस क्रिकेट खेलती हैं. उनको सिचुएशन और ऑपोजिशन से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को बैक करती हैं, और ऐसे ही खिलाड़ी बढ़िया टीमों के खिलाफ ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं.
0: एक बार पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे. ऑस्ट्रेलिया 4 में से 4 मुकाबले जीतकर ग्रुप ए में इस वक्त शीर्ष स्थान पर बना हुआ है. भारत ने 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं, जिसके बाद आज भारत नंबर 2 पर है और नंबर 3 पर दक्षिण अफ्रीका है, जिसने 1 मुकाबला कम खेला है. 3 में से 2 जीत उनके नाम अर्जित है, और अगर आज दक्षिण अफ्रीका नेदरलैंड्स को हरा देता है तो फिर भारत और दक्षिण अफ्रीका बराबरी पर आ जाएंगे. और बात आएगी इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वर्सेज बांग्लादेश, ये दोनों ही मुकाबले लॉर्ड्स के मैदान पर खेले जाएंगे. चेतन बाजी, थोड़ा सा हम चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स को बताएं, क्योंकि आप तो लॉर्ड्स में खेले हुए हैं, बार बार चर्चा होती है लॉर्ड्स पर, उस स्लोप की और अलग डायमेंशंस की, क्या परिस्थितियां रहती हैं वहां पर और क्या वो चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना होगा, खासकर हमारे बॉलिंग यूनिट को?
3: देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप स्लोप के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दें, बिकॉज हम लोग एज ए क्रिकेटर्स स्लोप के यूज टू नहीं होते हैं. हर ग्राउंड का डिफरेंट डायमीटर्स है, तो हर ग्राउंड पे आप जाएंगे आपको डिफरेंट कुछ ना किसी का अप द हिल आपको गेंदबाजी करनी है, कोई डाउन द हिल है, और लॉर्ड्स में भी ऐसा है, एक डाउन द हिल है, एक अप द हिल है. वो प्लेयर्स को बहुत जल्दी अनुमान लग जाता है उस चीज़ों का. और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. देखिए, लॉर्ड्स द मक्का ऑफ क्रिकेट का हर समय कहा जाता है. एक आपकी उम्मीद रहती है, एक तमन्ना रहती है कि आप लॉर्ड्स में जाएं और वहाँ प्रदर्शन करें. देखिए, लॉर्ड्स में खेलना एक अपने आप बड़ी बात है, लेकिन वहाँ पर खेलकर जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी आप अच्छा प्रदर्शन कुछ करते हैं लॉर्ड्स के ऊपर, वो बोर्ड के ऊपर आपका नाम जाता है, वो बोर्ड के ऊपर नाम सारी उम्र रहेगा, तय उम्र रहेगा, और जो भी वहाँ पर जाएगा हर क्रिकेटर आपका नाम वहाँ पड़ता है. तो एक आपके दिल में वो रहती है कि मैं यहाँ जाऊँ, अच्छा प्रदर्शन करूँ और इस बोर्ड में अपना नाम को शुमार करूँ. और वो तभी हो सकता है भारतीय टीम के लिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया को जाकर वहाँ मात देते हैं. तो मात देना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार आपने हरा दिया उनको, तो ऑटोमेटिक आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं. क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए, जो विजय भी बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया विल गो फॉर ए किल बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू प्ले इंडिया अगेन. वो अगर यहाँ से जीतती है इंडिया, तो दे हैव टू प्ले इंडिया समवेयर और अदर, फाइनल्स में मिल सकती है इंडिया, क्योंकि इंडिया में दमखम है. तो दे विल गो फॉर ए किल, तो वो इंडिया को भी अपना पूरा दमखम के साथ क्रिकेट खेलनी जरूरी है.
2: जी विजय, अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीम पे नज़र डाल लें तो मल्टीपल मैच विनर्स हैं उनके पास. हर मैच में एक नया नाम, एक नया खिलाड़ी उभर के सामने आ जाता है जो जम के खड़ा होता है, लेकिन बाकी प्लेयर्स भी उसका साथ दे रहे होते हैं. कभी कैमियोज में कर रहे होते हैं या फिर कभी कुछ और साथ में अच्छे स्कोर्स बना रहे होते हैं. भारतीय टीम को भी एक ऐसे एंकर की ज़रूरत पड़ेगी. हम जो

0: स्कोर्स देख रहे हैं कि शेफाली वर्मा ने आज शानदार खेला, लेकिन 53 पे जाके वो पारी ख़त्म हो गई है। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपनर बेथ मूनी को अगर हम देखें नेदरलैंड्स के अगेंस्ट 74 वो बना चुकी हैं, पिछले मैच में एलिस पेरी 71 बना चुकी हैं। भारतीय टीम को इस एंकर रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
1: अगर आप इस फॉर्मेट की तरफ नज़र डालेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत कम रोल है एंकर का। होता क्या है कि जो आपके टॉप थ्री हैं उनके पास सबसे ज़्यादा समय है सबसे ज़्यादा बॉलिंग खेलने का, तो वो आपको इसलिए नज़र आते हैं सबसे ज़्यादा रन बनाते हुए, या कभी भी आप देखेंगे टॉप थ्री के पास है तो आप ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो शीट एंकर का रोल अदा करेंगे। लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर जो टॉप के तीन खिलाड़ी हैं उनका खेलने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। आपने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बात करी और जो दो नाम आपने लिए वो वर्ल्ड क्रिकेट में हर फॉर्मेट में अपना लोहा मनवा चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप धीरे धीरे खेलेंगे, शेफाली से आप कंसिस्टेंसी की उम्मीद नहीं कर सकते, उनसे आप इम्पैक्टफुल पारियों की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। जो कंसिस्टेंसी आएगी वो दूसरे छोर से किसी और खिलाड़ी को करनी पड़ेगी, क्योंकि शेफाली अगर इस तरीके का स्टार्ट आपको देती है तो वो प्रेशर गेंदबाजों के ऊपर डाल देती है, जिसका फायदा दूसरे छोर से उठाना और बल्लेबाजों के लिए बहुत जरूरी है।
2: जी, और हम उम्मीद करेंगे 28 जून को लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा ही इंपैक्ट देखने को मिले। आज का दिन 25 जून भारतीय क्रिकेट में यादगार, क्योंकि लॉर्ड्स के ही मैदान में कपिल देव की उस टीम ने पहली बार विश्व कप उठाया था, और इसी कामना के साथ कि 2026 में T20 विश्व कप भारतीय टीम, भारतीय महिला टीम हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में उठाए, हम लोग आते रहेंगे इस विश्व कप का ब्रॉडकास्ट आपके साथ लेके। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम अपने एक्सपर्ट्स का धन्यवाद करना चाहेंगे। चेतन शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए,
3: धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच विजय भैया फॉर गिविंग योर टाइम,
1: मोस्ट वेलकम।
2: एंड थैंक यू सो सो मच शशांक शेखर फॉर बीइंग ऑन द
3: शो।
0: लेकिन साथ ही चलने से पहले दर्पण, हम अपनी टेक्निकल टीम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसमें शामिल थे जयराम, संदीप दहिया, सुशील कुमार, राम आशीष यादव, और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्शन टीम जिसमें शामिल थी कविता वी, तन्मय पंत, अमीशा पटेल, और उस सब से भी ऊपर हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
2: इन सभी के एफर्ट्स, सभी के मिले जुले प्रयत्न से ये ब्रॉडकास्ट संभव हो पाया है। उम्मीद करते हैं आपको सुनने में मजा आया होगा। मैं दर्पण, मेरे साथ
0: मुदिता,
2: और हम आपसे विदा लेते हैं 28 जून को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का लाइव ब्रॉडकास्ट लेकर वापस आएंगे, सुनना ना भूलिएगा। नमस्कार।
4: प्लेयर ऑफ द मैच, अभी आप आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
5: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑफ द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
6: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपको सुनवाते हैं, बोल राजा मेहदी अली खां के हैं, धुन मदन मोहन की, और फिल्म का नाम है वो कौन थी।

0: आइए सुनते हैं
1: ये मौसम
0: आशा भोसले और किशोर कुमार को फिल्म दिल्ली का ठग में, गीतकार SH बिहारी, संगीतकार रवि।

और अब आइए आपको सुनवाते हैं सुहागन फिल्म का गीत। इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत मदन मोहन का है और आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की।

और कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं चोरी चोरी फिल्म का गीत। आवाजें मन्ना डे और लता मंगेशकर की हैं। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 11 बजने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि

0: 22 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered.

वह 5:53 पर हम अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभरात्रि। जय हिंद।